मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नचिपाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों

के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद जीआरएसई भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने सीबीडीटी बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा टीआरएफ का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनटीए ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। एनटीए ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ईश्वर का वास किसी आडंबर में नहीं बल्कि सच्चे और निश्चल भाव में होता है। मन का मंदिर साफ हो तो प्रभु का हो वास। श्रद्धा से पुकारो उन्हें, वे सदा तुम्हारे पास। इसी भाव को व्यक्त करता हुआ ये अगला भजन सुनते हैं शेखर सेन की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे भजन शेखर सेन की आवाज में। श्रोताओं, परमपिता परमात्मा का नाम ही इस भव सागर से पार उतरने वाला सच्चा सुखदाता है। नाम जपत मिट जाते संताप, मिले अलौकिक चैन, साचा नाम सिमरले बंदे, कट जाएंगे दैन। सुरेंद्र कौर जी की आवाज में आइए सुनते हैं ये शब्द।

श्रोताओं, इबादत केवल रस्म और रिवाज का नाम नहीं, बल्कि दिल से निकली वो पुकार है जो सीधे परवरदिगार तक पहुंचती है। दिल की गहराई से जो उठे वही सच्ची इबादत है। बंदगी में जो झुक जाए सर, वही सबसे बड़ी इनायत है।

वंदना कार्यक्रम के समापन में आइए जगत पिता सूर्यदेव की पावन आरती का गायन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती उतारे मन से, पूजे देव दिनकर, सुख समृद्धि बरसाइए हे भगवान भास्कर। आइए सुनते हैं ये भजन कमल कुमार और साथियों की आवाज़ में।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का ये प्रसंग।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। गायक कलाकार थे राजन और साजन मिश्रा। हम आकाशवाणी के नचिकेताबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश में स्वाभाविकतया भिन्न भिन्न आचार विचार, वेशभूषा एवं धर्म का आचरण करने वाले तरह तरह के लोग भारत की इस विविधता का दर्शन कराते हैं। ऊपर से लगता है यहां विषमता है, पर अंतरंग में एक अखंड सांस्कृतिक एकता सदा से यहां चली आ रही है। भिन्नता में भी एकता है। इस एकता का आधार यहां के लोक जीवन की परंपराएं, देश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक रीति नीतियां हैं। भारत में अनेक भाषाएं सदैव से बोली जाती हैं, किंतु इनमें भी एक भाषा सदैव प्रधान संपर्क भाषा रही है। प्राचीन काल में यह प्रधानता संस्कृत को मिली थी, अब इस राष्ट्रभाषा का स्तर हिंदी को मिला है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग और प्रचार कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य है। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा है, राष्ट्रभाषा सब उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हिंदी साहित्य को बनाने वाले परोक्ष और अपरोक्ष रूप से विभिन्न भारतीय हैं, जैसे रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर, तुलसी, औरंगटी वेंकटेश्वर, जी सुंदर रेड्डी, शंकर कुरूप, स्वाति तिरुनाल, गुरु नानक, सुनीत कुमार चटर्जी आदि। अतः हिंदी का पढ़ना, लिखना, सीखना और पढ़ाना दोनों ही कार्य हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। अनपढ़ होना अज्ञानता का द्योतक है। इसे जीवन में जब भी दूर कर लिया जाए तभी ठीक है। प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल पढ़ने भेजना हर अच्छे मां बाप का कर्तव्य है। प्रौढ़ और वृद्ध स्त्री पुरुष भी अपने को साक्षर कर लें तो धर्म और ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर वे अंतिम समय में भी जीवन उन्नत कर सकेंगे और अपनी संतानों को सन्मार्ग दिखा सकेंगे। उच्च आकांक्षाएं रखना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। वह उच्च पद पर बैठना चाहता है और परिश्रम से बैठ भी जाता है। यहां उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता बल्कि प्रारंभ होता है। जितना ऊंचा पद आसन होगा उसके वांछित कर्तव्य भी उतने ही अधिक और गंभीर होंगे। उनका पूर्ण सत्यता और निष्ठा से पालन करना ही ईश्वर सेवा है। दफ्तर के दैनिक कार्य में नियम और कानून पालन, हमारे आपसी रिश्तेदारियां जातिगत, धर्मगत अथवा राजनैतिक संबंधों से ऊपर हैं। किसी भी अनुचित दबाव में आकर कार्य करने से आत्मबल घटता है और अंत में दुख की प्राप्ति होती है। इससे आत्मिक संतोष, बल और कार्य कुशलता बढ़ती है, जिनसे जीवन सुखी और वैभवशाली होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नचिकेताबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नीरजा सिंह का काव्य पाठ।
2: मेरी कविता का शीर्षक है हथेली में गांव। शहर की

फिर में जब कभी अपना गांव याद आता है, मैं माँ की हथेली थाम लेती हूँ। लगता है जैसे हथेली में पूरा गांव उतर आया है। उन रेखाओं में वही कच्ची पगडंडी है जिस पर नंगे पांव दौड़ते थे हम बचपन में। एक रेखा के मोड़ पर वही पुराना कुआं है जहां दोपहर की प्यास मिट्टी के घड़े में ठंडी होती थी। माँ की हथेली में अब भी नीम का पेड़ खड़ा है जिसकी छाव में दादा की खाट बिछती है। उसी के पास तुलसी का चौरा है। शाम होते ही दिए की लो में पूरा आंगन मुस्कुराता है। माँ की हथेली में गेहूं की बालियां भी हैं, सरसों का पीला मौसम भी है और बरसात में छप्पर से टपकती बूंदों की मीठी सी आवाज भी है। मैं पूछती हूँ माँ गांव कहाँ है अब। मैं पूछती हूँ माँ गांव कहाँ है अब। माँ मुस्कुरा कर अपनी हथेली खोल देती है। माँ मुस्कुरा कर अपनी हथेली खोल देती है। यही तो है। मैं देखती हूँ वहाँ अब भी एक पुराना सा घर सांस ले रहा है। चूल्हे की राख में दादी की रोटी की खुशबू बची है और आंगन के कोने में बचपन खेल रहा है। शहर ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया पर माँ ने अपनी हथेली में हमारा गांव आज भी बचा रखा है। इसलिए जब भी अपनी जड़ों से दूर होने लगती हूँ माँ की हथेली छू लेती हूँ और मुझे लगता है मैं कहीं नहीं गई मेरा गांव आज भी माँ की हथेली में जिंदा है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सावन की बदरी। फिर सावन की पहली बदरी अंबर पर मुस्काई है। सूखी धरती के आंचल पर बूंदों ने मेंदी रचाई है। फिर सावन की पहली बदरी अंबर पर मुस्काई है। सूखी धरती के आंचल पर बूंदों ने मेहंदी रचाई है। अमराई में झूले पड़ते पींग गगन तक जाती है। कजरी की मीठी तानों से हर सांस महक सी जाती है। अमराई में झूले पड़ते पींग गगन तक जाती है। कजरी की मीठी तानों से हर सांस महक सी जाती है। हरी हरी चूड़ी की खनक में साजन का संदेश मिले। पायल की हर मीठी रुंझुन मन को नव परिवेश मिले। हरी हरी चूड़ी की खनक में साजन का संदेश मिले। पायल की हर मीठी रुंझुन मन को नव परिवेश मिले। महके हाथों की मेहंदी में प्रीतम का ही नाम लिखा। मांग सजी बिंदिया दम की सपनों ने श्रृंगार किया। महके हाथों की मेहंदी में प्रीतम का ही नाम लिखा। मांग सजी बिंदिया चमकी सपनों ने श्रृंगार किया। मोर पंख फैलाकर नाचे कोयल मधुर तराने गाए। रिमझिम बूंदों की सरगम पर वन उपवन भी गीत सुनाए। मोर पंख फैलाकर नाचे कोयल मधुर तराने गाए। रिमझिम बूंदों की सरगम पर वन उपवन भी गीत सुनाए। लेकिन मन का एक कोना अब भी सूना सूना है। सबके घर तो दीप जले हैं मेरा आंगन सूना है। ए सावन जब उनसे मिलना इतना संदेशा कहना तुम। चूड़ी मेहंदी झूला सब है बिन उनके सब सपना तुम। ए सावन जब उनसे मिलना इतना संदेशा कहना तुम। चूड़ी मेहंदी झूला सब है बिन उनके सब सपना तुम। जब वो आए तब ही समझूं सावन सचमुच आया है। उनके बिन तो इस सावन ने केवल मन तड़पाया है। जब वो आए तब ही समझूं सावन सचमुच आया है। उनके बिन तो इस सावन ने केवल मन तड़पाया है। मेरी दूसरी कविता बच्चों को लेकर है। आजकल मोबाइल का चलन बढ़ गया है। मोबाइल

0: अच्छा है, परंतु हम माता पिता चिंतित भी रहते हैं कि शायद बच्चों का बचपन इस मोबाइल की दुनिया में खोता जा रहा है। मैंने एक कविता उसी पर लिखने की कोशिश की है कि मोबाइल की रोशनी में खोता बचपन। कभी कभी गली में शोर हुआ करता था, कभी गली में शोर हुआ करता था, बच्चों का एक दौर हुआ करता था। कभी गली में शोर हुआ करता था, बच्चों का एक दौर हुआ करता था। कंचे, गिल्ली, पिट्ठू, पतंगे, हर दिन जैसे त्योहार हुआ करता था। न दाम चाहिए, न टिकट चाहिए, बस दोस्तों का साथ चाहिए। न दाम चाहिए, न टिकट चाहिए, बस दोस्तों का साथ चाहिए। हार गए तो फिर खेलेंगे, हार गए तो फिर खेलेंगे, जीत गए तो गले मिलेंगे। बारिश आई छत छोड़ के भागे, बारिश आई छत छोड़ के भागे, कागज की नावों के पीछे। बारिश आई छत छोड़ के भागे, कागज की नावों के पीछे। माँ चिल्लाई, माँ चिल्लाई, अंदर आओ। हम बोले पहले बारिश तो थमने दो। दादी की गोदी, नानी की बातें, दादी की गोदी, नानी की बातें, राजा रानी और परियों की रातें। चंदा मामा छत पर आते, उनसे हम अपने राज बताते, वो भी हमसे खूब बतियाते। दादी की गोदी, नानी की बातें, राजा रानी और परियों की रातें। चंदा मामा छत पर आते, उनसे हम अपने राज बताते, वो भी हमसे खूब बतियाते। लेकिन लेकिन अब जमाना बदल गया है, बचपन भी जैसे संभल गया है। ना गिल्ली है ना कंचे हैं, हाथों में मोबाइल अच्छे हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, बचपन भी जैसे संभल गया है। ना गिल्ली है ना कंचे हैं, हाथों में मोबाइल अच्छे हैं। पहले चोट लगी तो दोस्त दौड़कर आते थे, पहले चोट लगी तो दोस्त दौड़कर आते थे, अब टेक केयर लिख चले जाते हैं। पहले आंसू पोछे जाते थे हाथों से, अब आंसू भी स्टेटस बन जाते हैं। मोबाइल बुरा नहीं, मोबाइल बुरा नहीं, यह बात सही है। मोबाइल बुरा नहीं, यह बात सही है, इसमें दुनिया की सारी जानकारी भी सही है। लेकिन दुनिया को मुट्ठी में रखते रखते कहीं हम मुट्ठी भर रिश्ते ही ना खो दें। बच्चों कभी मोबाइल रख कर देखो, बच्चों कभी मोबाइल रख कर देखो, आसमान की तरफ आंख उठाकर देखो। तितली अब भी फूलों पर आती है, हवा आज भी गीत सुनाती है। थोड़ी धूप मिले, थोड़ी धूप मिले, थोड़ा मैदान मिले, बचपन को फिर उसका आसमान मिले।
1: काव्यधारा कार्यक्रम में अभी आपने सुना नीरजा सिंह का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नचिकेतापाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे सामायिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:31 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे गीत और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:20 पर आप सुनेंगे रागनी, कलाकार होंगे कुलदीप सिंह आर्य और साथी। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्ष

0: राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में यंत्र इंडिया की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी बन की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित 3rd IIMA हेल्थकेयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मैसर्स एडुक्विटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 परीक्षार्थी अपनी पूरी परीक्षा नहीं दे पाए थे। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदारा शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है नवजात शिशुओं की जन्मजात समस्या, कारण और उपचार।
2: हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील प्रधान जी, जो प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन हैं और SGPGI लखनऊ में न्यूरो मेडिसिन

0: यानी कि वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा है
1: जी।
0: और जनरली ये बच्चे फिर थोड़ा इनमें तोड़ने फोड़ने की भी आदत होती है, तो जो चीज हाथ में है उसको फेंकना
1: जी,
0: कोई चीज फाड़ देना
1: जी,
0: किसी की बात ना मानना,
1: हाँ।
0: तो इस तरह की कभी कभी प्रॉब्लम देखने को आती है, जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी कि ADHD बोलते हैं। ये भी एक कॉमन कंडीशन है, काफी बच्चों में ये देखा जाता है। तो वो शैतानी जो है उसका संबंध कंसंट्रेशन से होता है,
1: हाँ।
0: एक चीज को अटेंड नहीं कर पाता, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। नॉर्मली बच्चे जैसे किसी एक चीज को कह दिया जाए कि ये करना है तो उसको थोड़ी देर तक करते हैं, फिर उनका मन उछटता है। राइटिंग स्क्रिप्ट हैं, ये भी 1-2 हज़ार साल पुरानी है, इससे पुरानी नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो लाखों सालों से चला रहा है, करोड़ों सालों से चला रहा है। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट लिखने पढ़ने से डेवलप ही नहीं हुआ, ये तो ब्रेन को एक नई चीज मिली पिछले कुछ सालों में। तो जेनेटिकली अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक तौर पे हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इस तरह की चीजें लिख के समझने के लिए, लेकिन ब्रेन ने इसको अडेप्ट किया है अपने को, और बहुत जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर कोई भी लिखी हुई चीज एकदम सडनली हम लोग एक ही बार में ग्रास्प कर लेते हैं उसको। अगर आपको 10वीं या 12वीं में सीखने को मिली तो वो आपके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन पाई,
1: नहीं बन पाई,
0: तो फिर आप उसको मन में कहीं ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में
1: जी,
0: और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो सीधे सीधे दिमाग में नहीं जाती। तो इन बच्चों में वो चीज शुरू से ही
1: अच्छा।
0: पढ़ के वो दिमाग में नहीं जाती, लेकिन यदि उसी को आप दिखा के कुछ विजुअल्स दिखा के पढ़े तो वो उनको समझ में आती है, तो उनको सिखाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो है कि जिस समय बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय यदि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले, जो कि बहुत कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गाँव में खासतौर से डिलीवरीज घरों में होती है, तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेके जब तक वो रोता है तब तक के बीच में ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसकी कॉर्ड कट जाती है और उसका बाद ऑक्सीजन लेने का साधन सिर्फ फेफड़ों से होता है, और पहली बार सांस तब आती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। तो रोने में अगर उसने 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट देर लगा दी तो उतनी देर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और उतनी देर बाकी तो ऑर्गन्स बॉडी के जो है वो सह लेते हैं उतना ऑक्सीजन की कमी को, दिमाग नहीं सह पाता। दिमाग में जब ये कमी हो जाती है उसकी वजह से उसका परमानेंटली हमेशा के लिए ब्रेन डैमेज हो जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर बच्चा नहीं रोया 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर तो उसको कृत्रिम रूप से सांस दे दी जाती है जिससे कि दिमाग में डैमेज ना हो। तो इसलिए ये एंकरेज किया जाता है कि हॉस्पिटल डिलीवरीज होना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, एंकरेज करती है सरकार इस बात को, केंद्रीय सरकार की भी बहुत सारी
1: योजनाएं हैं जी,
0: कि हॉस्पिटल डिलीवरीज हो जिससे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है माँ के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब आज आपने इतनी जानकारी दी और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी ये जानकारी जिसका विषय था नवजात शिशुओं में जन्मजात समस्या कारण और उपचार। आकाशवाणी का ये नचिपापात केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी, विषय है पशुओं की नाक में नकेल डालने का लाभ।
3: किसान भाइयों राम राम, खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं पशुओं में नाक में नकेल डालने के लाभ। किसान भाइयों हम सब खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते हैं और पशुपालन करके हम अतिरिक्त आमदनी लेते हैं, साथ ही किसान भाइयों आमदनी लेने के साथ साथ हमें अपने खेतों के लिए गोबर की कंपोस्ट खाद मिलती है जो कि हमारी खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। किसान भाइयों जो हम पशुपालन करते हैं उसमें कुछ हमारे खेतीबाड़ी में काम आने वाले पशु होते हैं जैसे बैल है, भैंसा है, साथ ही इसके अलावा कुछ हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है। तो किसान भाइयों हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे पशु होते हैं वो काफ़ी उग्र होते हैं और इन उग्र पशुओं को नियंत्रण में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों जो हमारे उग्र पशु होते हैं या काफ़ी तेज तर्रार पशु होते हैं जो कि उछल कूद ज़्यादा करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि ये पशु जब हम इनको चारा डालते हैं या एक जगह से दूसरी जगह बांधते हैं तो ये हमला भी कर देते हैं और कई बार हमारे पशुपालक भाइयों को घायल भी ये पशु कर देते हैं। जो उग्र पशु होते हैं तो उग्र पशुओं में नाक में नकेल डालने की परंपरा रही है और नाक में नकेल डालने के काफ़ी लाभ भी हमें होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये नाक में नकेल किस तरह से डाली जाती है और इसके क्या लाभ

0: हमें होते हैं। जो हमारे नर पशु होते हैं जैसे कि बैल है या भैंसा है, केवल उन्हीं में नाक में नकेल डाली जाती थी, उन्हीं में केवल हम नाथ डालते थे, इसको हम नाथ भी बोलते हैं। लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं कि कुछ एक स्थानों पर जो हमारे मादा पशु हैं जैसे कि गाय है भैंस है, इनमें भी नाक में नकेल देखने को मिल जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में या चारा डालने में या कई बार जैसे कि पशु का इलाज होता है तो उसमें काफ़ी इसमें हमें आराम मिलता है, काफ़ी लाभ इसका मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि जब हम नाक में नकेल डालते हैं तो समय क्या होता है। तो अमूमन ये माना जाता है कि जब हमारा पशु 1 से 1.5 वर्ष का हो जाता है उस समय हम पशु की नाक में नकेल डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय जो नाक की झिल्ली होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, और उस समय जब हम नकेल डालते हैं तो पशु को कोई दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होती है, कोई परेशानी भी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम पशु को नकेल डालते हैं तो एक तो हम ये ध्यान रखते हैं कि मौसम कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम नकेल डालते हैं तो अगर ज़्यादा गर्मी होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रक्त बहने की संभावना रहती है, इसलिए अधिक गर्मी में भी जो है पशु को हम जो है नकेल नहीं डालते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय भी काफ़ी अकड़न होती है, और ज़्यादा ठंड में भी ये नकेल पशु को नहीं डाली जाती है। और उम्र का हम ध्यान रखते हैं, 1.5 से 2 वर्ष के जब हमारे पशु होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उस समय इनको नाक में नकेल डाली जाती है। और किसान भाइयों, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षित नाक में नकेल डालने वाले हमें मिल जाते हैं, या कुछ डॉक्टर भी इस काम को करते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, तो केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही नाक में नकेल डाली जानी चाहिए। और जब किसान भाइयों हम पशु की नाक में नकेल डाल देते हैं तो उस समय ध्यान ये रखा जाता है कि एक तो रात का रखा हुआ पानी हम उसके नाक पर प्रतिदिन लगातार लगभग 10 से 15 दिन तक डालते हैं, साथ ही सरसों का तेल ये भी डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है और दर्द का हरण करता है, तो इसलिए सुबह शाम सरसों का तेल डालना भी बहुत ही आवश्यक होता है। और अब बात करते हैं कि अगर हम नाक में नकेल पशु के डालते हैं तो क्या क्या लाभ हमें होते हैं। तो एक तो पशु को हम नियंत्रण में आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पशु उग्र हो जाते हैं और हमलावर हो जाते हैं, तो ऐसे पशु को नियंत्रण में करने के लिए नाक में नकेल होना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही जब हमारा पशु बीमार होता है तो बीमारी में जब पशु को इंजेक्शन लगते हैं तो उस समय पशु को नियंत्रण में करना, पशु को इंजेक्शन लगवाना, तो नाक में नकेल जिस पशु के होती है तो वो बहुत आराम से बहुत आसानी से इंजेक्शन लगवा लेता है, आसानी से कोई भी दवाई हम अपने पशु को दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी ये जानकारी, जिसका विषय था पशुओं की नाक में नकेल डालने का लाभ। आकाशवाणी का ये नचिपापात केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात 9:30 पर प्रसारित होगा नेशनल साइंस मैगजीन पर आधारित कार्यक्रम रेडियोस्कोपी। रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सामयिक चर्चा का वक्त रहेगा हमारे लखनऊ केंद्र से सुबह 9:15 पर। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:31 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे गीत और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:20 पर आप सुनेंगे रागनी कलाकार होंगे कुलदीप सिंह आर्य और साथी। आपका पत्र मिला ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर। फिल्मी संडे कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अपराह्न 12:30 पर फिल्म अनाड़ी की कहानी।

अपराह्न 1:15 पर बाल वाटिका कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा हेल्पिंग नेचर और आपका व्यक्तित्व। भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक रक्षा बंधन। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी महिला समानता दिवस पर और आप सुनेंगे लघु नाटिका सच्चाई का उपहार। अपराह्न 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में प्रसारित किए जाएंगे दर्शन सिंह के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। एक और अनेक कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। यह कार्यक्रम आज आधारित होगा प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और अन्य कलाकारों पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शाम 5 हम आपके लिए लेकर आएंगे राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी। युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर आज का क्रम रहेगा झलकी। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर आप सुनेंगे अनिल कुमार गुप्ता की कहानी स्वागत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। सुबह के 7:18 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज। CCTV कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। साथ ही रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 3,54,000 रसोइयों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइयों के सम्मान समारोह में मानदेय बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वह रसोइयों को हेल्थ कार्ड वितरित कर कैशलेस इलाज की सुविधा का भी शुभारम्भ करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के साथ ही सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक परेशान न हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री योगी ने कल लखनऊ में प्रदेश में चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। कल नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
4: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और @AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

0: सभी परीक्षा केंद्र सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। एक रिपोर्ट।
1: सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए सर्वाधिक 45 परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद में बनाए गए हैं, जहां पर 18,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं आगरा में 26 केंद्रों पर 11,904 जबकि कानपुर शहर के 24 केंद्रों पर 10,698 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज परीक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में करीब 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधि मंडल के वाराणसी दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलने की उम्मीद है। जापानी दल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया और स्तूपों का अवलोकन किया। इसके बाद यह प्रतिनिधि मंडल काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुआ। सदस्यों ने यहाँ काशी की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्परा की झलक देखी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में कल ओडिशा परब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्कृति, कला और पर्यटन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा कराया जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 466,45,00,000 रुपए की परियोजना को कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 9 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की 24 घंटे निगरानी करने और हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज के साथ साथ में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सुबह सुबह आपके लिए लेकर आते हैं ढेरों गीत संगीत मनोरंजन और जानकारियों का कारवा। बरसात का ये मौसम और हवा में घुली है मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। मौसम ने तो आज दिल को शायराना बना दिया है। इस मौसम की यही खूबसूरती है कि ये हमें ज़मीन से जोड़े रखती है और ये मौसम हमारे दिल को सुकून और नई ताजगी से भर देता है। श्रोताओं, सोचिए, एक तरफ हमारी धरती बरसात के पानी से भीगकर निखर रही है और दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गहराइयों में ऊंचाइयों में नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। आज पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का ये दिन हमारी उस शानदार कामयाबी का प्रतीक है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत और लगन से आसमान की बुलंदियों को छुआ था। एक जमाना था जब हम चांद को सिर्फ अपनी शायरी और गीतों में पिरोते थे, लेकिन आज हमारे भारत ने उस चांद की सरजमीन पर अपने कदम रखकर एक नया इतिहास लिख दिया है। बात दरअसल 23 अगस्त 2023 की है, जब भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग की थी और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के इस अनजान हिस्से पर अपना कदम रखा। इसी अजीम कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे को सलाम करने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। जमीन से आसमान तक की इस खूबसूरत उड़ान में भारत ने एक से एक बढ़कर कीर्तिमान रचे हैं, चाहे वो एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना हो, मंगलयान का पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचना हो या फिर सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को रवाना करना हो। श्रोताओं, इंसान का हौसला जब बुलंद हो तो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर चुटकियों में तय हो जाता है। हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और जज्बे ने यह साबित किया है कि ख्वाहिशें अगर सच्ची हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इसी लिस्ट में अभी अनेक उपलब्धियां शामिल होना बाकी हैं, जैसे तृष्णा, गगनयान, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, लूपेक्स, NGLV, स्पडेक्स 2, स्पडेक्स 3 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये अंतरिक्ष कार्यक्रम आने वाले सालों में भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। इसी साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान की थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। तो आइए आज इस खास मौके पर अपने वैज्ञानिकों की लगन और काबिलियत को दिल से सलाम करते हैं।

श्रोताओं, हर सुबह जब सूरज उगता है तो अपने साथ आज़ादी, उम्मीद और एक नए उजाले की किरणें लेकर आता है। लेकिन श्रोताओं, इस दुनिया में एक दौर ऐसा भी था जब लाखों लोगों के लिए सूरज की किरणें रोशनी नहीं बल्कि गुलामी की बेड़ियों का दर्द लेकर आती थी। आज 23 अगस्त का दिन इतिहास के उसी काले पन्ने को याद करने और आज़ादी की अहमियत को समझने का दिन है। आज हम मना रहे हैं दास व्यापार और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन की नींव पड़ी थी 23 अगस्त 1791 को, जब सेंट डोमिंगो में बंधुआ बनाए गए लोगों ने गुलामी के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह किया था। यही बगावत आगे चलकर ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के खात्मे की वजह बनी थी। इसी ऐतिहासिक लड़ाई की याद में यूनेस्को ने 1998 में पहली बार 23 अगस्त को इस दिन को मनाने की शुरुआत की, ताकि दुनिया सदियों तक सही गए उस दर्द को कभी ना भूले। श्रोताओं, भले ही वो पुराना दास व्यापार खत्म हो चुका हो, लेकिन आज भी जुल्म, भेदभाव और आधुनिक गुलामी के कई रूप हमारे समाज में छुपे हुए हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है और आज़ादी हर एक इंसान का बुनियादी हक है। इसी सोच हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम हर इंसान को इज्जत, समानता और आज़ादी की रोशनी दे सकें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: समाइन, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सैर पर जाते हैं, कसरत करते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं। जरा सा सिरदर्द या बुखार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे मन का क्या हाल है? हम कभी खुद से ये क्यों नहीं पूछते कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ? जब हमारा मन भारी होता है, बेवजह घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती या किसी काम में मन नहीं लगता, तो हम में से ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए, जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे ही हमारा मन भी बीमार होता है। इसी का हल निकाला है हमारी भारत सरकार ने। ये है टेलीमानस, यानी टेलीमानस हेल्थ असिस्टेंस और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। आसान शब्दों में कहें तो ये एक हेल्पलाइन है जो देश के हर कोने में हर उस शख्स के लिए बनाई गई है जो किसी भी तरह के मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता या अकेलेपन से जूझ रहा है। इस हेल्पलाइन पर आप किसी भी समय आपकी अपनी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं और इस हेल्पलाइन से आपको आपकी मानसिक समस्याओं, तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन से संबंधित सुझाव मिलेंगे। इस हेल्पलाइन पर आपको ट्रेंड और अनुभवी काउंसलर मिलते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और वैज्ञानिक तरीके से आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालते हैं। श्रोताओं, अगर कोई भी जिंदगी के किसी भी दौर से परेशान दिख रहा है तो झिझकिए मत, उन्हें टेलीमानस का टोल फ्री नंबर दीजिए। ये नंबर है 1800-891-4416 या दूसरा नंबर है 1-4-4-1-6। सामाइन, याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा हाथ है जो आपको मुश्किलों से बाहर खींच सकता है। तो ये नंबर याद रखिएगा, नंबर है 1800-891-4416 या फिर 1-4-4-1-6। तो श्रोताओं, मुस्कुराइए, अपनों का साथ निभाते रहिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में अब रुख करते हैं तिथि विशेष क्रम की ओर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज की जो तारीख है यानी 23 अगस्त वो क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई थी आज के दिन। चीनी वैज्ञानिकों ने 2011 में आज के दिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगाया और उसके मार्ग की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन किया। आज श्रोताओं, इंटरनेट पर इतनी सारी वेबसाइट हैं कि इनकी गिनती करना लगभग असंभव है। 23 अगस्त को 1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट लॉन्च की गई थी। तब से हर साल 23 अगस्त को इंटरनॉट डे मनाया जाता है। इस वेबसाइट को टिम बर्नर्स-ली ने डिजाइन किया था। 23 अगस्त 1966 को ऑर्बिटर बन नाम के एक स्पेस क्राफ्ट ने चांद की कक्षा से धरती की पहली फोटो ली थी और

चांद की ऑर्बिट में पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था। 1962 में आज ही के दिन टेलस्टार सैटेलाइट से यूरोप और अमेरिका के बीच पहला लाइव टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया था। नरेगा विधेयक 23 अगस्त 2005 को लोकसभा में पारित हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। इसकी जगह अब 1 जुलाई 2026 को वीबीजी रामजी बिल लागू किया जा चुका है। 1944 को आज ही के दिन अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म हुआ था। सायरा बानो अभिनेता दिलीप कुमार की जीवन संगनी है। उन्होंने कई फिल्मों जैसे पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, गोपी, झुक गया आसमान, जंगली जैसी फिल्मों में काम किया है। आज के दिन 1943 में रीता फारिया का जन्म हुआ था। आप 1966 में लंदन में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। 1899 में 23 अगस्त को अमेरिका में जहाज से भेजे गए पहले रिकॉर्डेड वायरलेस संदेश ने संचार की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। सैन फ्रांसिस्को के पास मौजूदा एक लाइटशिप से शर्मन इज साइटेड संदेश भेजकर क्लिफ हाउस तक पहुंचाई गई थी। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों का। चीन की जमाखोरी पर सख्ती, माफ कीजिएगा, चीनी की जमाखोरी पर सख्ती, 10 केंद्रीय टीमें करेंगी राज्यों का दौरा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब ने निगरानी के जारी किए आदेश। 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा कोई। चीनी की भंडारण सीमा तय, गोदामों का किया जा रहा सत्यापन। जिला बिजनौर में 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को बिजनौर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने संभल से स्थानांतरित होकर ये पद संभाला है। ये सुर्खियां थी अमर उजाला से और अब खबरें हिंदुस्तान समाचार पत्र से। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना में खाना बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश देने को लेकर दी बड़ी राहत। मातृत्व अवकाश में 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उपहार देते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। 27 अगस्त की रात से 28 की रात तक रोडवेज बसों में एक सहयोगी के साथ महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

समय ने खुशियों, उम्मीदों और ढेर सारी जानकारियों से भरी आज के इस खूबसूरत सुबह के सफर को अब यहीं विराम देने का वक्त आ चुका है। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आपने सुना गीतों और जानकारियों से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

वाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता

0: पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HISTV और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जॉइंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने

0: रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष

0: predicted squally weather with wind speeds gusting up to 60 kilometers per hour, likely to prevail off West Bengal, Odisha and North Andhra Pradesh coasts, adjoining some parts of West Central and Northwest Bay of Bengal today. In wrestling, Indian women wrestlers added three more medals to the country's tally at the Under-20 World Championships in Slovakia, with Mansi Latha winning silver and Tanvi Gundesh Madgum and Komal securing bronze medals. In the 68-kilogram final, Mansi was edged 1-2 by China's Chen Ling Song in a closely contested bout, settling for the silver medal. India added two medals in the bronze medal playoffs. Tanvi defeated Canada's Agnia Kraskova 10-4 in the 57-kilogram category, while Komal overcame Hungary's Eda Balaz 5-2 in the 59-kilogram division to claim bronze. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka will begin today in Colombo. The match will start at 10 a.m. Indian Standard Time. India won the first test by 165 runs and currently lead the series 1-0. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Pramod. BJP backs Vande Mataram's legacy, headlines The Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on the front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS Sports Ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ताए नजर पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग

0: क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को इस सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। भारतीय एथलीट्स रोहित यादव और मुरली श्री शंकर ने बिलतरतीब नेजा फेंकने और लॉन्ग जंप मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। ये मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले आलमी एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 के तहत मुनाकिद हुए। रोहित यादव ने नेजा फेंकने के अपने छठे और आखिरी कोशिश में 87.68 मीटर की जाती तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। खवातीन के लॉन्ग जंप में कौमी रिकॉर्ड याफ्ता एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग के साथ भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी का आगाज किया। शैली सिंह ने 6.56 मीटर के साथ दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद ने तीसरे नंबर पर रहीं। नौमर एथलीट अबानिया राजाराजन ने भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए खातिन की 100 मीटर दौड़ में 11.34 सेकंड में फाते रहीं और 20 साल से कम उम्र का कौमी रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के सिलीगुड़ी के दौरे को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों के नुमाइंदों और दीगर मुतालिका फरीकों के साथ मीटिंग की और कहा कि आईन के दायरे में उनके मसाइल का जल्द से जल्द तस्फिया किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज रूस के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है भारतीय बहरिया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची की जानिब से तैयार करदा तीसरा आबदोशिकन जहाज मंगरोल सौंपा गया।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तिहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खुरेजी के खात्मे के लिए अक्वामे मुत्तहदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म थी आप आए बाहर आई। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो चोर से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का।

गुमनाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चंदन का एहसास।
1: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: ओ तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है झुक गया आसमान। नगमा निगार हैं शैलेंद्र और मौसिकार हैं शंकर जयकिशन।

0: के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला।
1: मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना इशारा फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज में। शब्द रचना फारूक कैसर की और संगीत ओपी नैयर का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना रेशम की डोरी फिल्म का ये गीत। इंदीवर का गीत था और संगीत था शंकर जयकिशन का। इसी के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नचीपाबाद केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब आप लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा सुनेंगे।
1: लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
3: जब भी किसी मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल और डर होता है। इनमें से एक एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा को लेकर होता है। आज एनेस्थीसिया केवल मरीज को बेहोश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्द नियंत्रण, सांस और रक्तचाप की निगरानी और ऑपरेशन के दौरान मरीज की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। फिर भी एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में किस तरह के भ्रम है, ये किसी भी ऑपरेशन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, ये हमारे शरीर पर किस तरह असर करती है और बदलते वक्त के साथ इलाज में एनेस्थीसिया की भूमिका को लेकर किस तरह के शोध सामने आए हैं, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है।
4: नमस्कार शैलेंद्र जी।
5: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो सामान्य मरीज हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनका इलाज भी शुरू हो जाता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उनके इलाज का क्या क्या हिस्सा है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, ऑपरेशन के दौरान मरीज के लिए इसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, और क्या ये सिर्फ मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया है या फिर इसका काम और ज्यादा है।
4: आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया अगर आप देखें तो मेडिकल विज्ञान क्षेत्र की सबसे नवीनतम तकनीकों में से एक है, जिसका जन्म 150 से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के बोस्टन शहर में मासाचुसेट्स हॉस्पिटल में हुआ था। और इस तकनीक की उपलब्धि की ये है कि इसके उत्पत्ति के बाद से मरीज को होने वाले ऑपरेशन के दौरान दर्द और उसकी सेफ्टी बहुत गुना बढ़ गई है। इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि जब भी आप कभी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने सर्जन से मिलें, और सर्जन के मिलने के साथ ही आप अपने बेहोशक और एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलने की चेष्टा जाहिर करें। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है जिसके लिए आपकी सर्जरी होनी

0: उससे रिलेटेड जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स आपके ऑपरेशन के दौरान आ सकती हैं, उनको एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पहले से देखकर समझकर और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने लेवल से मैनेज करके करा जा सकता है।
1: बिल्कुल सर, आप रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों को देखते होंगे, उनके सवालों को सुनते होंगे, तो सर आम लोगों में एनेस्थीसिया को लेकर किस तरह का डर आपने देखा, मरीजों के मन में से लेकर किस तरह के सवाल होते हैं?
0: देखिए, जब मरीज प्रथम बार किसी ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरने वाला होता है तो उसके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं कि मेरा ऑपरेशन कितनी देर का होगा, मेरे ऑपरेशन के दौरान मेरे ऊपर कितना दर्द की संभावना हो सकती है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है मरीजों का कि डॉक्टर साहब बेहोशी के टाइम मुझे कुछ पता तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ याद तो नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा तो क्या मैं उस चीज को देख के डर तो नहीं जाऊंगा। तो इन सभी मरीजों और सभी अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों को मैं यही चीज बोलता हूँ कि ये चीज बिल्कुल साधारण है। इसको समझने और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपका ये चेष्टा होनी चाहिए कि आप अपने एनेस्थेटिस्ट से ये सारे सवाल खुल के ऑपरेशन से पूर्व पूछें कि क्या आपको ऑपरेशन के दौरान दर्द होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
1: सर मरीज से पूछते भी हैं बीच बीच में कि आपको दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा?
0: बहुत बढ़िया सवाल है।
1: एनेस्थीसिया असर कर रही?
0: इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया मूलतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज पूर्ण बेहोश होता है। दूसरी तरीके का एनेस्थीसिया जो होता है वो होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जो आज के समय में बढ़ रहा है। जैसे कमर के नीचे की अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है, पैर में चोट है, पैर में कोई गांठ है, जो सबसे सूक्ष्म लेवल का एनेस्थीसिया होता है वो होता है लोकल या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया, जिसमें आपको नींद की कम मात्रा में दवाई देते हुए छोटी सी बायोप्सी करनी है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट है किसी छोटे से प्रोसीजर के लिए जिसके लिए पूर्ण बेहोशी देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे तरीकों में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया और मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर करते हैं।
1: जैसे सर दांत वगैरह उखड़वाते हैं तो उसमें किस तरह का?
0: देखिए, दांत वाले एनेस्थीसिया जब आप उखड़वाने जाते हैं तो यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर दी जाती है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब शरीर के जिस हिस्से की छोटी सी जांच करनी है, या दांत उखाड़ना है, या मरहम पट्टी करनी है, चोट लगी है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस एरिया में छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उतने हिस्सा सुन्न हो जाता है, और पूर्ण बेहोशी में मरीज की सभी क्रियाओं का पूर्णतः कंट्रोल एक विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के पास होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में तो आपको मॉनिटरिंग जब हम करते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि मरीज का हार्ट रेट कितना है, मरीज की दिल की धड़कन कितनी है, और रीजनल एनेस्थीसिया में पेशेंट बिल्कुल खुश रहता है, सब कुछ सुनाई देता है, बीच में वो गाने भी सुन सकता है ऑपरेशन के दौरान, तो वो अपना काम आराम से कर सकता है और ऑपरेशन चलता रहता है।
1: कंफर्ट कराने के लिए मरीज से बात करते रहते हैं।
0: तो रीजनल एनेस्थीसिया का बहुत उपयोग होने से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से मरीज अडॉप्ट कर लेता है और इन चीजों पे बड़ा खुश रहता है।
1: सर ये तो बात हो गई मरीजों के मन में जो सवाल है एनेस्थीसिया को लेकर उसकी, लेकिन सर एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि कई लोग मानते हैं कि एनेस्थीसिया का दिमाग और याददाश्त पर लंबे समय तक असर पड़ता है, क्या ये सामान्य भ्रम है या फिर कुछ मरीजों में ऐसी समस्या कई बार देखने को भी मिली?
0: बहुत बढ़िया सवाल शैलेन जी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि तीन बेहोशी के जो हम लोग की तकनीकें हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल और लोकल, उसमें दिमाग पे असर पड़ने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जनरली जनरल एनेस्थीसिया के मरीजों में देखने में पाई जाती है, लेकिन सभी मरीजों में नहीं होती है। ये उन मरीजों में होती है जिनमें उनकी एसोसिएटेड कोई इलनेस होती है, जैसे कि आप बढ़ती हुई उम्र के हैं, आप 65 साल, 75 साल, 80 साल, और आपको पहले से भूलने की बीमारी है, या आप किसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज से सफर कर रहे हैं, या आपको सर में चोट लगी है जिसके लिए आप उस ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो एनेस्थीसिया की दवाओं का जो असर होता है वो मूलतः 8 घंटे से 24 घंटे ऑपरेशन के बाद तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद, तो उसमें बेहोशी से ज्यादा मरीज को ऑपरेशन से पहले जो बीमारी है वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ सकती।
1: सर इसी से रिलेटेड सवाल ये भी है कि अगर जब किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो क्या इसको परखा भी जाता है ऑपरेशन से पहले?
0: बिल्कुल,
1: टेस्ट भी किए जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल, इसीलिए जो हम लोग के एनेस्थीसिया में एक चीज होती है PAC, जिसको हम लोग कहते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप, और आपको ये कभी नहीं पता चलता है कि ये शरीर बेहोशी के दौरान कैसा बिहेव करेगा। इसी चीज को जांचने के लिए एनेस्थेटिस्ट द्वारा PAC को बहुत ज्यादा जरूरी बोला गया है, कि अगर आपके पेट में का छोटा सा ऑपरेशन है, हाथ का छोटा सा ऑपरेशन है, किसी भी चीज का छोटा ऑपरेशन है जिसके लिए आपको चाहे लोकल एनेस्थीसिया भी लेना पड़ रहा हो, आप विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट से मिलके अपनी PAC जांच जरूर कराएं। क्योंकि जब आप ये जांच कराते हैं तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपके कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जिनसे हमको आपके शरीर में क्या चीज नॉर्मल से कम है, क्या चीज नॉर्मल से ज्यादा है, और वो चीजें पता लग जाती हैं बिफोर हैंड, और उनको फिर हम लोग को कंट्रोल करने में ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के अंदर बहुत आसानी।

0: होता है।
1: बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से जानकारी दी सर कि अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मरीज भी अलग अलग एज के होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है। तो क्या सर बच्चों, बुजुर्गों, हृदय और सांस की बीमारी वाले मरीजों या फिर गर्भवती महिलाओं में एनेस्थीसिया देते समय किसी अलग तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, और क्या हर मरीज के लिए इसका अमाउंट भी अलग होता?
0: बिल्कुल, जैसे पीएसी पे हम लोग जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसकी उम्र देखते हैं, हम उसका वजन लेते हैं, हम उसकी हाइट देखते हैं, हम उसके मेंटल स्टेटस देखते हैं, आईक्यू लेवल देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ गया लेकिन उसकी अभी आईक्यू कम है। तो हम सभी मात्राओं और सभी अवेलेबल रिसोर्सेस को जांच परख करके ही अपना एनेस्थीसिया का प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई गर्भवती महिला आती है, तो गर्भवती महिला में एक जान नहीं दो जान है, तो जब भी हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि हमें दो जानों की रक्षा करनी है, और उसी के हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी डोज देनी है, किस व्यक्ति को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस व्यक्ति में हमको ये चीज नहीं करनी है और किस व्यक्ति के लिए हमको कितनी मात्रा में उचित ड्रग देनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते।
1: बिल्कुल सर, आपने सर चर्चा के दौरान कहा कि जब एनेस्थीसिया दी जाती है कंप्लीट तौर पे, तो हम खुद ही मॉनिटर भी करते हैं कि
0: बिल्कुल
1: उनका हार्ट रेट क्या है, उनके बाकी चीज क्या है। तो सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि मरीज की सांस, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, हृदय गति और एनेस्थीसिया की गहराई जैसी चीजों की लगातार निगरानी में तकनीक का आप किस तरह से प्रयोग बढ़ाए, खासतौर पर जब मॉनिटरिंग के लिए तकनीक और आधुनिक उपकरण भी अब प्रयोग किए जा रहे हैं।
0: एनेस्थीसिया इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से अगर मृत्यु दर में कोई कमी आई है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस ब्रांच की वजह से हुआ है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग के पास जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज होता है तो वो पूरे टाइम मॉनिटर होता है। जैसे कि अगर बाई एग्जाम्पल बताना चाहूं, तो जैसे अगर डॉक्टर साहब आपका 1 घंटे या 2 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर ले रहे होंगे या आपकी सांस की धड़कने सुन रहे होंगे, उसके एवज में अगर आप ऑपरेशन में होंगे तो आपके हाथ में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा वो हर 2 मिनट 3 मिनट में अपने आप बीपी लेता रहेगा। लगातार आपकी ईसीजी मॉनिटरिंग हो रही होगी कि जिससे कि आपके दिल की धड़कन बिल्कुल नियंत्रण में रहे और हमारी आंखों के सामने रहे। तो मॉनिटरिंग तो एनेस्थीसिया का, अगर आप कहिए तो, अगर एनेस्थीसिया शरीर है तो मॉनिटरिंग आपकी आत्मा है। बिना मॉनिटरिंग के हम एनेस्थीसिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी
1: सर, इसी में आपसे रिलेटेड सवाल है कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि AI का भी प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में क्या एनेस्थीसिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर काफी शोध जिस तरह से हो रहे हैं, क्या भविष्य में AI एनेस्थीसिया की मात्रा तय करने और मरीज की स्थिति के अनुसार उसे नियंत्रित करने में डॉक्टर्स की मदद कर सकता है?
0: चलिए जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि AI हम लोग इधर हाल फिलहाल 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस AI का उपयोग एनेस्थीसिया में काफी पहले से कर रहे हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लोग के पास मॉनिटरिंग में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में एक पल्स ऑक्स की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये मरीज को ऑपरेशन के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये जो AI का जो आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड चर्चा हो रही है, इस AI का उपयोग एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर ब्रांच में जो हम लोग की एक्सट्रीम मॉनिटरिंग है उसमें हम लोग ये काफी पहले से कर रहे हैं। और रही बात आने वाले समय में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि AI का उपयोग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन AI केवल आपको एक चीज बता सकती है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको AI के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और AI के साथ रियल इंटेलिजेंस, जो कि एक डॉक्टर और एक मनुष्य में ही ये रियल इंटेलिजेंस हो सकती है। मशीन केवल आपको ये बता सकता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन मशीन आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है रियल इंटेलिजेंस, जो वर्षों की अथक मेहनत और अथक प्रयास और अथक मरीजों के साथ अनुभव के साथ बन पाती है। और उस चीज को अगर हम आने वाला समय देखें तो हमारे जो ब्रांच की डेवलपमेंट होगा वो इसी श्रेणी में होगा कि कैसे AI और रियल इंटेलिजेंस मिलके हम मरीज को ऑपरेशन के दौरान और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रख सके।
1: बिल्कुल सर, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और हम AI तकनीक की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा कि हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल के अध्ययन में इंडोस्कोपी जैसे मामलों में नाक के रास्ते से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दर्द और ऑपरेशन से पहले की चिंता कम होने की बात सामने आई। तो सर क्या ऐसे नए प्रयोगों का भविष्य आप देखते हैं और क्या ये पारंपरिक एनेस्थीसिया का विकल्प बन सकते हैं?
0: देखिए, एनेस्थीसिया में हम लोग शरीर के सभी तरीकों से हम लोग दवाई देने की कोशिश करते हैं। सबसे सीधा तरीका होता है कि मरीज को उसकी नसों के द्वारा खून के रास्ते से दवाई दे दें। दूसरा तरीका होता है कि मरीज को हम सुंघा के, जैसे आपकी श्वास नली के रास्ते हम कुछ दवाइयां दें जिससे वो चला जाए। तो ये श्वास नली के ही रास्ते में अगर आप देखें तो नाक का जो रास्ता होता है वो आपके एयरवे का ही पार्ट होता है। एयरवे का मतलब ये कि जो चीज हम लोग सांस लेने में उपयोग लेते हैं उसको ही हम एयरवे

0: हैं। तो ये भी जो रास्ता है नेजल रूट, उसका उपयोग भी हम लोग बहुत बार दवाइयां देने के लिए करते हैं, जिससे कि वो दवाइयां अच्छे से शरीर में पहुंच जाएं और उसका हम लोग मरीज की स्थिति को नियंत्रण करने में कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सामान्य मरीज है उसके लिए आपका संदेश क्या है? ऑपरेशन से पहले ज्यादा डर एनेस्थीसिया को लेकर जिन्हें लगता है, मरीज और उसके परिवार को एनेस्थीसिया से जुड़ी किन बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए?
0: देखिए, मैं इस टॉक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, देखिए एनेस्थीसिया जनरली जब कभी आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मतलब हमारे पास समय होता है, तो वो बहुत अच्छा समय होता है अपने शरीर को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के। ऑपरेशन से पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आप अपने अल्कोहल को पूर्णतः छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऑपरेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, वो आपसे कहेंगे देखिए आप अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए जब हम ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी के उस दौर से गुजरते हैं, तो हम लोग को सबसे ज्यादा किसी भी एनेस्थेटिस्ट से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा कठिन मरीज वो यही बताएगा कि एक मोटा मरीज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं एनेस्थीसिया के पर से कि उनको कंट्रोल करने में बहुत हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप ऑपरेशन से पहले अपने वजन को 4-5 किलो भी कम कर लेंगे तो आपकी ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी और ऑपरेशन के दौरान आपका रिस्क भी बहुत कम होगा। लेकिन एनेस्थीसिया का रिस्क इलेक्टिव सर्जरी में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बेहोशक से ज्यादा खुद मरीज की है कि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, अल्कोहल छोड़ देगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। तो नॉर्मल पब्लिक से मेरा यही संदेश है कि जब भी कभी सर्जरी के लिए आपकी प्लानिंग हो तो अपने एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलें, अपना प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप जरूर कराएं, और आपके पास सबसे अच्छा समय है अपनी खराब आदतों को, गलत आदतों को रोककर सही आदतों को अपनाने का। पीएसी के बाद जो समय होता है उसको आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप में अच्छे चेंजेस ला सकते।
1: बिल्कुल सर, एनेस्थीसिया पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और लोगों के बीच इसे लेकर सामान्य भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चैलेंज जी, और मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से एनेस्थीसिया जैसे एक सब्जेक्ट जिसके बारे में कम बातचीत होती है और जनरली पर्दे के पीछे का काम होता है, उसको सुन के जब भी कभी सर्जरी कराने जाएं तो अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें और अपने दिल की जो भी क्वेश्चन है उनसे डायरेक्टली बात करके अपने डर को दूर करने की कोशिश।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: अभी आपने सुनी हमारे लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा। आकाशवाणी का ये नचिपाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है।

0: धरती गाती है कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुलदीप सिंह आर्य और साथियों की गाई रागनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूं विवेक प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं
1: मैं श्रोताओं धर्मेंद्र और मेरा भी आपको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और जैसा कि श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम होता है आपके फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित। तो श्रोताओं अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गीत, तो आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 94570-78288 9457078288।
0: जी, तो बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं आपके। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी।
1: बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि जैसे हमें ये फरमाइशी पत्र भी मिले हैं और ये मैसेज भी मिले हैं, मैसेज लगातार हमारे स्क्रीन पर आ भी रहे हैं और ये पहला पत्र हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
0: जी,
1: विवेक,
0: बिल्कुल जी।
1: तो ये पहला पत्र हमें मिला है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। मजनू का टीला से ये पत्र श्रोता हमें मिला है और पत्र भेजने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।
0: और आप हैं मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सैनी। ये फरमाइश हमारे पास आई है पटियाली रोड गंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा की।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से और भेजने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। और इन्हीं के साथ हमारे श्रोता पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने।
0: दादरी गेट भिवाणी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। ये फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की।
1: मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, संचित देशमुख, प्रथमेश, सर्वत, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदा रानी और हीना कौसर।
0: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: जेवरा हिसार से हमारे श्रोता हमें मैसेज भेजा है और भेजने वाले हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण का। तेलंगाना निजामाबाद से हमारे श्रोता शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख।
0: आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म शागिर्द का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में तो उठाइए अपना फोन और लिख भेजिए हमारे पास आपकी फरमाइश व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 9457078288। तो धर्मेंद्र जी, अगला मैसेज किन का है हमारे पास?
1: बिल्कुल, और ये अगला मैसेज विवेक हमें मिला है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, और भेजने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार।
0: जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह।
1: उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से, फरमाइश करता है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल।
1: और इसी गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है तहसील रोड गंज ढूंढवारा से, भेजने वाले के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नगला उबन नजीबाबाद से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर, देवा, ओम प्रकाश, छोटी, घनश्याम, शीतल और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप सिंह।
1: रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का।
0: हितेंद्र दास हैं असम से, और शुकुलपुरा बनारस से हैं मोहम्मद परवेज और रतिनाथ त्रिपाठी।
1: फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, भेजने वाले हैं एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
0: ये मैसेज है तेलंगाना कोठा गुदेम डिस्ट्रिक्ट गिलांडू से, फरमाइश की है राजेश खन्ना, चिन्नी पासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और अम्मी ने।
1: राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और आहले खन्ना।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा ने।
1: बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता मैसेज भेज रहे हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नहटा।
0: इसी गीत की फरमाइश आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह की।
1: सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा।
0: आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में बैराग फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: ये फरमाइश हमारे पास आई है कार्यक्रम के अगले गीत के लिए। नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकमा अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से,
1: झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया।
0: असालतपुरा मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी।
1: गांव करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी और माहे नूर अंसारी।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया।

0: डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामरिया और अल कबीर ने।
1: मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे सिद्धार्थ गोंडाने की।
1: और ये पत्र हमें मिला है इसी गीत की फरमाइश के लिए कृष्णा पार्क दिल्ली से भेजने वाले सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना।
0: आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और इन्हीं के साथ हमारे श्रोता करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और मेराज अंसारी।
0: ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद डांगी।
1: सत्यदेव कुमार राणा, विष्णु कुमार राणा, इस्लाम नगर पबसरा जिला बदायूं से।
0: जालंधर से हैं मीना कौर और संदीप कौर। रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से हैं रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, रिहाना रिहान अंसारी। लोनी से हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाशवीर राजपूत, अनुप्रिया चंद्रवंशी। खंडवा से हैं राकेश, पिंकी और दुर्गा। जेल रोड रायगढ़ से हैं लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा।
1: ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह।
0: आइए सुनते हैं एक गीत बेटा फिल्म से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी की, राज़िया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी की। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद।
1: और कार्यक्रम में अगला मैसेज शामिल करने से पहले विवेक, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज 12:05 पर हमारा कार्यक्रम होगा, आपका पत्र मिला
0: जी बिल्कुल
1: है ना, तो उसमें श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं कि वो उनके हमारे कार्यक्रमों के प्रति क्या क्रिया प्रतिक्रिया, क्या सुझाव हैं, क्या शिकायत हैं, या क्या हमारे केंद्र से और वो सुनना चाहते हैं, क्या बेहतर हम अपने कार्यक्रम में करना चाहते हैं। तो इस सभी के लिए आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में 12:05 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर यही रहेगा 9457078288।
0: जी, आपका अपना कार्यक्रम है, जरूर इसमें शामिल होइएगा।
1: बिल्कुल। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान।
0: कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा।
1: कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से। इन्हीं के साथ हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा।
1: गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान।
0: आप हैं संगी संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से।
1: अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी पोती रौनक दीप कौर।
0: गांव व पोस्ट राहुनगली से हैं आचार्य सतवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का चौहान, भव्या सीमा रानी राघव।
1: राही नगर गंज डुंडवारा से ये मैसेज तो हम शामिल कर चुके हैं और एक हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, इनका मैसेज शामिल कर लेते हैं। ये देखिए श्रोता हमारे दोबारा दोबारा मैसेज भेजते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है मैसेज पढ़ने में, हमारे वो श्रोता छूट जाते हैं जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। विदर्भ श्रोता क्लब जल

0: गांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से। नबी हसन अब्बासी, शहजाद शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, सबिया अंजुमन खान और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी और अनमोल मिगलानी।
1: MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हैं डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर ईशिता सहानी, डॉक्टर प्रियंका मोदी बरकाकाना से हैं, नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तिखार इब्राहिम।
0: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
1: पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद।
0: इद्रीश हिलाल जैन प्लांट देहरादून से हमारे श्रोता हैं और इन्होंने नाम नहीं लिखा ना ही गीत के लिए फरमाइश, केवल जगह लिखी है इद्रीश हिलाल जैन प्लांट देहरादून से। चलिए श्रोताओं अपने नाम भी आप हमें लिखकर भेजें। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया का, ज्योति और अनुपमा जी का। इसी गीत को सुनना चाहा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म सनम से, साधना सरगम की आवाज में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद। आप भी अगर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94-570-78-288। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनुश्री बुरांडे। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार।
2: गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाहनकर, निर्मला नवाहनकर और विशाल नवाहनकर। मलकापुर से है नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरहेकर।
2: ये मैसेज हमारे पास आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू और कुंती साहू का। देखिए दोबारा मैसेज आ रहे हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है, और कार्यक्रम में भी थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है।
1: गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र और गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।
2: ये मैसेज है कुर्मा जांजगीर छापा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी का।
1: मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निशाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, सबरा खातून, शहजादी, सराफत अली, अब्दुल रहमान और मदीहा।
2: ये मैसेज हमारे पास है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से बीना मस्कीन का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक और मेहर नगर उमेरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। और इन्हीं के साथ हमारे श्रोता हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी।
2: आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजा का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली के।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम का।
0: ग्राम पंचायत बठेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और निधि निखिल वर्मा।
1: आप हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी।
0: करोला मुरादाबाद से ये मैसेज हमें मिला है और ये मैसेज हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं विवेक। और अगला मैसेज हम पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें मिला है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का।
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हैं, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, पिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी।
0: गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत।
1: फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से हैं, योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।
1: ये मैसेज है हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत, अंकित कांगड़ा।

0: ये गीत आपने सुना राम जाने फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है सिंदूर फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी की इस शब्द रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को सुना चाहा है आप सभी ने।
1: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
0: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
1: गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव।
0: दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार।
1: जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी।
0: जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल।
1: डॉक्टर दिनेश काले जलगांव जंक्शन नॉर्थ महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं लाल। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैवनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान।
1: गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना आशिक हुसैन अंसारी।
0: बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं मन भावन नैना, सत्यनारायण, कपिल शोभा, पुंदीबाई बागरी।
1: ये मैसेज भी हम अपने
0: जी
1: कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं, ये मैसेज हमें रिपीट रिपीट मिल रहे हैं। और मोताला महाराज से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
0: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक।
1: गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर।
0: आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे अपने फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और मिथुन को। फिल्म का नाम था गदर 2। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। गीत के बोल हैं राकेश कुमार के और संगीत मीत ब्रोज का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे देव कोहली का लिखा गीत। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था बाजीगर। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म दबंग 2 से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल समीर के और संगीत साजिद वाजिद का।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए सुनते हैं दिलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली की आवाज में। फिल्म का नाम गुड न्यूज। गीत के बोले कुमार की और संगीत लीजो जॉर्ज और डीजे चेतस का।

खिलाड़ी 786 ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में। गीत के बोल हैं शब्बीर अहमद के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। जी हाँ श्रोताओं, ये आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, सुझाव, शिकायत या कुछ क्या खास आप हमारे केंद्र से सुनना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से सुनना चाहते हैं, ये सब आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में लिखकर भेज सकते हैं। आप अभी भी हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, हम शामिल करेंगे 12:05 पर कार्यक्रम आपका पत्र मिला में। तो नंबर हम आपको एक बार बता देते हैं, हमारा नंबर है 94-570-78-288, 9457078288। इस नंबर पर आप अभी सीधे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और सुनेंगे अपने पत्रों के जवाब। 12:05 पर कार्यक्रम रहेगा आपका पत्र मिला।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको फिल्म बलमा का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था गुलामी। गीत के बोल थे गुलजार के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म कृष से। गीत के बोल हैं इब्राहिम आशिक के और संगीत राजेश रोशन का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था कृष। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि 12:05 पर होगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। श्रोताओं, आप भी हमारे कार्यक्रमों के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपनी शिकायत भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94-570-78-288। आप अभी सीधे हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे 12:05 पर। और कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, फिल्म का नाम अपराधी। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अपराधी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल साइंस मैगजीन प्रोग्राम रेडियोस्कोपी, और रात 10 होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या, और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

शाम 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत कलामे शायर होंगे मोहम्मद इलियास। सात बजकर 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आज हम आपको सुनवाएंगे अजय जोशी की गाई गजलें।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अनिल कुमार गुप्ता की लिखी कहानी आगामी पीढ़ी का स्वागत।

कृषिगत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:05 पर आप सुनेंगे धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई विषय पर डॉक्टर हरिओम कटियार सहायक प्राध्यापक उद्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से जितेंद्र कुमार की बातचीत।

शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे और 5 बजे होगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में आज जानकारी के विषय होंगे राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2:30 पर आज कलाकार होंगे ऋषिकेश मुखर्जी। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में 1:45 पर आज आप सुनेंगे दर्शन सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। 1:15 पर बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लघु नाटिका सच्चाई का उपहार। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम आपका पत्र मिला में है। और हम आपके पत्रों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे साथी।
1: श्रोताओं, मैं हूं विवेक प्रताप सिंह, मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये पहला पत्र विवेक जी पढ़ते हैं किसका मैसेज के माध्यम से हमें ये मिला है। मैसेज में लिखते हैं हमारे श्रोता, ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम नियमित, ये हमारे श्रोता हैं 30 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद गांव चमरोआ जिला संभल उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं ब्रजेश मिस्त्री, कविता, इनकी बेटी वैष्णवी, बेटा दिव्यांश और इनके भाई हैं किशन। ये भी लिखते हैं कि सोमपाल, अभी 11 तारीख को हमारे भाई का देहांत हो गया जो कि नशे के आदि थे। किडनी फेफड़े उनके डैमेज हो गए लेकिन उन्होंने नशा नहीं छोड़ा, और बच्चों का क्या होगा जरूर समझना चाहिए था। नशा करने वालों को सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक सुनने में अच्छे लग रहे हैं। और हम इस समय दिल्ली द्वारका सेक्टर 9 में काम कर रहे हैं, पहाड़ पर खड़े होकर चेन्नई का, लेकिन आकाशवाणी नजीबाबाद को नहीं भूल रहे हैं, सुनते लगातार हैं और सारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। कोई अगर हमें कार्यक्रमों में शिकायत होगी तो अगले पत्र में ज़रूर भेजेंगे, हमारा पत्र ज़रूर शामिल कीजिएगा।
1: जी, तो धर्मेंद्र जी, ये मैसेज हमारे पास आया है संभल से ब्रजेश जी का, और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है अपने मैसेज के माध्यम से। इन्होंने लिखा है कि नशा नहीं करना चाहिए, और नशे से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारे शरीर में हो जाती हैं, नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो। और ये हमारे इतने लंबे समय से हमारे प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, और देखिए इन्होंने नशे के लिए मैसेज दिया है और मल्टीपल ऑर्गन्स उनके भाई के डैमेज हुए थे। तो हम तो अपने श्रोताओं को ये कहेंगे कि नशे से दूर रहें और नशे को हमेशा के लिए ना कहें। और ये अगला पत्र मैसेज हमें मिला है, ये भेज रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। एक बहुत ही शायराना अंदाज से लिखते हैं कि माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला।
1: इसमें भी देखिए बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि संतोष जो है हमारे मन में वो होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। सिर्फ लालच ही, लालच के पीछे अगर हम भागते रहेंगे तो हम अपने दिमाग को और अपने शरीर को थकान के अलावा कुछ नहीं देते।
0: जी बिल्कुल, और कर क्या रहे हैं आजकल, यही हो रहा कि मतलब जिंदगी में इतनी भागदौड़ हो गई, पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद का भारत का नंबर 1

0: में इस प्रोग्राम का समय बताया था, और उससे पहले भी हमने गीत तुम्हारे में भी इसका अनाउंसमेंट किया था, कई बार किया है और चित्रपट संगीत में भी किया है। तो अगर आप हमारे स्टेशन ध्यान से सुनेंगे तो हम कार्यक्रम विवरण बताते रहते हैं, और आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है नगीना से, अनिल विनोचा जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे धर्मेंद्र जी और विवेक जी को सादर नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। और लिखते हैं कि लास्ट वीक पेश किए गए प्रोग्राम की हाले सूरत और सुझाव, बहुत सारी शिकायतें इस तरह से हैं। लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया ममता जी ने, रात के हम सफर विवेक जी, जागरूक श्रोता राजवीर जी और लोकेंद्र जी, जिंदगी लाइव किस्मत टॉपिक पर रेणु जी बहुत ही सुपर प्रोग्राम पेश किए, रिमझिम जी और जसवंत जी ने भी सॉन्ग बेस प्रोग्राम अच्छे किए, दिल्ली से चर्चा डिजिटल बैंकिंग पर बहुत ही कीमती लगी, आज विवेक जी सुबह से संडे को सुपर बनाए हुए हैं, और धर्मेंद्र जी भी गीत तुम्हारे और चित्रपट में छाए हुए हैं, शिकायत ये है कि ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम ना किया करें, और सुझाव है कि सैटरडे और संडे को नाइट में सॉन्ग बेस प्रोग्राम करें, जिससे त्वाड्डे नाल ही दिल लगा रहे, हम इधर उधर ना जाएं, आगे आप देख लें कि क्या प्रोग्राम स्तर पर आप चेंज कर सकते हैं।
0: जी, तो इतनी सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: एक
1: और देखिए
0: जो घुमा के इन्होंने तारीफ हमारी की है उसमें तो हमें भी बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई
1: जी। और एक एक प्रोग्राम की विवेक जी जो इन्होंने डिटेल लिखी है ना,
0: जी
1: किस
0: जी जी
1: अनाउंसर ने कार्यक्रम को पेश किया, वाकई ये कार्यक्रम दिल से सुनते हैं और लगातार सुनते हैं
0: जी, बिल्कुल। और अनिल विनोचा जी जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, और बहुत सारे श्रोता जो हमारे एक एक अनाउंसर का, हमारे जो प्रस्तुत करता है
1: जी,
0: उनका नाम लिखकर भेजते हैं कार्यक्रम के साथ, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये दिखाता है कि आप हमारे प्रोग्राम कितनी बारीकी से सुनते हैं और कितना उन पर ध्यान देते हैं। बाकी तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जिस तरह से आपने लिखा है कि अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा किया जाए।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है जिला संभल गांव सिरसा से सचिन प्रजापति, कमल प्रजापति, अरुण प्रजापति, कुश प्रजापति, कृष्ण वैष्णवी और हितांशी प्रजापति का। लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को हमारा नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। और लिखते हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक शिकायत है कि सावन चल रहा है, आपके केंद्र पर सावन पर आधारित गीत बहुत कम बज रहे हैं, जो 9:25 पर सुबह को कार्यक्रम होता है रागनी और लोक गीतों पर आधारित, तो उसमें सावन की मल्हार भी बजाना शुरू करें।
0: जी, बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है कि सावन की मल्हार हम बजाना शुरू करें, और शिकायत इन्होंने की है कि सावन चल रहा है, सावन पर आधारित गीत बहुत कम बज रहे हैं, ऐसा है क्या धर्मेंद्र जी?
1: नहीं, देखिए टाइम टाइम पर गीत सावन के बज भी थे, क्योंकि सावन पर गीतों का बहुत बड़ा कलेक्शन भी नहीं है, तो और गीत बजते रहते हैं, ऐसी बात
0: जी
1: नहीं है।
0: अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक महीने का सावन का महीना होता है, अगर रोज रोज हम सावन के गीत बजाने लगे तो फिर वही गाने रिपीट होते रहेंगे, और फिर थोड़ा सा प्रोग्राम में जो रोचकता है वो थोड़ा सा कम हो जाती है।
1: हाँ
0: जी,
1: और
0: तो लेकिन
1: हालांकि इन्होंने लिखा जो लोक संगीत का कार्यक्रम हमारा 9:25 पर, उसमें सावन की मल्हार बजाना शुरू करने के लिए ये लिख रहे हैं
0: जी। और जिस दिन सावन का पहला दिन था उस दिन हमने विशेष कार्यक्रम बजाई भी थे सावन के ऊपर
1: जी
0: जी, तो बहुत अच्छा लगा, आप हमारे कार्यक्रमों से इसी तरह जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। अगला मैसेज हमारे पास किन का है?
1: ये लिख रहे हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से बंशीलाल, लिखते हैं कि हमारे यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आते हैं, जैसे गीत तुम्हारे, आपकी फरमाइश और आपका पत्र मिला, और हमारे व्हाट्सएप मैसेज गीत तुम्हारे में रोज व्हाट्सएप करते हैं, मगर लिख रहे हैं कि 1-2 दिन शामिल नहीं होता, कृपया हमारे भी व्हाट्सएप शामिल किया करें।
0: जी बिल्कुल, आपकी जो शिकायत है वो बहुत ही अच्छे हमें लगी। क्यों लगी? क्योंकि हम जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं गीत तुम्हारे या जो भी फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम मैसेज शामिल करते हैं या पत्र शामिल करते हैं, उसमें हम बार बार ये बात बोलते हैं कि दोबारा दोबारा जिनका नाम अगर शामिल हो चुका है कार्यक्रम में वो लोग दोबारा मैसेज ना करें। अब देखिए, इसी तरह की शिकायत इन्होंने भेजी है धर्मेंद्र जी कि हमारा मैसेज शामिल नहीं हो पाता, तो ये शायद दिक्कत इसी वजह से आती है कि हम मैसेज ढूंढते रह जाते हैं नए नए, और उसी चक्कर में
1: हाँ,
0: वो मैसेज खुलते हैं
1: इसीलिए बीच बीच में जो है कार्यक्रम हम मैसेज देते रहते हैं कि रिपीट

0: मैसेज ना हो, और
1: जी
0: क्योंकि जिन लोगों के मैसेज शामिल नहीं होते वो छूट जाते हैं और दोबारा
1: हाँ
0: मैसेज लोगे।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपका नाम बोल चुका है, आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है, तो कृपया करके दोबारा मैसेज ना करें, इससे यही दिक्कत होती है। और आपको हमारे कार्यक्रम सभी अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें हमारे कार्यक्रमों से।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है गांव गद्दारोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। लिखते हैं कि विवेक प्रताप सिंह और धर्मेंद्र जी को नमस्कार, सुबह से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, आप दोनों
1: धन्यवाद
0: को बहुत बहुत बधाई। लेकिन 3 बार भेजने पर भी मेरा मैसेज नहीं पढ़ा गया, इसका मुझे बहुत दुख है लेकिन गुस्सा भी है, पता नहीं क्या कारण होगा, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सारे वंदनाओं, चिंतन हो, सूरज के साथ साथ हो, गोल्डन हिट्स, धरती गाती है गीत तुम्हारे, चिट्ठी पत्री, संगीत, उमंग, युवाणी, कृषि जगत हो या प्रोग्राम, सभी बहुत अच्छे हैं। और इन्हें प्रस्तुत करने में चाहे राजवीर जी हो, मनोज वर्मा, धर्मेंद्र हो, लोकेंद्र हो, विवेक प्रताप हो, ताहिर महमूद, ज्योति, नेहा, रेणु, रीना राजपूत, अलका सिंह आदि सभी उद्घोषक बड़ी मेहनत और लगन से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मुझे छोटी सी शिकायत है, लिखते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूं, किसान परिवार से हूं, इसलिए बड़ी ध्यान से प्रोग्राम सुनता हूं, किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। लेकिन कल एक दुर्घटना हुई, हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम चल रहा था,
1: जी
0: सुरेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह प्रस्तुत कर रहे थे, पहली कॉल अमित धीमान की लगी जिन्होंने दो एक मित्रों के नाम लेने चाहे लेकिन उन्हें रोक दिया गया और
1: जी
0: कहा परिवार वालों के नाम ले सकते हैं, क्या आकाशवाणी प्रोग्राम के श्रोता हमारा परिवार नहीं है? ऐसा पहले भी हुआ है लेकिन फिर स्थिति सामान्य हो गई। मैं समझता हूं कि ये घटना अच्छी नहीं है। हेलो नजीबाबाद, 10 बजे नजीबाबाद 10-10 नाम लेते हैं, तो फिर हेलो लोक मंजरी में मित्रों के नाम क्यों नहीं ले सकते? उच्च अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि वो इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि ये दोबारा ना हो सके।
1: जी तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा मैसेज लिखने के लिए, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इतनी समीक्षा करते हैं इतनी बारीकी से, और जिनमें आपका नाम भी शामिल है। आपने लिखा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक हमारे जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनको बहुत लगन से सुनते हैं, और बहुत ही प्यारी आपने इसी वजह से समीक्षा लिख के भेजी है। हमारे जितने भी प्रस्तुतकर्ता हैं उनके नाम भी आपने लिख कर भेजे हैं, आप सभी को इनके कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपने लिखा है कि कृषि जगत के आप नियमित श्रोता हैं, आपने कॉल लगाई थी हेलो लोक मंजली में, और हमारे जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, आपने अपने परिवार के अलावा मतलब जो जिनका
0: दोस्तों
1: नाम
0: के नाम
1: आप हाँ लेना चाह रहे थे उनका नाम लेना चाहा, लेकिन आपको रोक दिया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे फोन इन कार्यक्रम, चाहे आपने इसमें आगे हेलो नजीबाबाद का भी जिक्र किया है, उसमें भी यही होता है, वही आप करने की कोशिश कर रहे थे जिस वजह से आपको रोका गया। हम लोग हेलो नजीबाबाद में भी ऐसे मना करते हैं कि क्यों करते हैं, ये बात जरूरी है। हम इसलिए करते हैं कि हमारे जितनी बार भी हमारे पास कॉल आती है तो ज्यादातर श्रोता क्या करते हैं, हमारे पास वो ही नाम लेके आते हैं, वो जो
0: हम एक
1: नाम
0: दूसरे का
1: जी जी
0: नाम
1: जी
0: वो ही रिपीट करते रहते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और कि मेरे
1: वही
0: दोस्त वो हैं, मेरे दोस्त वो हैं, रिपीट आपस में करते रहते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो एक ही नाम अगर बार बार ऑन एयर जाएगा तो उससे एक तो समय खराब होता है, फिर आप ही लोग कहते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं उठाई, हमारी कॉल नहीं उठाई, हमारी लगी लेकिन कॉल नहीं उठाई, उठाई तो हमसे बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नाराज होने की बातें नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। पिछले हफ्ते एक मैसेज आया था कि अगर हमारे प्रस्तुतकर्ता जो हैं यानी हम, इनको भी कोई शिकायत है तो वो भी आप बताएं, तो हमारी सिर्फ यही शिकायत है, सिर्फ दो शिकायत हैं। एक तो आपके जो मैसेज है उसमें झलक रही है कि परिवार वालों के ही नाम लें, अन्यथा जो दोस्त हैं उनके नाम लेने से बचें, क्योंकि समय खराब होता है प्रोग्राम का।
0: बिल्कुल,
1: और
0: और
1: जैसे
0: यही
1: गीत
0: शिकायत
1: तुम्हारे
0: है विवेक जी, यही शिकायत है कि जो नाम पढ़ने के बाद जो मैसेज दोबारा दोबारा भेजते हैं, कि हमारी यही शिकायत है कि वो मैसेज ना भेजें और नाम केवल अपने परिवार के हैं बोले, बार बार उन नामों को रिपीट ना करें।
1: जी, तो बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज किया, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा।
0: चलिए, अब इन्होंने हमारे कार्यक्रम में बड़ी डिटेल से बहुत लंबा मैसेज हमें भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं विवेक जी कार्यक्रम में
1: जी
0: आगे और देखते हैं किसका मैसेज हमें मिला है। ये मैसेज हमें मिला है गांव और पोस्ट राहु नंगली से।

0: आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और अक्षत चौहान का, लिखते हैं कि हम प्रतिदिन सुनते हैं, थोड़ी सी सलाह ये है कि कल लोक मंजरी में जो प्रेजेंटर थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने नाम नहीं लेने दिया। देखो इन्होंने भी वही मैसेज लिखा हुआ है ना, उसी की समीक्षा कर रहे हैं। भी ऐसा नियम बनाना है कोई, यदि है तो शुक्रवार को हेलो नजीबाबाद में नाम ले जा रहे थे, तो कृपया ऐसा ना करें और समानता रखें। हमें सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और हमें बाकी और कोई शिकायत नहीं है। देखिए इनकी भी वही शिकायत है कि हेलो नजीबाबाद में नाम रिपीट होते रहते हैं, है ना।
1: तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये आप हमारे जो श्रोता हैं उनके आपस की समझ की बात है कि वो एक दूसरे का नाम ना लें। आप कॉल मिला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अपना ही नाम बोलें। हो सकता है दूसरे का नाम बोल के वो खुश हो जाएं, लेकिन उनको भी कोशिश करने दीजिए कि वो भी कॉल लगाएं और उनकी कॉल हमारे कार्यक्रम में लगे।
0: बिल्कुल, आपकी शिकायत हमने शामिल किया, लेकिन अपनी शिकायत भी हमने बोल दी है। और ये अगला मैसेज गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी का है और इनके बहुत सारे साथी हैं। लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वाले आप दोनों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। 9 तारीख का फिल्मी संडे कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। दामिनी फिल्म के गीत और कहानी बहुत अच्छी लगी। 8 तारीख की जिंदगी लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इस कार्यक्रम को मनोज जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम था। 12 तारीख को संदेश.com भी कार्यक्रम हमें पसंद आया, मगर उसमें हमारे सही जवाब होते हुए भी हमारे नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए। गीत तुम्हारे सूरज के साथ साथ कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं
1: जी। बहुत अच्छा लगा, आप बरेली से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं लाल मोहम्मद अंसारी जी। आपने तारीख के हिसाब से हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा की है और 8 तारीख, आज कितनी तारीख है,
0: आज है तारीख 23,
1: तो शायद पुराना मैसेज ये हो चुका है, लेकिन आपने समीक्षा की है, आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने लिखा है कि मनोज जी का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा और फिल्मी संडे को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि फिल्मी संडे की समीक्षा हमारे पास बहुत कम आती है, तो मैं श्रोताओं से एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह से आप शिकायत लिख रहे हैं कि हेलो नजीबाबाद में नाम दोबारा रिपीट किए जाते हैं, तो उसी तरह से हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि फिल्मी संडे की भी समीक्षा आप लिखा करें
0: जी।
1: जी,
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाइन कस्बा शेरकोट से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। लिखते हैं कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हमें 14 अगस्त का गीत तुम्हारे जो निधि जी और अलका जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। हेलो नजीबाबाद और रात के हम सफर को सचिन शर्मा जी ने पेश किया, पसंद आया। 13 अगस्त को गीत तुम्हारे जो ताहिर और फरीना ने पेश किया हमें पसंद आया। आपकी फरमाइश जो पूनम अग्रवाल जी ने पेश किया अच्छा लगा। और 12 अगस्त को का गीत तुम्हारे रिमझिम बलूनी और विश्वास जी ने पेश किया अच्छा लगा और पसंद आया जो विश्वास जी ने पेश किया। इसके अलावा 11 अगस्त को गीत तुम्हारे जो राजवीर जी ने पेश किया मनोज वर्मा जी के साथ पेश किया। 10 अगस्त का गीत तुम्हारे जो चरणजीत जी और सुनीता रावत जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर वही गुजारिश है आपसे, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम में अंकित सैनी जी और शोभित शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं, कृपया उनको बुलाया करें।
1: जी, हम कई हफ्तों से देख रहे हैं कि वकार जी को गीत तुम्हारे बहुत पसंद आ रहा है और हर हफ्ते ये बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज गीत तुम्हारे के लिए लिखते हैं, समीक्षा करते हैं पूरे हफ्ते की, लेकिन उसमें जिक्र होता है गीत तुम्हारे
0: किसी और कार्यक्रम का नहीं होता
1: जी। तो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे जो प्रस्तुत करता है सभी मेहनत करते हैं सारे कार्यक्रमों पर, तो कृपया करके सभी कार्यक्रमों की अगर आप समीक्षा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगला मैसेज किन का है?
0: अगला मैसेज है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी खुशदिल और इनके परिवार के सदस्यों का। लिखते हैं कि प्रोग्राम आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को हमारा नमस्कार। हम आकाशवाणी नजीबाबाद के बहुत ज्यादा पुराने श्रोता हैं, उससे वक्त प्रेम कुमार सडाना जी अनाउंसर पत्रों की फरमाइश प्रोग्राम पेश किया करते थे। सभी अनाउंसर बहुत अच्छे लगते हैं, आपके प्रोग्राम जैसे सूरज के साथ साथ जिंदगी लाइव, आपकी फरमाइश फिल्मी संडे, युवाणी प्रोग्राम, संदेश.com, नाटक झलकी, फरमाइशी प्रोग्राम गीत तुम्हारे, और हमारी आपसे विनती है कि फिल्मी संडे में पुरानी फिल्म आरजू जो 1960 में बनी थी उसमें गाना भी है बेदर्दी बालमा, और उसकी स्टोरी और हमें जरूर सुनाएं।

0: के ऊपर एक प्रोग्राम बनाए और हमारा पत्र मैसेज प्रोग्राम में शामिल हुआ, उसके लिए हम भी पत्र लिखना जारी रखेंगे।
1: जी बिल्कुल, हम आपके जो फिल्मी संडे में आपने मैसेज किया है और आपने समीक्षा लिखी है, बहुत अच्छा लगा। फिल्मी संडे के लिए आपने एक फरमाइश हमारे पास भेजी है कि फिल्म जो 1960 में आई थी, फिल्म आरजू, उस फिल्म की भी कहानी फिल्मी संडे में सुनवाई जाए। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, जल्दी ही आपको ये फिल्म सुनने को मिलेगी। आपने युववाणी, संदेश.com, नाटक और झलकी जो हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं, वो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो फरमाइश हमारे पास भेजी है उसको हम ध्यान रखेंगे और जल्द ही आपको ये फिल्म सुनने को मिलेगी। संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है, ये देखो, उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से लिखते हैं कि हम आपके सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आने वाली रक्षाबंधन के सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद भेज रहे हैं पौड़ी गढ़वाल ग्राम अपोस सेंधीखाल से प्रकाश चंद, मंजू देवी, उज्ज्वल कुमार और कन्नू प्रिया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए। आपको सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और आने वाला जो भाई बहन का प्यार का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, उसके लिए हमारे सभी सुनने वालों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। अगला मैसेज किन का है धर्मेंद्र जी?
0: अगला मैसेज हमारे श्रोता हैं, लिख रहे हैं, और हाशमी परिवार हैं, ये आकाशवाणी नजीबाबाद के नियमित श्रोता हैं, और लिखते हैं कि आपकी फरमाइश दिल ने फरियाद किया, रात के हमसफर जागरूक श्रोता हेलो नजीबाबाद, इनके पसंदीदा कार्यक्रम है। इनके अलावा जिंदगी लाइव, कृषि जगत, एक ही शीर्षक, फिल्म संगीत, गीत संध्या, सूरज के साथ साथ और सभी उद्घोषकों की बहुत मधुर आवाज और उनके प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत ही दिलकश है। गीत तुम्हारे 17 अगस्त राजबीर जी, चरणजीत, और 19 तारीख का फरीना रिमझिम, 20 अगस्त का मनोज वर्मा, निधि भारद्वाज, और 22 तारीख यानी कल का जसवंत और रेणु कोटनाला, जो आज विवेक प्रताप और धर्मेंद्र जी प्रस्तुत काबिले तारीफ रही। आज आपने हमारे नाम शामिल नहीं किए, खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आगे हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे।
1: जी, आपका मैसेज शामिल हो चुका है और आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। आपने लिखा है 17, 19 और 20, 22 और 21 तारीख की जो कार्यक्रमों की समीक्षा आपने लिखी है, बहुत अच्छा लगा कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए। और आपने लिखा है कि आज हमारे नाम शामिल नहीं किए गए, शायद ये गीत तुम्हारे की बात कर रहे हैं। तो आपका पत्र मिला, मैं आपका नाम शामिल हो चुका है, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद और जागरूक श्रोता में काफ़ी कोशिश के बाद भी कॉल नहीं लगती, जिसका हमें दुख होता है। देखिए, हम हर बार फोन इन कार्यक्रम में अपने श्रोताओं से ये बात कहते हैं कि जिनकी कॉल नहीं लगी वो अगले हफ्ते ज़रूर ट्राई करें, या दूसरे जो हमारे कार्यक्रम आते हैं उनको उसमें वो ट्राई करें। तो
0: बिल्कुल
1: मैसेज
0: बिल्कुल।
1: करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये चलते चलते देखिए मैसेज का कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक मैसेज शामिल कर लेते हैं, जिला मुरादाबाद से भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इसरार इरफान ने। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को हमारा नमस्कार, हमें आपके सभी प्रोग्राम बेहद पसंद आते हैं। आपसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि गीत तुम्हारे प्रोग्राम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज कम लग रहे हैं, आप जरा ध्यान रखें।
1: जी, ग्राम दूलापुर से आपने मैसेज किया है मोहम्मद सलमान जी। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर पूरे हफ्ते में आपके नाम 2-3 बार शामिल हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पर्याप्त हैं। दूसरे जो हमारे श्रोता हैं उनको भी मौका दीजिए। आप तो हमारे, देखिए, इसमें भी शामिल हो गया है आपका नाम, तो आपकी जो शिकायत है वो दूर हो गई होगी। तो अगर 1-2 बार अगर दिन में आपका नाम शामिल नहीं हो पाता है तो उसमें कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: और
1: पूरी कोशिश
0: लगभग
1: होती है।
0: लगभग रोज ही हमारे इन
1: जी
0: श्रोताओं के मैसेज शामिल होते हैं, चाहे वो
1: हाँ
0: गीत तुम्हारे हो, चाहे रात को आपकी फरमाइश हो, उसमें भी
1: बिल्कुल,
0: शामिल होते हैं। और देखिए कार्यक्रम आपका पत्र मिला भी इनका मैसेज शामिल हो
1: जी
0: गया,
1: जी जी
0: है ना?
1: तो देखिए बहुत अच्छा लगा, आप सभी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
0: बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन श्रोताओं का जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में मैसेज भेजे, जिन श्रोताओं के मैसेज शामिल हुए उनका भी बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों के मैसेज समय अवधि के कारण हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो चुके, जो शामिल नहीं हुए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में मैसेज भेजे, है ना? तो
1: जी
0: विवेक जी, अब देखिए कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं से विदा ले ली जाए।
1: जी बिल्कुल, आप
0: तो
1: सभी को हमारा प्यार
0: बिल्कुल
1: भरा
0: श्रोताओं, और कार्यक्रम समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے،
0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے۔
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी संडे में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। और फिल्मी संडे के आज के इस अंक में श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1993 में के मुरली मोहन राव के निर्देशन में बनी फिल्म अनाड़ी। इस फिल्म के निर्माता थे सुरेश प्रोडक्शंस के डी रामानायडू। इस फिल्म की कहानी लिखी थी पी वासु ने और समीर के लिखे गीतों के लिए संगीत दिया था आनंद मिलिंद। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की अगर श्रोता हम बात करें तो इस फिल्म में अभिनेता वेंकटेश ने रामा का किरदार बखूबी निभाया। वहीं अभिनेत्री का किरदार किया चुलबुली सी सदाबहार करिश्मा कपूर ने। इस फिल्म में उनका नाम था राज नंदिनी। राखी ने रामा की माँ का किरदार निभाया तो वहीं सुरेश ओबेराय ने राज नंदिनी के बड़े भाई का किरदार बखूबी अंजाम दिया। बाकी कलाकारों की बात अगर हम करें तो श्रोताओं, गुलशन ग्रोवर रहे खलनायक के रूप में, साथ ही जॉनी लीवर, लक्ष्मीकांत बेर्डे आदि ईरानी ने भी अपनी अदाकारी से इस फिल्म को चार चांद लगा दिए। अनाड़ी साल 1993 में बनी एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म चिन्ना थम्बी, जो कि तमिल में बनी थी, उसकी रीमेक फिल्म है। इस फिल्म में दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता वेंकटेश ने हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा था। वेंकटेश ने इस फिल्म में एक सीधे साधे गांव के लड़के का किरदार निभाया। चलिए श्रोताओं, ये तो बात हुई फिल्म के कलाकारों के विषय में, और अब बात करते हैं यानी कि शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी। तो श्रोताओं, फिल्म की शुरुआत होती है ठाकुर हवेली में वर्षों बाद, या यूं कहें कि पीढ़ियों के बाद बेटी के पैदा होने। वहीं उसकी पहली वर्षगांठ पर भी उसके भाइयों द्वारा गांव वालों को तोहफे बांटे जाते हैं। और रामा को वर्षगांठ पर गाना गाने के लिए बुलाया जाता है, मगर उनका नौकर बताता है कि उसकी मां उसका स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गई है, मगर मास्टर जी मना कर देते हैं एडमिशन के लिए। फिर ठाकुर का नौकर रामा को गाना गाने के लिए बुलाने आता है तो रामा उसके साथ हवेली गाना गाने के लिए चला जाता।

धीरे धीरे राजनंदिनी बड़ी होने लगती है और स्कूल में एडमिशन की बातें उसके चलने लगती। पुरोहित जी को बुलाया जाता है जो कि भविष्यवाणी करते हैं।

0: इसका विवाह आपकी मर्जी के खिलाफ होगा।
1: तभी राज नंदिनी को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी आती है, मगर ठाकुर यानी उनके बड़े भाई मना करते हैं। तभी से राज नंदिनी का हवेली से निकलना बंद हो गया। उसके साथ खेलने के लिए सखियां भी हवेली में ही आती। साल में 2-3 बार ही नंदिनी को हवेली से बाहर ले जाया जाता था, लेकिन उससे पहले ही साइकिल पर उनका नौकर एक लाल छाता लेकर गांव में निकल जाता था, जिसका मतलब होता था कि नंदिनी गांव में आ रही है। तो उससे पहले ही सभी मर्द अपने घरों में छुप जाते थे। अगर किसी ने राज नंदिनी को देखा या किसी ने कुछ कहा तो उसकी सजा निश्चित थी। जब नंदिनी 16 साल की हुई तो पूरे गांव में सभी की दावत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव की औरतें आती हैं। मगर हवेली में रामा को आने जाने की अनुमति है, इसलिए रामा वहां जाता है। तभी भाई राजा उसको गाना गाने के लिए कहते हैं।

फिर रामा घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि वहीं रुक जाता, घर के खाने से ज्यादा तुझे हवेली का खाना पसंद है। तभी वो कहता है कि खाना क्या, उसने तो पानी तक भी नहीं पिया। फिर थोड़ी नाराजगी के बाद उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। उधर दूसरी तरफ नंदिनी की भाभी नंदिनी को अपने खानदानी मंदिर ले जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो ठाकुर साहब उसे रोकते हैं। उधर मंदिर में नारियल तोड़ने की विधि चल रही होती है तो एक नारियल रामा की मां को लग जाता है। फिर क्या था, रामा का गुस्सा सातवें आसमान पर और वो नारियल तोड़ रहे ठाकुर के लोगों की जमकर धुलाई करता है, जिसे देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है। उधर रामा की मां रामा को लड़ाई करने के लिए डांटती है। फिर तभी हवेली से रामा को बुलाने के लिए एक आदमी आता है। तब ठाकुर उससे पूछता है कि तूने हमारे आदमी को क्यों मारा। उसकी ये बात सुनकर भाई राजा खुश होते हैं और वो रामा को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हुआ। और फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी उसकी सहेली हवेली में खेलने के लिए नंदिनी के पास आती हैं और बताती हैं कि कैसे वो झूले पर झूलते हुए गिर गई। तभी नंदिनी उदास हो जाती है, तो वो भी तुम्हारी तरह बाहर घूमना और खेलना चाहती है, ये उनको बताती है। तभी उसकी सहेली कहती है कि तू रामा से बात कर, वो तुझे किसी भी तरह हवेली से बाहर ले जा सकता है। तब हवेली में रामा आता है और वो रामा को बहला फुसला कर बाहर ले जाती है। तो फिर पूरे गांव में खेतों में मस्त झूमते और गाते हैं।

तब बाद में वो रामा से वचन लेती है कि उसके भाइयों को नहीं पता चलना चाहिए कि वो घर से बाहर आए, लेकिन नदी में नहाने व घूमने की वजह से उसको बुखार हो जाता है। तभी भाई राजा हवेली में डॉक्टरों की लाइन लगा देते हैं और पूछते हैं कि रामा कहाँ है। तभी रामा आ जाता है। तब वो उससे पूछते हैं कि कहाँ था पूरे दिन, तो वो कहता है कि वो पूरे गांव में खेतों में घूमने गया था। लेकिन तभी उसी बात पर छोटा ठाकुर उसकी पिटाई कर देता है, लेकिन भाई राजा उसे छुड़ा देते हैं और वो नंदिनी के कमरे में जाता है तो नंदिनी उसे भी बुखार की दवाई खाने के लिए कहती है, मुझे बुखार है तो तुम्हें भी बुखार जरूर होगा। तभी बिजली रामा को मंगलसूत्र देकर कहती है कि रघु से पूछ कर बताए कि ये मेरे कब बांधेगा। रामा रघु से पूछ ही रहा होता है तभी भाई राजा देख लेते हैं और उन्हें कर डांट लगाते हैं। तब बाद में रामा बिजली के पास वापस जाता है और कहता है कि रघु ने कुछ नहीं बोला, मैं ही तेरे गले में बांध देता हूं। तो डर के वो भागने लगती है, तभी रघु आ जाता है और वो रामा से मंगलसूत्र वापस लेता है। फिर बिजली से कहता है कि कल ही हम शादी कर लेंगे। तभी दूसरी तरफ और कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, छोटे ठाकुर से हमने पैसे मांगे थे वो ही लेने आए हैं। तभी उनकी नजर नंदिनी पर पड़ती है और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी छोटा ठाकुर ये सब देख लेता है और उनका मुंडन करवा के आधी मूछ मुंडवा कर गांव में छोड़ देता है। उधर नंदिनी नई फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए आती है, तभी वो दोनों लोग जिनका छोटे ठाकुर ने मुंडन कराया था, गांव में बेइज्जती की थी, वो बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने मेन स्विच का कनेक्शन चेंज कर दिया है। जैसे ही वो स्विच ऑन करेगी तभी शॉर्ट सर्किट से नंदिनी मर जाएगी, लेकिन ये सारी बातें रामा सुन लेता है। और तभी रामा नंदिनी को धक्का देकर उसे बचा लेता है। ये सब देखकर ठाकुर उसे मारने का आदेश देता है और वे रामा को मारने लगते हैं, मगर रामा उन्हीं को मारकर पूरी बात बताने वाला होता है। तभी छोटा ठाकुर आकर उसे मारने लगता है, मगर नंदिनी उसे मारने को मना करती है और बड़े ठाकुर से कहती है कि भैया वो ऐसा नहीं है, उसकी पूरी बात तो सुनो। मगर वो नहीं मानते और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं कि नंदिनी बीच में आती है और पूछती है कि

तब रामा से सभी लोग माफी मांगते हैं, लेकिन वो वापस घर चला जाता है। फिर ठाकुर उसी आदमी से कहता है कि स्विच ऑन करे, और वो व्यक्ति स्विच ऑन करते ही करंट से मर जाता है। तब नंदिनी रात को चुपके से रामा से मिलने उसके घर आती है और माफी मांगती है। तभी एक पागल व्यक्ति उन्हें देख लेता है और मंगलसूत्र देकर कहता है कि ये नंदिनी के गले में बांध दे और वो उससे शादी कर ले, लेकिन रामा उसे वहां से भगा देता है। तभी नंदिनी उससे कहती है कि अगर वो उसके भाइयों की मार से बचना चाहता है तो वो मंगलसूत्र उसके गले में बांधे और साथ ही 3 गांठ लगा दे, फिर उसके भाई उसे नहीं मारेंगे। रामा नंदिनी के बहकावे में आकर मंगलसूत्र उसके गले में बांध देता है। रामा तो गांव का सीधा साधा व्यक्ति था, मगर नंदिनी को सब मालूम था। फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि ये पंडित ने बचपन में ही श्रोताओं भविष्यवाणी कर दी थी कि वो शादी ठाकुर की मर्जी के बिना अपनी पसंद से ही करेगी। ये तो होनी थी और ऐसा ही हुआ। उधर बिजली से शादी करके रघु अपनी मिठाई की दुकान खोल लेता है। तभी बबलू आकर उससे अपने यहां नौकरी मांग मक्खी मारने की दवाई स्प्रे कर देता है और लोग उसकी मिठाई खाकर बीमार होने लगते हैं। तभी उसकी दुकान तोड़कर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। और उधर हवेली में बड़े ठाकुर रामा को साथ बैठाकर खाना खिलाने की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उसी की वजह से हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि उसी ने नंदिनी की जान बचाई थी। फिर नंदिनी रामा को अपने कमरे में बुलाती है और उसका आशीर्वाद। उधर रामा की मां कहती है कि नए कपड़े पहन ले, रिश्तेदारी में जाना है। उधर हवेली में नौकर कहता है कि आज रामा नहीं आएगा क्योंकि वो अपने लिए लड़की देख, जिससे नंदिनी उदास हो जाती है। मगर रामा और उसकी मां लड़की देखने के लिए चले जाते हैं, मगर लड़की देखकर रामा उल्टे पैर वापस भाग आता है। फिर हवेली में आकर सारी बात बताता है, जिससे नंदिनी खुश होती है।

उधर हवेली में खाना खाने के बाद जब रामा झूठी पत्तल बाहर फेंकता है तो नंदिनी उसका बचा खाना खा रही होती है। तभी उसकी भाभी उसे देखकर हैरान हो जाती है और तीनों भाइयों को बुलाकर बात करती है कि अब वो जवान हो गई है, उसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। उधर नंदिनी अपनी शादी की बात सुनकर रोने लगती है, मगर ठाकुर लड़का देखने के लिए जाते समय रामा को रास्ते में ही गाड़ी से उतार देते हैं और घर जाने को कहते हैं और वो हवेली आ जाता है जहां नंदिनी उसे मिलती है और कहती है कि आज वट सावित्री का व्रत है और वो रामा को पूरे गांव के सामने ले आती है और सबके सामने कहती है कि वो मेरा पति है। लेकिन रामा वहां से भाग जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि शादी कैसे होती है। तब उसकी माँ उसे समझाती है तो रामा को सारी बात समझ आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उसे कसम देती है और कहती है कि वो गांव छोड़कर चला जाए, फिर जब नंदिनी की शादी हो जाएगी तो उसे वापस बुला लेगी। रामा गांव छोड़कर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे ठाकुर मिल जाते हैं और उसे अपने साथ वापस ले आते हैं और हवेली आकर नंदिनी से बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है और वो कैसा है ये रामा तुम्हें गाकर बताएगा।

तभी नंदिनी रामा के गले लग जाती है और सभी को असलियत का पता लग जाता है। लेकिन बड़े ठाकुर गुस्सा ना होकर प्यार से गले लगाकर नंदिनी से सारी बात पूछते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ। तब वो सारी बात उन्हें बताती है। फिर ठाकुर नंदिनी से कहते हैं कि मैं तेरी शादी रामा से बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। तब वो बहुत खुश होती है, मगर ठाकुर के ये दोनों बड़े भाई नाराज होते हैं। मगर बड़े ठाकुर के इस बात के पीछे बहुत बड़ा राज था। वो कहते हैं कि रामा को ढूंढकर उसे मार डालो और नंदिनी से कह दो कि वो कहीं भाग गया। फिर शुरू होती है रामा की तलाश और ये सारी बात नंदिनी की भाभी सुन भी लेती हैं। फिर ठाकुर रामा की माँ सावित्री पर जोर डालते हैं और उसे मारते हैं कि वो रामा का पता बताए और उसे पूरे गांव के सामने लाकर चौक पर बांध देते हैं और उसे परेशान करना शुरू करते हैं ताकि वो रामा का पता बताए। मगर ठाकुर रामा की विधवा माँ का श्रृंगार पूरे गांव के सामने करके एक पागल से उसके गले में मंगल सूत्र बंधवाना चाहता है। मगर ये क्या, तभी आता है रामा और शुरू होता है जबरदस्त एक्शन और ठाकुर और उसके आदमियों को रामा मारना शुरू कर देता है। उधर नंदिनी को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं। उधर रामा सभी ठाकुरों को जान से मारने वाला ही होता है कि नंदिनी की भाभी रामा के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें ना मारे। फिर वो ठाकुर को बताती हैं कि नंदिनी को सारी बात पता चल गई है और वो पागलों की तरह व्यवहार कर रही है।

उधर रामा और उसकी माँ गांव छोड़कर जा रहे हैं। नंदिनी की हालत देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तीनों ठाकुर भाई रामा के पास आकर उसकी माँ से माफी मांगते हैं। और फिर रामा को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि नंदिनी की हालत बहुत खराब है और वो अपनी पत्नी को बचा ले। फिर रामा अपने वही अंदाज में गीत गाकर नंदिनी को पुकारता है और सही सलामत होश में वो आती है तो रामा को अपने पास देखकर खुश होती है और उसे बड़े प्यार से गले लगाती है और सभी लोग खुश होते हैं और इसी के साथ फिल्म होती है समाप्त। तो श्रोताओं, ये तो था आज का फिल्मी संडे का ये अंक और आज की फिल्म थी साल 1993 में बनी अनाड़ी। इसी के साथ धर्मेंद्र को आज का कार्यक्रम फिल्मी संडे संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे, और इस कार्यक्रम में आज की फिल्म थी साल 1993 में बनी अनाड़ी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के

0: नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan-3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिकॉल्ड द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट डॉक्टर सिंह रिमेंबर्ड the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan-3 successfully landed on the moon's south polar region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a two-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Defence Minister Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. An interaction session with the MSMEs at the Garden Reach Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Defence Minister will witness the final of the Durand Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Super Giant at Yuva Bharti Krirangan later in the day. Tensions between Washington and Tehran have escalated further after US President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new US territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on the 18th of this month. Mr. Trump had previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. A Panama-flagged cargo ship with 24 crew members, mostly Chinese on board, sank in the Bay of Bengal yesterday. Officials said the ship sank about 240 nautical miles off the Odisha coast. 20 of the crew members on the ship, MV Ocean Winner, were Chinese, 3 Myanmarese and 1 Bangladeshi. The ship was heading to Singapore, carrying 72,100 million tons of iron ore fines from Odisha.

0: limbo when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी खलाई दिन के मौके पर हमवतनों और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नए आलमी तरतीब में अपने खलाई शोबे को मुसलसल बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तान ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अहद किया है और खलाई शोबा इस मकसद को हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद एक तकरीब में बावर्चियों के एजाजिये में इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने बावर्चियों में हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए और कैशलेस इलाज का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत ने काउंसिल स्कूलों के बावर्चियों के एजाजिये में 1,000 रुपये का इजाफा किया है। अब उन्हें मौजूदा 2,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा। बावर्चियों को कैशलेस तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाएगी। आज इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा,
2: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं।
1: गुज़िश्ता रोज काबीना ने बावर्चियों के एजाजिये में इजाफे के सर्कुलेशन के जरिए तजवीज को मंजूरी दी। रियासती हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 3,53,000 से ज्यादा बावर्चियों को फायदा पहुंचेगा। तकरीब की बराह रास्त नशरियात के साथ साथ तमाम जिले और तहसीली सतहों पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। पिछले सालों की तरह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि रक्षाबंधन पर ख़वातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया जाए। ख़वातीन एक अटेंडेंट के साथ 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कल देर शाम मुनक़िद एक आला सतही जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट, पुलिस और इंतजामिया को हिदायत दी कि वो रक्षाबंधन पर ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफर के तमाम इंतजाम को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स को मुतहरिक किया जाए, बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक का इंतजाम बेहतर बनाया जाए, नशेबी इलाकों की निशानदेही की जाए और जरूरत के मुताबिक इजाफी पंपिंग स्टेशन कायम किए जाएं। नालियां जहां कचरा या पानी की निकासी में दीगर रुकावटें हैं उन्हें फौरी तौर पर साफ किया जाना चाहिए। नालों पर किसी भी किस्म की तजावजात की निशानदेही करके उसे फौरी तौर पर हटाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए, जिले कंट्रोल रूम मुसल सल मुतहरिक रहें। जहां दरिया का बहाव आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है या रुख बदल रहा है वहां फौरी तौर पर ड्रेजिंग की जानी चाहिए। जिन लोगों के मकानात सैलाब में तबाह हुए उन्हें वज़ीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन लीज और रिहाइश फराहम की जाए। गलत और गुमराहकुन मालूमात फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है जो कि तकरीबन 6 माह की जरूरत के मुताबिक है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वो अपने अपने अजला में चीनी की दस्तयाबी और कीमत पर मुसलसल नजर रखें। एक रिपोर्ट।
3: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाए। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। वहीं उपभोक्ता भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के लिए रियासत के 12 अज़ला में 229 मराकज़

0: कायम किए गए थे। तमाम इम्तिहानी मराकज की एआई से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की गई। कम्बाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 के लिए लखनऊ जिले में ज्यादा से ज्यादा 45 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। आगरा में 26 मराकज थे जबकि कानपुर शहर में 24 मराकज थे। कमीशन के मुताबिक तमाम इम्तिहानी मराकज पर जैमर्स का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश मातहत खिदमात सिलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इम्तिहान के पेश नजर शुमाली रेलवे खसूसी ट्रेनें भी चला रहा है। और रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। आज कुछ इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह भी जारी किया गया है। दरियसना बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों में तेजी आ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका।

बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए जानकारी, मनोरंजन से भरा आपका बाल वाटिका। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले एक बात बताइए। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में किसी बच्चे की किताब या कोई भी सामान गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप आगे बढ़ जाएंगे या रुककर उसकी किताब उठाने में हेल्प करेंगे? वैसे तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप ज़रूर हेल्प करेंगे और बच्चों करनी भी चाहिए। तो क्यों ना आज हम हेल्पिंग नेचर यानी दूसरों की मदद करने की बात करते हैं। बच्चों, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। बच्चों, मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों या बड़ी बड़ी चीज़ें हों। कभी कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे रास्ता बता देना, बस में किसी छोटे बच्चे को अपनी जगह देना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिला देना, ये या किसी को प्यार से दो शब्द बोल देना, ये सब मदद ही तो है। और हम ये सब मदद बिना पैसों के भी कर सकते हैं। और आप आजमा कर देखिए, मम्मी घर में बहुत सारे काम कर रही हो और आप प्यार से कहें, मम्मी मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं, तब आप देखिए मम्मी के चेहरे पर कितनी मुस्कान आ जाएगी और मम्मी आपकी इतनी सी बात सुनकर ही आपके लिए ढेरों चीज़ें बना देगी। प्यारे बच्चों, यही छोटी छोटी आदतें हमें बहुत अच्छा बनाते हैं। और एक बात और, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से और महंगी चीज़ों के इस्तेमाल से हमारा व्यक्तित्व नहीं बनता है। हम दूसरों से कैसे बातें करते हैं, दूसरों की कितनी मदद करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं और ज़रूरतमंदों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब आदतों से ही हम एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बिना लालच के हेल्प करें। जब आपसे कोई पूछे आपने ऐसा क्यों किया, जब आप ये कहेंगे कि मदद करने से मुझे खुशी मिलती है, सच आपको अंदर से वाकई इतनी खुशी मिलेगी, क्योंकि मदद करने वाला हाथ हमेशा बड़ा होता है और मदद करने वाला दिल उससे भी बड़ा। तो प्यारे बच्चों, आप प्रॉमिस करें कि आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बनेंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो आप हमें ज़रूर बताइएगी कि बताइएगा कि आज आप किसकी किसकी मदद करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका और आपको पता है कि महीने के फोर्थ संडे को हम आपके लिए लाते हैं लघु नाटिका। तो आज हम आपके

0: है लघु नाटिका सच्चाई का उपहार। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित लघु नाटिका सच्चाई का उपहार। प्रतिभागी कलाकार हैं दिव्यम कंडवाल, अनंत, अमन, तरंग, सुरवंदिता, रुद्रांश, वंश, देवयान और अर्चना त्यागी, और प्रस्तुतिकर्ता शोभित शर्मा और निर्देशन अंकित सहनी। तो चलिए सुनते हैं लघु नाटिका सच्चाई का उपहार।
1: प्यारे बच्चों, हर बार की तरह इस बार फिर हम लेकर आए हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की चुनिंदा कहानियों में से एक शिक्षा प्रद सच्चाई पर सदैव अडिग रहने वाले ऐसे बालक की कहानी, जिसे जहां सच बोलने पर दंड भी मिलता है, वहीं सच के प्रति अडिग आत्मविश्वास व उदारता के फलस्वरूप सच्चाई का उपहार भी। हाँ, तो सच्चाई का उपहार नामक शीर्षक पर आधारित कहानी का नाट्य रूपांतर लेकर हाजिर हैं। तो पेश है आज की ये लघु नाटिका सच्चाई का उपहार।
2: नमस्ते गुरुजी।
3: नमस्ते, नमस्ते, बैठ जाओ बच्चों। आज मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें झूठ बोलने से तुम्हारा फायदा हो और सच बोलने से तुम्हें नुकसान, तो तुम क्या करोगे?
2: गुरुजी, मैं तो सच ही बोलूंगा।
4: लेकिन अगर सच बोलने पर सजा मिले तो क्या सच बोला जाए?
3: यही तो असली परीक्षा है। सच्चाई वही है जो कठिन समय में भी हमारा साथ न छोड़े। हाँ भाई बाज बहादुर, तुम बताओ।
2: गुरुजी, मेरा मानना है कि सच बोलने से थोड़ी देर के लिए परेशानी है, लेकिन मन को हमेशा शांति मिलती है।
3: बहुत खूब बाज बहादुर, यही विचार जीवन में तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे।
1: विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी साहेब, जिन्हें बागवानी का बहुत शौक था, विद्यार्थियों से विद्यालय के बगीचे की देखभाल में भी सहायता लेते थे। अधिकांश विद्यार्थी तो खुशी से ये काम करते थे, लेकिन कक्षा में कुछ बिगड़ैल लड़के भी थे जिन्हें अपनी जमींदारी और परिवार के प्रभाव का बहुत घमंड था।
2: अरे भाई, हमसे बगीचे का काम करवाया जाता है, हम क्या इनके नौकर हैं क्या? इनका शौक यही करे देखभाल।
4: बिल्कुल, पढ़ने आए हैं या पौधों को पानी देने?
5: और अगर हम काम ना करें तो गुरुजी को क्या ही पता चलेगा?
2: अरे साथियों, काम छोटा हो या बड़ा, विद्यालय का काम हमें मिलकर ही तो करना चाहिए।
6: वाह, देखो तो बाज बहादुर हमें उपदेश दे रहा है।
4: हाँ, बहुत सच्चाई का झंडा उठाए घूमता है ना ये।
2: मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए।
6: चलो चलो, इसे ही यहाँ की सेवा करने दो, बड़ा बनता है सच्चा आदमी।
1: शरारती जगत सिंह, जयराम और शिवराम आपस में बातचीत करते हैं।
6: आज देखते हैं कि मुंशी जी के नियम कितने चलते हैं।
4: हाँ चलो, ऐसी शरारत करते हैं कि सब याद रखें।
5: लेकिन अगर मुंशी जी को पता चल गया तो?
6: अरे कौन बताएगा।
4: बस एक बात याद रखना, बाज बहादुर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। चलो उजाड़ देते हैं मुंशी जी का यह बगीचा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, सारा टंटा ही खत्म कर देते हैं। अरे यह ले चमेली का पौधा, यह ले उखाड़ फेंक आम का पौधा।
1: धीरे धीरे इन शरारती बालकों ने देखते देखते बगीचे को उखाड़ दिया, लेकिन तभी बाज बहादुर प्रवेश करता है।
2: अरे ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी अब नाराज होंगे।
6: उन्हें बताएगा कौन?
4: अरे ये सच्चाई का पुतला ही बता देगा, और कौन बताएगा।
5: अरे अब तो गुरुजी के भारी मार पड़ेगी, अब क्या होगा।
1: मुंशी भवानी साहेब प्रवेश करते हैं, उजड़ी बगिया को देखकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर।
3: विद्यालय में ये अनुशासनहीनता किसने की? जिसे इस घटना के बारे में जानकारी है सच सच बताए। याद रखो, झूठ बोलकर किसी को बचाना भी किसी अपराध से कम नहीं। हाँ बाज बहादुर, तुम बताओ, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बताओ ये किसने किया?
2: जी मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। इसके लिए जयराम, शिवराम, जगत सिंह तीनों दोषी हैं।
3: जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों आगे आ जाएं। तुम लोगों ने विद्यालय के नियम तोड़े हैं, इसका दंड मिलेगा, तुम तीनों को मिलेगा।
1: मुंशी भवानी साहेब ने दोषी लड़कों को दंड दिया, लेकिन इस दंड से उनके मन में पश्चाताप पैदा होने के बजाय बाज बहादुर के प्रति क्रोध भर गया और उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई।
6: हम सभी को दंड किसने दिलवाया?
4: बाज बहादुर ने। तो आज इसे इसकी सच्चाई का मजा चखाएंगे।
5: हाँ, ऐसे सबक सिखाएंगे कि फिर कभी सच्चाई की बात नहीं करेगा।
4: लेकिन अगर बात मुंशी जी तक

0: पहुंच गई तो
1: इस बार कोई कुछ नहीं बताएगा।
0: तय रहा, छुट्टी के बाद अमरूद के बाग के पास उसे रोकेंगे।
2: बाज बहादुर को इस षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। तीनों अमरूद के बाग से गुजर रहे बाज बहादुर को घेर लेते हैं।
1: आओ प्यारे बाज बहादुर, बहुत जल्दी घर जा रहे हो।
3: हाँ, रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है।
0: पहले अपनी सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ।
3: मैंने जो सही देखा वही गुरुजी से कहा, इसमें मेरा क्या दोष?
0: तुम्हें इसका जवाब देना होगा।
3: मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, रास्ता छोड़ दो।
0: नहीं छोड़ेंगे।
2: तीनों मारने के लिए आगे बढ़ते।
3: तुम लोग मुझे मारना चाहते हो?
1: हाँ, आज तुम्हारी सच्चाई का हिसाब होगा।
3: सच बोलने की सजा तुम लोग दोगे?
0: आज तुम्हें पता चलेगा सच बोलने का नतीजा।
3: हटो हटो,
4: मारो मारो मारो मारो मारो मारो,
3: हटो हटो। मैं शरीर से कमजोर जरूर हूँ, लेकिन अन्याय के सामने डरूंगा नहीं।
2: बाज बहादुर अकेला था और सामने कई लड़के। वो बहादुरी से उसका सामना करता रहा, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण अंततः वो गिर पड़ा। सभी लड़के घबरा गए।
5: अरे, ये तो सचमुच गिर गया, शायद मेरा मुख तेज पड़ गया।
0: चलो चलो, भागो यहाँ से।
2: अगले दिन जगत सिंह, जयराम और शिवराम विद्यालय नहीं आए। उन्हें डर था कि बाज बहादुर ने मुंशी जी से शिकायत कर दी होगी।
6: सुना है बाज बहादुर कल बहुत बुरी तरह से पिटा है, लेकिन उसने मुंशी जी से कुछ नहीं कहा।
3: अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी उसने शिकायत नहीं की।
2: बाज बहादुर कक्षा में प्रवेश करता है।
6: बाज बहादुर, तुम ठीक हो?
3: हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं।
6: क्या तुम गुरुजी को कुछ नहीं बताओगे?
3: नहीं,
6: लेकिन उन्होंने तो तुम्हें मारा है।
3: गलती उनकी थी, पर मैं बदला लेकर क्या करूँगा।
2: चौथा दिन जगत सिंह, जयराम और शिवराम घर के बाहर बैठे हैं।
1: अम्मदस्य कैसे जाए, उसने गुरुजी को सब कुछ बता दिया होगा।
0: मुंशी जी हमें छोड़ेंगे नहीं।
5: तीन दिन हो गए, अब क्या करें, परीक्षा भी नजदीक है।
2: तभी बाज बहादुर वहाँ उन लड़कों को देखकर उनके पास जाकर कहता है,
3: अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मदरसे क्यों नहीं जाते?
2: तीनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं।
1: तुम यहाँ क्यों आए हो?
3: तुम लोग तीन दिन से मदरसे नहीं आए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, चलो मेरे साथ मदरसे चलो।
0: तुमने मुंशी जी से हमारी शिकायत नहीं की?
3: नहीं,
5: हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हमें बुलाने आ गए।
3: गलती हो गई सो हो गई, हम सब विद्यार्थी हैं, एक दूसरे के साथी हैं।
1: बाज बहादुर हमें माफ कर दो,
0: हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया।
5: हमें अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही है।
3: मैंने तुम्हें पहले भी अपना भाई समझा था और अब भी अपना भाई समझता हूँ, भाइयों के झगड़े में कैसे दुश्मनी।
2: तीनों बाज बहादुर को गले लगाते हैं। सभी विद्यार्थी विद्यालय में और मुंशी भवानी साहेब भी उपस्थित होते हैं।
1: बाज बहादुर ने हमें माफ कर दिया,
0: उसने हमारे साथ बदला नहीं लिया, कितना महान है सच में बाज बहादुर।
5: आज हमें समझ आया कि सच्चाई केवल बोलने की चीज नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए भी है।
7: बाज बहादुर, आज तुमने मुझे गर्वित होने का अवसर दिया है। तुमने पहले सच्चाई बोलने का साहस दिखाया और अब क्षमा करने का, मुझे तुम पर नाज है।
3: गुरुजी, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा।
7: यही तो बेटा सच्चे चरित्र की पहचान है।
2: बाज बहादुर को पहले अपनी सच्चाई के कारण दंड और विरोध सहना पड़ा, लेकिन अंत में उसी सच्चाई और उदारता ने उसे अपने साथियों का सम्मान दिलाया। सभी विद्यार्थी बाज बहादुर की प्रशंसा करते हैं।
6: सच्चाई ने उसे मजबूत बनाया, क्षमा ने और भी महान, और एक अच्छे चरित्र ने उसे सबका प्रिय बना दिया।
4: वास्तव में सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में सच्चाई ही सबसे बड़ा उपहार देती है।
2: हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच बोलने का साहस रखिए, अन्याय का सामना कीजिए और दूसरों की गलती को क्षमा करना सीखिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इस मूल मंत्र को सदैव याद रखिए।
8: तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे लघु नाटिका सच्चाई का उपहार, जिसमें प्रतिभागी कलाकार थे दिव्यम कर्णवाल, अनंत, अमन, तरंग, सुरवंदिता, रुद्रांश, वंश, देवयान और अर्चना त्यागी। प्रस्तुतिकर्ता शोभित शर्मा और निर्देशन अंकित सैनी का। बच्चों, लघु नाटिका आपको कैसी लगी, आप पत्रों द्वारा हमें जरूर बताइएगा। और आइए चलते हैं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, महान विभूति क्रम में आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा की। बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था और उनका बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बायोज्यू था। बच्चों, उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। बच्चों, जब मदर टेरेसा भारत आई तो उन्होंने कोलकाता में लोगों के बीच रहकर उनकी मदद की। उनका मानना था कि किसी की मदद

करना और उसके दुख को समझना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। बच्चों, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपके स्कूल में आपका कोई दोस्त अपना टिफिन लाना भूल जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपना खाना उसके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों, मदर टेरेसा के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना, प्रेम से व्यवहार से रहना और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहना। और उन्हें उनके मानवता कार्यों के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। बच्चों, मदर टेरेसा का मानना कि एक छोटी सी मदद, प्यार भरे शब्द और किसी दुखी व्यक्ति के प्रति संवेदना भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। बच्चों, हमें भी मदर टेरेसा की तरह जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा होती है। तो बच्चों, अभी आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

0: इंसान को हर पल चंदन का एहसास।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। वैसे तो ये कार्यक्रम आप बच्चों का है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ मामा, नाना नानी सभी हमारा कार्यक्रम सुने और अपना सुझाव हमें जरूर भेजें, और जिससे हम अपने कार्यक्रम को और बढ़िया बना सकें। तो बच्चों, अगर आप लोगों को किसी कोई कहानी लिखने का शौक है या कोई कविता लिखने का शौक है तो वो भी आप हमें हमारे कार्यक्रम में भेजें, हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। तो बच्चों, कुछ जानकारी की भी बात कर ली जाए। बच्चों, हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, समानता का मतलब ये नहीं है कि लड़के और लड़कियां एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों को समान शिक्षा का अवसर, अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिले। आप देखिए हमारी मम्मी हमारा कितना ध्यान रखती हैं, हमारी टीचर हमें ज्ञान भरी बातें बताती हैं, महिला खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करती हैं। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम लड़कियों का है या ये काम लड़कों का है। अगर कोई लड़की वैज्ञानिक, डॉक्टर, अधिकारी या पायलट बनना चाहती है तो उसे अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चों, घर का काम केवल लड़कियां नहीं, लड़के भी कर सकते हैं और अपनी मम्मी पापा की मदद भी कर सकते हैं। आप हमारे देश में ही देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, मैरी कॉम, किरण बेदी जैसी अनेक महिलाओं ने अपने साहस और मेहनत से ये साबित कर दिया कि जब अवसर मिलता है तो महिलाएं भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकती हैं। तो बच्चों, हमें लड़के लड़कियों

में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर महिला हर लड़की का सम्मान करना चाहिए, साथ ही आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बच्चों, आज हम आपसे एक ऐसे फेस्टिवल की बात करने जा रहे हैं जिसमें मिठास है, प्यार है, अपनापन है और एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं आने वाले रक्षाबंधन की। आप कितने भाई बहन हैं जिनकी आपस में लड़ाई होती है, कभी खिलौने के लिए, कभी टीवी के रिमोट के लिए, तो कभी मम्मी की बनाई हुई अच्छी चीजों को खाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही भाई बहन सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये साथ में हंसते हैं, खेलते हैं और जब कोई परेशानी होती है तो ये एक दूसरे का साथ भी देते हैं। यही तो भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता है और इसी का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपनी बहन के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करता है। दोनों एक दूसरे की खुशी और सुरक्षा की कामना करते हैं। लेकिन बच्चों, रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई बहन की रक्षा करना ही नहीं है। आज के समय में भाई बहन की मदद करता है और बहन भी भाई का साथ देती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए राखी का ये धागा हमें आपसी प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश देता है। कहते हैं कि महाभारत के समय की बात है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनकी उंगली से खून निकलने लगा। तभी द्रौपदी ने बिना देर किए अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण इस प्रेम से बहुत भावुक हुए और उन्होंने द्रौपदी से इस स्नेह को हमेशा याद रखा और जब भी द्रौपदी को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उन्होंने उसका साथ दिया। बच्चों, राखी का छोटा सा धागा देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। रिश्ते धागों से नहीं, प्यार और विश्वास से मजबूत होते हैं। और बच्चों, रक्षाबंधन का पर्व हमें ये भी बताता है कि हमें केवल अपने भाई बहन से ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ भी प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी ये पर्व खुशी से मनाएं और अपने भाई बहन से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सम्मान करें और छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर रिश्ता कमजोर ना करें, क्योंकि राखी का जो धागा है प्यार का पैगाम लाता है और भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तो सभी बच्चे राखी का त्योहार मनाएं और प्रेम और विश्वास बढ़ाएं। तो क्यों ना इसी के साथ ये प्यारा सा गीत भी सुन लिया जाए।

तो बच्चों, आपको ये गीत कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के लिए आप भी ये सुंदर सा गीत गाइएगा। और साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आज आपने किसकी किसकी हेल्प करी है और कैसे करी है। और प्यारे बच्चों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा और पत्र लिखने के लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। तो हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो प्यारे बच्चों, अगले रविवार आपसे फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। और तब तक के लिए आप सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक धारा में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे दर्शन सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकर

0: आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। कुछ ही पलों में आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as a preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें? तो ये जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड हैव quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें, हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें? तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: ड्यूरिंग द इंटरक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस पवन कुमार चंदना thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said that his company has built 3 factories and already has the capacity to produce 1 rocket per month. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. We have more from our correspondent.
3: India is celebrating National Space Day today. The country observes the day every year on August 23rd to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the moon. On this day in 2023, the spacecraft landed near the lunar South Pole region, making India the first country to achieve the feat and placing it among the world's leading space-faring nations. National Space Day is not only a celebration of a historic achievement, but also an occasion to inspire the younger generation towards space science and innovation. From communication and weather forecasting to navigation and disaster management, space technology is playing an increasingly important role in everyday life. The day also looks ahead to India's ambitious space program, including human space flight and the vision for the coming

0: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

0: यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से दो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातु कर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं

भारतीय सिनेमा के उस जादूगर की जिसने नवाबों या गुंडों की बड़ी बड़ी कहानियों को छोड़कर हमारे और आप के जैसे आम मध्यम वर्गीय परिवार को बड़े पर्दे का हीरो बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी यानी हमारे प्रिय ऋषि दा की। 30 सितंबर 1922 को जन्मे ऋषि दा फिल्मों में आने से पहले वे विज्ञान और गणित के शिक्षक थे। विमल राय के साथ उन्होंने एक एडिटर के रूप में भी काम किया। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने जो काम किया और साथ में वो स्कूल में विज्ञान और गणित पढ़ाते थे, लेकिन उनका मन फिल्मों में रमता था। उन्होंने सबसे पहले न्यू थिएटर स्टूडियो में एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम किया, जहाँ फिल्मों की रीलों को धोया और साफ किया जाता था। यहाँ उन्होंने फिल्मों की एडिटिंग की बारीकियों को खुद सीखा। महान निर्देशक बिमल रॉय ने ऋषिकेश मुखर्जी की एडिटिंग की समझ को पहचाना। जब बिमल रॉय 1950 के दशक की शुरुआत में कोलकाता से मुंबई आए तो वे ऋषि दा को अपनी टीम के मुख्य कटर और संपादक के रूप में साथ ले आए। ऋषि दा ने बिमल रॉय की कालजयी फिल्म 2 बीघा जमीन और देवदास की एडिटिंग की, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। और बिमल रॉय के प्रोत्साहन पर ऋषि दा ने खुद निर्देशन की कमाल संभालने का फैसला किया। उन्होंने बतौर स्वतंत्र निर्माता निर्देशक का पहला मौका साल 1957 में फिल्म मुसाफिर से मिला। इस फिल्म की कहानी खुद ऋषिकेश मुखर्जी और महान लेखक ऋत्विक घटक ने लिखी। खास बात यह रही थी कि ये पहली ही फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार, किशोर कुमार और सुचित्रा सेन जैसे बड़े सितारों को निर्देशित करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने ऋषि दा के काम को खूब सराहा।

श्रोताओं, ऋषिदा ने अपने करियर में 42 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, दो तरह की फिल्में उनकी मेनली होती थी, एक भावुक यानी कि गंभीर फिल्में और सदाबहार कॉमेडी फिल्में। और अगर गंभीर और भावुक फिल्मों की बात करें तो अनाड़ी, जिसका अभी आप गीत सुन रहे थे श्रोताओं, ऋषिदा के करियर की पहली सबसे बड़ी व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, जिसने राज कपूर को एक बार फिर आम आदमी के नायक के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अलावा 1960 में अनुराधा, 1968 में आशीर्वाद, 71 में आनंद, 73 में अभिमान और सन 1973 में नमक हराम अमिताभ और राजेश खन्ना की जोड़ी वाली एक फिल्म टिकट खिड़की पर बेहद कामयाब रही। और अगर बात करें उनकी सदाबहार कॉमेडी सुपरहिट फिल्मों की तो चुपके चुपके, जी हाँ श्रोताओं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर की ये फिल्म हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे सफल और लोकप्रिय शुद्ध पारिवारिक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। उसके बाद आई साल 1979 में गोलमाल, अमोल पालेकर की रामप्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद की दोहरी भूमिका वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और आज भी लोगों की पसंदीदा कॉमेडी है। उसके बाद आई 1980 में खूबसूरत, रेखा और अशोक कुमार अभिनीत इस फिल्म की हल्की फुल्की पारिवारिक फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही।

0: लता मंगेशकर को श्रोताओं आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था असली नकली।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अनेक, और आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। श्रोताओं, ऋषिदा केवल दर्शकों के ही चहेते नहीं थे, बल्कि अवार्ड्स की दुनिया में भी उनका सिक्का चलता था। आइए नजर डालते हैं उनकी उन कालजयी फिल्मों पर जिन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मों की। तो इनमें प्रमुख हैं श्रोताओं, साल 1960 में आई फिल्म अनुराधा, साल 1957 में मुसाफिर, साल 1959 में अनाड़ी, 1966 में अनुपमा, 1967 में आई मंजली दीति, 1968 में आशीर्वाद, 1969 में सत्यकाम और 1971 में आनंद फिल्म आई। और अगर फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता फिल्मों की बात करें तो श्रोताओं, उन फिल्मों में हैं सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए साल 1958 में आई फिल्म मधुमती और 1978 में नौकरी, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म आनंद जो 1971 में आई, और 1980 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड मिला फिल्म खूबसूरत को, और 1971 में आनंद फिल्म को मिला क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

श्रोताओं, अगर ऋषिदा के सिनेमा को करीब से समझना चाहते हैं तो आज भी उनकी ये फिल्में हैं जो हर पीढ़ी के लिए देखनी ज़रूरी हैं। बात अनाड़ी, आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके, मिली, गोलमाल और खूबसूरत, ये ऐसी फिल्में हैं जो आज भी हमें देखनी चाहिए और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन को समझना चाहिए। और श्रोताओं, ऋषिदा को उनके भूतपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार और कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सर्वोच्च नागरिक और सिनेमाई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उनकी बात हम करें तो श्रोताओं, साल 1999 में मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दिया गया। 2001 में उन्हें मिला पद्म विभूषण। कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। सिनेमा जगत में अद्वितीय प्रभाव के लिए उन्हें NTR राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और भारतीय डाक विभाग ने 2013 में सिनेमा में उनके सम्मान स्वरूप 5 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था।

श्रोताओं, ऋषिदा का सिनेमा मिडिल सिनेमा या मध्यम मार्ग का सिनेमा कहा जाता था, जिसमें ना तो आर्ट फिल्मों जैसी निराशा होती थी और ना ही कमर्शियल फिल्मों जैसी फिजूल खर्ची। 27 अगस्त 2006 में हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे।

इसी के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप आज आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे संध्याकालीन सभा में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हौसलों को पंख मिले तो सपने उड़ान भरते हैं, मेहनत को सही अवसर मिले तो जीवन संवरते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस अंक में जानकारी का विषय है भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं। श्रोताओं, आज हर युवा चाहता है कि उसे अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा रोजगार मिले। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने हुनर को रोजगार में बदलना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कई योजनाएं और सेवाएं मददगार हैं। आज हम विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण पहल के बारे

बारे में जानेंगे। पहले राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS और दूसरी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के विषय में। श्रोतागण, सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय करियर सेवा यानी नेशनल करियर सर्विस की। श्रोता, ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक बहुत ही उपयोगी पहल है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए है। श्रोताओं, आप जानना चाह रहे होंगे कि ये योजना क्या है। अक्सर हमारे पढ़े लिखे युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे सही नौकरी कैसे पा सकते हैं, तो श्रोताओं, NCS पोर्टल इसी दूरी को मिटाता है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां नौकरी देने वाली कंपनियां और नौकरी चाहने वाले सीधे एक दूसरे से जुड़ते हैं। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं NCS की विशेषताओं और सुविधाओं के विषय में। इस योजना में युवाओं के लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होता है। यहाँ सरकारी, निजी, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और फुल टाइम हर तरह की नौकरियों की जानकारी मिलती है। अगर आप भ्रमित हैं कि आगे क्या करें तो NCS पोर्टल के माध्यम से सर्टिफाइड करियर काउंसलर से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। रोजगार मेले देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की सीधी जानकारी और एंट्रियां यहां मिलती हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए फ्री और पेड कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रोताओं, NCS से जुड़ना बेहद आसान है। आपके पास आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होने चाहिए। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर जॉब सीकर के रूप में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। श्रोताओं, चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी योजना की तरफ, जो उन युवाओं के लिए वरदान है जो किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय खुद मालिक बनना चाहते हैं और दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में नए नए छोटे बड़े उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। जैसे आप कोई फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो 50 लाख रुपए तक का बैंक लोन से मिल सकता है, और अगर आप सर्विस सेंटर, दुकान या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक से मिल सकता है। श्रोताओं, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार इसमें 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी देती है। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 25% और विशेष वर्ग जैसे SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग, इनके लिए 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में ये सब्सिडी 15% से 25% तक होती है। अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इस योजना के लिए कुछ नियम भी आपको बताए देते हैं। वो ये कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए से अधिक या सर्विस में 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजना बना रहे हैं तो कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। ये योजना केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो।

कॉन्टैक्ट रिपोर्ट यानी बिजनेस प्लान, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, चाहे बात सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी मनपसंद नौकरी पाने की हो, जहां राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस आपकी मदद करती है, या फिर खुद का बिजनेस शुरू करने की, एक सफल बिजनेसमैन बनने की चाह, जहां PMEGP आपके वित्तीय सपनों को पंख देती है। भारत सरकार की दोनों योजनाएं आज के युवाओं के लिए तरक्की के द्वार खोल रही है। अगर आपके पास हुनर है, सीखने की इच्छा है या कोई नया बिजनेस आइडिया है, तो देर मत कीजिए, आज ही योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पूरी प्रक्रिया को समझें और इसका लाभ उठाएं। उन्नत भारत का निर्माण आप जैसे जागरूक और मेहनती युवाओं से ही संभव है। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई सरकारी योजना के साथ। तो अब हमें कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत और अंत में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी। पहले एक नज़र डालते हैं आज के शेष कार्यक्रमों पर।

आज रात्रि 9:30 पर सुनेगा नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और आज ही रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:15 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम

के मुख्य आकर्षण रहेंगे कुछ खास है आज झलकी बूस्टर्स और फिल्म संगीत कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई विषय पर डॉक्टर हरिओम कटियार सहायक प्राध्यापक उद्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से जितेंद्र कुमार की बातचीत।

ले सकेंगे अजय जोशी की गाई कुछ गजलों का। अदबी दुनिया में आज शाम 7:50 पर कलाम शायर होंगे मोहम्मद इलियास। श्रोताओ, ये थी आज के शेष कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी और अब कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। कल रात्रि 9:30 पर सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और कल सवेरे 9:15 पर लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की हलचल। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर और इसी क्रम में सवेरे 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। सवेरे 6:40 पर कार्यक्रम चिंता में जानकारी का विषय रहेगा जगत का मिथ्या तत्व। कार्यक्रम काव्यधारा में कल सवेरे 6:45 पर सुनिएगा मानक चंद का काव्य पाठ। सवेरे 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में काली मिर्च के गुण पर जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ पेश किया जाएगा कल सवेरे 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर आनंद लीजिएगा नयन तारा शर्मा के गाये रुहेलखंडी सावन लोकगीतों का। और इसी क्रम में कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनेगा वीरेंद्र सिंह विष्ट के गाये कुछ जौनसारी लोकगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 11:30 का। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर सुनिएगा पंडित मनी राम का गायन। राग होगा पट्टीदीप की विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध होगी। तबले पर संगत देंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान। हमारी बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम परिवार जगत दिन में 1:15 पर। कल शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु ई नाम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जानकारी दी जाएगी। कल शाम 5:15 पर कार्यक्रम युवाणी में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे बुझो तो जाने कुछ खास है आज गपशप अड्डा क्रैश कोर्स पैसा वसूल कहानी के उस पार बूस्टर्स और फिल्म संगीत। शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा अंजू बंसल की समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका विषय पर वार्ता। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ बातें मुस्कान लेकर आती हैं, कुछ यादें दिल के पास रह जाती हैं।
1: और कुछ शामें ऐसी होती हैं जो बस अपनों के साथ गुजर जाती हैं।
0: गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी,
1: और दोस्तों सलोनी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और वन ऑफ द होस्ट राशि त्यागी।
0: और हम दोनों आ गए हैं आपके साथ आपकी शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए।
1: बिल्कुल, अगले कुछ वक्त तक होगी ढेर सारी बातें, थोड़ी सी मस्ती और कुछ मुस्कुराहटे।
0: और हाँ, ढेर सारी मस्ती भी।
1: तो दोस्तों सबसे पहले एक सवाल, आप अपनी शाम का आपका मूड कैसा है? सुकून वाला, मस्ती वाला, या फिर दोस्तों थोड़ा सा फिल्मी वाला?
0: और राशि अगर हमारे दोस्तों का जवाब है तीनों, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल दोस्तों, पूरे दिन की भाग दौड़ और टेंशन के बाद थोड़ा सुकून तो चाहिए ही होता है ना।
0: और अगर आप ऑफिस में हो, किचन में हो, या फिर किसी ट्रेन के सफर में, अपनी शाम में थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी खुशियां शामिल करना चाहते हैं तो
1: बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शाम तो अभी शुरू हुई है,
0: बातें अभी बाकी हैं।
1: मस्ती भी अभी बाकी है।
0: और सबसे जरूरी,
1: तो दोस्तों सबसे जरूरी क्या होता है? वो होता है एंटरटेनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन से, इस प्यारे से प्यार भरे गीत के साथ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
5: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: क्या हो गया आरती, खाना क्यों नहीं खा रही तू?
8: कैसे खाऊं खाना, तुम्हें ना पता क्या, मेरा सावन के सोमवार का व्रत चल रहा।
7: अबे तुझे मैं मिल तो गया, और किस लिए रख रही व्रत? अब
8: तुम्हें क्या पता जी, अगले जन्म के लिए रख रही, मुझे तुम हर जन्म में चाहिए।
7: ओ भाई, मुझसे तो पूछ लेती एक बार रखने से पहले। अगले जन्म के लिए तो मैं तेरी बहन से वादा कर चुका हूँ।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
9: दोस्तों, अब लेकर चलते हैं हमारी डेली सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर। और दोस्तों, आज है एक विशेष दिन, यानी दास प्रथा और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
10: ये दिन हमें इतिहास के उस दर्दनाक दौर की याद दिलाता है जब इंसान

0: दोनों को इंसान नहीं बल्कि सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनसे उनकी आजादी, उनके अधिकार और उनका सम्मान छीन लिया जाता था।
1: 23 अगस्त की तारीख इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि 1791 में इसी दिन हेती में गुलाम बनाए गए लोगों ने आजादी के लिए एक बड़ा विद्रोह शुरू किया, जिसने आगे चलकर दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर लिए जो है एक नई ताकत बनाई।
0: आज का दिन हमें सिर्फ इतिहास याद दिलाने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए है कि आजादी, बराबरी और इंसानियत हर इंसान का अधिकार है।
1: तो दोस्तों आज की खास बात यही है कि इतिहास के दर्द से सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसे समाज की कल्पना करें और निर्माण करें जहां किसी इंसान की पहचान उसकी आजादी और सम्मान से हो, न कि किसी बंधन से।
0: तो बस याद रखिए, दूसरों का सम्मान करना है, आदर करना है और किसी को ठेस तो बिल्कुल नहीं पहुंचानी।
1: जैसे हम याद रखते हैं आपको, ठीक टाइम पर म्यूजिकल ब्रेक की ओर लेकर चलते हैं।

0: दोस्तों, अब हमें घड़ी इशारा कर रही है हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट झलकी की ओर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास झलकी, जो है मोबाइल नोटिफिकेशन, और जिसका आलेख किया है हमारी साथी राशि त्यागी ने। निर्देशन हुआ है शोभित शर्मा जी के सानिध्य में। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी झलकी।
1: झलकी दिखला जा, झलकी दिखला जा, झलकी झलकी झलकी झलकी झलकी
2: झलकी दिखला जा।
3: आरव बेटा उठ जा, सुबह के 8 बज गए, अभी तक सो रहा है।
4: मम्मी मम्मी बस 5 मिनट, मम्मी बस 5 मिनट और सोने दो।
3: 5 मिनट से पहले भी तू 2 घंटे फोन चला चुका है, याद है तुझे?
4: माँ फोन नहीं चला रहा हूँ माँ, दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ।
5: हाँ माँ, भैया पूरी दुनिया से जुड़े हैं, बस हमसे ही कटे हुए हैं।
3: बिल्कुल सही कह रही है रिया।
4: अरे 1 मिनट, देखो मेरी रील पर 500 लाइक आ गए।
5: वाह, 500 लोगों को तुम्हारी रील पसंद आई और तुम्हें अपनी माँ की बनाई चाय पसंद नहीं आती।
4: अच्छा बाबा, लाओ चाय दो।
5: आरव की सुबह आँख खुलने से ही नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन चलने से होती है। नाश्ता हो, कॉलेज हो, दोस्तों की महफिल हो या रात का बिस्तर, मोबाइल हमेशा उसके साथ रहता था। उसे लगता था कि वह मोबाइल चला रहा है, लेकिन असल में मोबाइल कब उसे चलाने लगा उसे पता ही नहीं चला।
6: भाई इधर देख, आरव हाँ। इधर देख, तेरे पीछे खड़ा हूँ भाई।
4: हाँ हाँ, तो क्या हुआ?
6: अरे यार, 2 मिनट से तुझसे बात कर रहा हूँ, तू तो बिल्कुल सुनता ही नहीं, इसी फोन में ही लगा रहता है।
4: सुन तो रहा हूँ, कह क्या कह रहा है?
6: नहीं भाई, तू मुझे नहीं सुन रहा, तू तो अपने फोन को देख रहा और उसे सुन रहा।
4: क्या फर्क पड़ता है यार?
6: कल तूने मुझसे क्या कहा था?
4: क्या क्या कहा था कल मैंने?
6: यही तो, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तुझे तो बस मोबाइल की लत लग गई।
4: अच्छा बता तो सही, कल मैंने क्या कहा था? चल तू याद दिला दे।
6: कल मैंने कहा था कि आज हमारा प्रोजेक्ट जमा होना है।
4: ओह, प्रोजेक्ट तो नहीं बना यार, रात को टाइम ही नहीं मिला।
6: क्यों, मोबाइल चला रहा होगा?
4: अब यार क्या बताऊं, पहले इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर गेम, फिर एक दोस्त की लाइव स्ट्रीम,
6: और फिर
4: सुबह हो गई।
6: मतलब तेरे पास समय ही नहीं था?
4: नहीं था यार, नहीं था।
6: पूरी रात फोन में ही निकाल दिया, दिन में 24 घंटे फोन फोन फोन ही चलाता रहता है।
4: पता है, तू अपने भाषण मध्य बता क्या कहना है।
6: भाई समय नहीं था या फोन छोड़ने की हिम्मत नहीं थी?
4: अरे यार कबीर, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, अपने काम कर और बस ज्यादा बातें मत कर।
3: आ गया बेटा।
4: हाँ माँ आ गया।
3: अच्छा तेरे लिए खाना लगा दूँ?
4: हाँ माँ, भूख तो लगी है।
3: आज तो मैंने तेरे पसंद की खीर बनाई है।
4: अच्छा
5: भैया, आज फोन नीचे रखकर खाना खाना।
4: पर क्यों?
5: अरे देखना है कि तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है।
4: छोटी बहुत मजाक करती है तू।
5: नहीं नहीं सच में, कई दिनों से ठीक से देखा ही नहीं।
3: आरव इधर बैठ तू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
4: हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है?
3: तेरे कॉलेज में अगले महीने जो इंटरव्यू था ना,
4: हाँ?
3: उसके लिए तेरे पापा ने अपने पुराने दोस्त से बात की है, वो तेरी मदद करेंगे उसमें।
4: अच्छा माँ।
3: बेटा फोन थोड़ी देर

0: भी सकता है।
1: माँ बस 2 मिनट।
0: हर बार यही कहता है तू, 2 मिनट 2 मिनट।
1: अरे बहुत जरूरी है माँ।
0: अरे अच्छा बता क्या जरूरी है।
1: बस एक जरूरी मैसेज है माँ।
0: चल ठीक है।
2: हाँ माँ आप रहने दो, ये कौन सा मानने वाला है।
0: नहीं बेटा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा सामने बैठा है लेकिन है कहीं और।
1: माँ प्लीज इतनी बड़ी बात मत बनाओ माँ, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं।
0: हाँ कुछ कहता ही तो नहीं है तू। मैं बात बड़ी नहीं बना रही बेटा, बस तुझे खोना नहीं चाहती मैं।
1: ओहो माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा माँ, यहीं हूं आप ही के पास। ओह 1 मिनट।
2: उस रात आरव ने माँ की बात पूरी नहीं सुनी। उसे क्या पता था कि जिंदगी में कुछ बातें बात के लिए नहीं होती।
1: सुबह हो गई क्या? पहले फोन देख लेता हूँ।
2: भैया भैया, अरे
1: अरे क्या हुआ छोटी, क्यों परेशान है?
2: भैया माँ को अस्पताल लेकर गए हैं सब लोग।
1: क्या माँ को अस्पताल ले गए? क्या हुआ?
2: हाँ रात से उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने तुम्हें बुलाया भी था।
1: मुझे बुलाया था?
2: अरे हाँ भैया, तुम गहरी नींद में सोए थे। कैसे
1: मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे
2: पता चलता, तुम दिन भर फोन में बिजी रहते हो तो रात में कैसे तुम्हारी आंख खुलती।
1: माँ कैसी है ये तो बता।
2: डॉक्टर देख रहे हैं, चलो हम भी देखते हैं।
1: डॉक्टर? डॉक्टर मेरी माँ? डॉक्टर ठीक तो है ना मेरी माँ?
0: घबराइए नहीं, अब उनकी हालत स्थिर है लेकिन उन्हें आराम और परिवार की जरूरत है।
1: जी जी डॉक्टर साहब।
0: आरव,
1: माँ माँ कैसी हो तुम माँ?
0: आरव तू आ गया।
1: हाँ माँ देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं माँ। अब कैसी तबीयत है आपकी?
0: तबीयत तबीयत तो बस बेटा, तेरा फोन फोन कहाँ है तेरा।
1: ये रहा।
0: आज भी साथ ही है।
1: हाँ फोन आज भी मेरे साथ ही है माँ।
0: मुझे लगा आज तो तू मेरे साथ रहेगा।
1: माँ
0: नाराज नहीं हूं बेटा, बस एक बात पूछूं।
1: हाँ पूछो माँ।
0: अगर रात मैं तुझसे आखिरी बार बात कर रही होती तब भी तू यही कहता, माँ बस 2 मिनट।
1: मुझे मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो,
0: नहीं
1: अब ये
0: बेटा,
1: गलती नहीं होगी माँ।
0: माफी तू मुझसे नहीं बेटे, खुद से मांग। तूने अपना अपना कितना समय खो दिया तू ये सोच।
1: मुझे लगा था माँ कि मैं फोन को इस्तेमाल करता हूं, पर अब नहीं करूंगा माँ इतना मैं इस्तेमाल फोन का।
0: अब तुझे क्या लगता है?
1: माँ अब तो मुझे लग रहा है कि फोन मुझे इस्तेमाल कर रहा है।
2: दोस्तों, क्योंकि हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन जो जरूरी होता है वो है आपके कीमती रिश्ते।

कुछ बातें लफ्जों में अधूरी रह जाती है, कुछ यादें दिल में ही कहीं ठहर जाती है, और जब दिल की बातें कहने के लिए शब्द

0: कम पड़ जाएं तो एक खूबसूरत सा गीत सब कुछ कह जाता है।
1: क्योंकि दोस्तों दिल की हर बात जुबां से कहीं नहीं जाती, कुछ बातें बस धुनों में बह जाती हैं। तो अपनी मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि अब बचने वाला है ऐसा गीत जिसके साथ शायद आपकी कोई याद मुस्कुरा उठे।
0: बिल्कुल राशि, कभी कभी एक गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी की याद होता है, किसी के दिल का एहसास होता है। तो चलो राशि, देखते हैं ये गीत शायद हमारे दोस्तों के दिलों का एहसास बन जाए।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
3: चिंटू, वैसे कुछ भी कहो यार, हमारा भारत वाकई में ही महान है।
5: है तुझे आज ये बात कैसे याद आ गई कि भारत महान है हमारा?
3: अरे देख भाई, जब अमेरिका में लाइट चली जाती है तो बिजली विभाग को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है तो पहले फ्यूज चेक करते हैं, और जब हमारे भारत में लाइट जाती है ना तो सबसे पहले बाहर निकल कर चेक करते हैं कि सबकी गई है या हमारी ही गई है,
5: और फिर लेते हैं राहत की सांस।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
6: दोस्तों, संडे यानी कि फंडे, और आप जानते हैं कि माहौल चल रहा है म्यूजिकल और रोमांटिक, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। और अब बारी है उस गाने की जो आपके दिल के तारों को छेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपने सारे काम को कर दीजिए एक साइड, और बस खो जाइए इस खूबसूरत सी धुन में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की ओर।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर भी आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।

0: और दोस्तों अपनी साथी राशि त्यागी और
1: सलोनी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की, लेकिन कार्यक्रम का ये एक अंतिम तोहफा आपके लिए, सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव

0: सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी, देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो, जैसा कि बरसात की शुरुआत में भैया हमारे किसान भाई कहने लगे थे कि भैया बारिश ना हो रही, बारिश ना हो रही, लेकिन भाई अब देखो ठीक ठाक बारिश हो रही है और हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो भी भैया अच्छी बढ़वार कर रही है। भैया देखो खरीफ का मौसम चल रहा है इस समय और भाई हमारे खेतों में धान की फसल खड़ी है और भाई साथ ही साथ देखो खरीफ में हमारे किसान भाई दलहन में भैया उड़द मूंग की फसल भी बोते हैं और भैया वो भी हमारे किसान भाइयों के खेतों में खड़ी है। और भाई देखो हमारे किसान भाइयों को उत्पादन अच्छा मिलता है, अच्छा मिल सके, इसीलिए हमारे किसान भाई रात दिन अपने खेतों में मेहनत करते हैं। तो भाई देखो उत्पादन हमारे किसान भाइयों को इसीलिए बढ़िया मिलता है क्योंकि भैया हमारे किसान भाई अपनी फसलों की नियमित निगरानी बना कर रखे हैं, नियमित देखभाल करते रहते हैं और भाई समय के अनुसार जो भी काम हमारी फसलों में होने हैं भैया उन सारे कामों को वो समय से निपटाते हैं। तो भाई देखो जैसा हम बात कर रहे हैं दलहन की, तो भाई देखो दलहन ऐसी फसल है जिसे हमारे किसान भाई बो दे हैं और भैया ये ऐसी

फसल है जिसमें हमारे किसान भाइयों की लागत ज्यादा ना आती। भाई थोड़ी सी जरूरत होती है निगरानी की, देखभाल की, समय के अनुसार काम करने की। तो भाई आज थोड़ी सी बातचीत देखो दलहन की फसलों पर करेंगे कि दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के संबंध में थोड़ी सी बातचीत करो लें, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई ये सोचो कि दलहनी फसल तो हमने लगा दी, भाई फिर उसकी तरफ को खेत की तरफ को जाकर देखते नहीं है कि भैया जो होगी हो जाएगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो है जो दलहनी फसलें हैं भाई, इन फसलों से हमें दो तरह से फायदा होता है भाई, दो तरह से फायदा यो होता है, बल्कि दो तरह से क्या कहें, अनेक तरह से फायदा होता है। कि भाई एक तरह से फायदा तो यो होगा कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए ये फसलें लाभदायक होती हैं, दालें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं, क्योंकि भाई दालों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है जिससे भाई हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। दूसरे भाई जो पर्यावरण है भैया वो भी हमारा प्रदूषित नहीं होता, स्वच्छ बना रहता है। तीसरे भाई जो हमारे खेत की मिट्टी है भैया वो भी उर्वर बन जाती है दलहन फसल बोने से। भाई दलहन फसल बोने से मिट्टी हमारी उर्वर कैसे बन जाती है, इस संबंध में थोड़ी सी बात हमारे किसान भाई से करो लें। देखो दलहनी फसलें भाई हमारे खेतों में जब हम लगाते हैं तो भाई दलहनी फसलों की जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम के, जो कि भैया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जड़ों में करते रहते हैं, यानी कि इनकी जड़ों में गांठें बन जाती हैं। वे गांठें भैया जो होती हैं, अगर जड़ उखाड़ कर हम देखें भैया जब पौधे की, तो भैया गांठें मिलेंगी आपको, और गांठें वे होती हैं भैया नाइट्रोजन की। यदि भैया हम अपने खेतों से फसल की फलियां तोड़ने के बाद उसको ऐसे ही खेत में जोत देते हैं, तो भाई वो जो है हमारी अगली फसल बोने के लिए भैया हमें जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने पड़ा है ना, नाइट्रोजन युक्त चाहे यूरिया हो, या भैया डीएपी में देखो यूरिया भी होता है, एनपीके में भी यूरिया होता है, तो भाई उसकी मात्रा हमारे किसान भाइयों को कम देनी हो भाई, उससे हमारे किसान भाइयों की जो जेब है ना उस पर अतिरिक्त तो भार पड़ता यूरिया का भाई, उससे जो है हमारे किसान भाई बच जाए। तो देखो ये तो फायदा हो गया हमारी मिट्टी को। अब देखो हमने शरीर की फायदे की बात किसान भाइयों से कर ही ली, लेकिन भाई फायदा हमें तभी होगा जब भैया हम अपनी फसल में समसामयिक कार्य करेंगे, छोटी मोटी देखभाल करते रहेंगे भाई, समय समय पर उसके खरपतवारों का जो है नियंत्रण करेंगे। भाई देखो इस समय हमारे खेत में जो दलहन की फसल खड़ी है, चाहे उड़द की खड़ी हो, चाहे मूंग की खड़ी हो, या अरहर की हो, या भैया लोबिया की फसल खड़ी हो, तो देखो जब हम फसल कोई भी लगाते हैं अपने खेत में, तो भाई कुछ पौधे ऐसे उगाते हैं जिन्हें हम अपने खेत में बोते नहीं हैं, तो भाई वो खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। और जब खरपतवार हमारे खेत में उगाते हैं तो भैया वो हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई मान लो हम खेत में कोई सा भी काम करें भैया, चाहे उर्वरकों का प्रबंधन करें, चाहे भैया सिंचाई करें, या भैया अन्य कोई काम करें अपनी फसल के लिए, तो भाई वो जो है हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही साथ वो अगर हम अपने खेत में उर्वरक डाल रहे हैं तो भाई वो हमारी फसल से पहले उसको अवशोषित कर लेते हैं उर्वरकों को, और अपनी बढ़वार जो है बढ़ा लेते हैं। तो भाई इनका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। भाई देखो खरपतवारों, अगर हम इनका नियंत्रण नहीं करते तो खरपतवारों से भैया हमारी फसल को उत्पादन में 30-35% तक की हानि हो जाती है, और हमारे किसान भाइयों को भैया लागत लगाने के बाद भी भैया ये नुकसान हो जा है, क्षति हो जा है। तो भाई हम जो है समय के अनुसार, जैसा अब समय चल रहा है, तो भाई हमारे किसान भाई मैनुअल खुरपी के माध्यम से भैया खरपतवारों की निराई गुड़ाई कर दें, और भाई समय से अपनी फसल का अच्छा उत्पादन लें। दूसरे भाई देखो एक काम और है, देखो बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में भैया जहां तहां गड्ढों में या अन्य कहीं बारिश का पानी यदि भर गया हो, तो भैया उसकी समय से आप जल निकासी कर दें, क्योंकि हम देखते हैं कि भैया जब हमारे खेत में पानी कहीं भर जाता है तो भैया ये जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं ये जो है ये भी भैया ऑक्सीजन ले में है, तो भाई इससे जो है जड़ गलन होने की समस्या रहती है, और काफी तरह के जो नेमेटोड होते हैं वो भी भैया जड़ों में लग जाते हैं, वो परजीवी होते हैं जिससे हमारे पौधे को वो सुखा देते हैं। तो इस तरह का हमें किसान भाइयों ध्यान रखना है कि भैया हमारी फसल में भैया नेमेटोड ना लगे, जल की निकासी हमें समय से करनी है, ताकि भैया हम फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। और भाई देखो एक बात हम अपने किसान भाइयों से थोड़ी सी यो करना चाह रहे हैं कि भाई जब भी हम अपनी फसल में उर्वरक का प्रबंधन करें, तो भाई सब उससे पहले भैया हम खेत से भैया खरपतवारों का नियंत्रण कर लेना है ना भैया। तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमारे किसान भाई ध्यान रख करेंगे तो भाई आप अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और भाई जब फसल का हम नियमित निरीक्षण करते रहेंगे तो भाई हमें खेत में यो पता लग जाएगा कि कभी कभी हम यो देखते हैं कि भाई फसल में

0: सकते हैं, खासकर भाई दलहनी फसलों में तो हमें भैया कीटों का, रोगों का भैया ध्यान रखना है। कीट में देखो फल मक्खी लगती है भैया, एक कमला कीट लग जाता है इस समय, तो भाई उसके लिए यदि हमारे किसान भाई कर सकें तो सुबह शाम ओसा ओसा भैया, जब ओस पड़ने चालू हो जाए शाम को और सुबह को ओसा ओसा भैया, घर की जो राख हो है ना चूल्हे की भैया, उसे ले जाओ और अपने खेत पर बुरक दो, अपनी फसल पर बुरक दोगे तो भैया उससे जो है कमला कीट हमारी फसल को नुकसान नहीं करेगा। तीसरे भाई फल मक्खी का आप समय से नियंत्रण कर लें, जिससे भैया हमारे फसल में अच्छे फूल खिलें, अच्छी फली बने और हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो। तो भाई देखो लाभ तो हमारे किसान भाइयों को होगा ही, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई समय से मेहनत करेंगे, समय से समसामयिक कार्य करेंगे और भाई हम बातचीत आपसे और भी करेंगे, लेकिन भाई कार्यक्रम में इस समय लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: भैया संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भैया देखो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो भाई हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, तो भाई क्योंकि पशुपालन और खेती किसानी भाई ये ऐसे काम है दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। कि भाई हम देखो पशुओं के लिए अलग से कुछ नहीं लाना, हमारी खेती किसानी से उनके लिए हरा चारा प्राप्त हो जाता है और भाई और जो हमारे खेत हैं उनके लिए भैया हमारे पशुओं से गोबर की खाद प्राप्त हो जाती है। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो भैया हम जो है पशुपालन करना है तो भाई हम जो है पशुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ हम भैया हमारी सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है योजनाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाई जा सके और भाई हमारे किसान भाइयों की जो जेब है ना उस पर खर्चा यानी जेब पर भार कम हो सके, तो भाई ऐसी योजनाएं चल रही हैं कई, जिनका हमारे किसान भाइयों को समय से यदि जानकारी हो जाती है तो भैया वो उसका लाभ उठा कर और भैया अपने खर्च को कम कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो भाई ऐसी ही एक योजना चल रही, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। तो भाई देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो है वो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है देसी गोवंश की नस्लों का संरक्षण, विकास और उत्पादकता बढ़ाना है। भाई इस योजना को दिसंबर 2014 में भैया शुरू किया गया था और भैया ये पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है। किसान भाइयों इसका भैया मुख्य उद्देश्य है देसी गायों की नस्लों का संरक्षण और आनुवांशिक सुधार करना, दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है भाई, साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान और उन्नत प्रजनन तकनीकों को बढ़ाना यानी बढ़ावा देना है। तो भाई हमारे किसान भाइयों को जो है इस चीज के प्रति भैया जागरूक किया जाता है और योजना की जानकारी तब जब हमारे किसान भाइयों को होगी तो भाई हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएंगे। भैया पशुपालकों की आय बढ़ाने में इस योजना के माध्यम से भैया सहायता प्रदान की जाती है किसान भाइयों को, ऋण की सुविधा है भैया, ऋण की सुविधा में ब्याज में इसमें छूट भी है हमारे किसान भाइयों को। तो भाई हम जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए और यदि भाई जानकारी हम लेनी है तो आप पशुपालन विभाग से ले सकते हैं भैया, उसमें इस योजना की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जिला बिजनौर जिले के आसपास आपका जो भी बिजनौर जिला हो या अन्य कोई जिला हो भैया उसके उसमें जो है एक अधिकारी होते हैं पशुओं संबंधित, तो भाई उनसे जो है आप पूरी जानकारी इस योजना के तहत ले सकते हैं। भाई इस योजना के जो प्रमुख घटक हैं भैया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोकुल ग्राम, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, नस्ल सुधार कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो किसान भाइयों इस योजना का आप लाभ उठाएं और भैया अपनी आमदनी में 4 चांद लगाएं। तो भाई देखो ये तो कुछ बातचीत हो गई गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की। अब भाई देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो भैया खेती किसानी तो कर ही रहे हैं यानी गन्ना की फसल तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ भैया वो बागवानी के साथ साथ भैया सब्जियों की फसल भी लगाते हैं और समय से सब्जियों का उत्पादन करके अच्छा लाभ वो हमारे किसान भाई कमाते हैं। तो भाई

0: को आज एक ऐसी ही जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई, और भाई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरिओम कटियार जो कि सहायक प्राध्यापक उद्यान है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में। और भाई उनसे हमने फोन पर ये बात की थी, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे कार्यक्रम के बीच में है डॉक्टर हरिओम कटियार जो कि सहायक प्राध्यापक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में। और आज डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद, सभी सुनने वाले किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा विषय ही है धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई का, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को इसी संबंध में जानकारी दीजिए कि जो धनिया पालक और गोभी की अगेती बुआई होती है उसका उचित समय कौन सा है डॉक्टर साहब?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सभी किसान भाई जैसा कि के समय में देख रहे हैं, किसान अपनी जो भी फसल लगाता है उसका उचित मूल्य पाने की कोशिश करता है।
0: जी।
1: तो जो भी हम जैसे आज का जो हमारा विषय है धनिया और गोभी पालक,
0: जी।
1: इन तीनों फसलों को लगाने का जो उचित समय है जुलाई से लेकर सितंबर तक का, जो हम अगेती फसलें लगाना चाह रहे हैं किसान भाई। अब इसमें भी हम स्पेसिफिक कर देते हैं, जैसे हम गोभी के अगर बात करते हैं
0: जी।
1: तो ये जो गोभी लगाने का समय है वो लगभग हम जुलाई अगस्त में इसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
0: अच्छा सर।
1: हाँ, क्योंकि ये जब अगर हम अर्ली गोभी लगाएंगे तो
0: जी।
1: किसानों के लिए जो आय का साधन है वो बढ़ेगा, और इसके लिए किसान भाइयों को जो सावधानी ये रखनी होगी, क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है इसमें कोई भी हम नर्सरी लगाएंगे
0: जी।
1: तो वो नर्सरी जल्दी उसमें नर्सरी गलन रोग होता है। किसान भाइयों को एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि किसान भाई टनल पॉली हाउस होते हैं, या फिर आजकल जो नई तकनीकी आ गई है कि कागज के गिलास हैं, इनमें भी वो अपने नर्सरी को लगा सकता है किसान भाई, छायादार स्थान पे, और
0: जी।
1: हजारे से उसमें पानी देके अपनी जो भी नर्सरी है उसे उचित तापमान में अच्छे से ग्रो करवा के, और फिर जुलाई अगस्त में उसको ट्रांसप्लांट अपने मेन फील्ड में कर सकता है।
0: जी।
1: इसी तरीके से अगर हम धनिया की बात करें, अगेती धनिया,
0: जी।
1: किसान भाइयों को जो आय का स्रोत है, धनिया एक ऐसी फसल है जो आज के समय में भी अगर हम बाजार में लेने जाएंगे तो इस टाइम ही बहुत महंगी बिक रही है,
0: जी।
1: और अगर हम यही धनिया थोड़ा अगेती हम कर लेंगे तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसकी उचित मूल्य और अच्छे से उनकी आय का अर्जन हो जाता है।
0: जी।
1: तो इसका जो उपयुक्त समय है सितंबर अक्टूबर।
0: जी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को धनिया और गोभी के संबंध में दी। अच्छा डॉक्टर साहब, पालक की जो फसल होती है उसके संबंध में और थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जागरूक कीजिए।
1: जी किसान भाई, जैसा आप पालक की खेती के बारे में भी सोच रहे होंगे,
0: जी
1: अभी जो हमारा अगेती फसल के लिए जो समय उपयुक्त रहेगा वो अगस्त सितंबर, जो अभी चल भी रहा है,
0: जी जी
1: अगस्त सितंबर में भी हम धनिया वो पालक जो बुवाई हम कर सकते हैं,
0: जी
1: ये उपयुक्त समय है।
0: कि जो आपने डॉक्टर साहब अभी हमारे किसान भाइयों को एक जानकारी दी है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं गोभी की और उसमें जड़ गलन आ जाता है, तो डॉक्टर साहब किसान भाइयों को इस संबंध में बताइए कि जो नर्सरी होती है उसको कितने दिनों के बाद, यानी नर्सरी की बुआई के बाद कितने समय के बाद उसकी रोपाई हमारे किसान भाई मुख्य खेत में कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखो, दो नर्सरी, एक तो हम कंट्रोल्ड कंडीशन में नर्सरी डाल देते हैं, उसके द्वारा जो लाभ इस समय किसान भाई ले सकते हैं वो बहुत अच्छा लाभ है कि हमारे जनपद स्तर पे हाईटेक नर्सरी की स्थापना हो चुकी है,
0: जी।
1: और संभवतः अगर आपके जनपद में नहीं है तो संबंधित जनपद में भी कहीं ना कहीं उसकी स्थापना हो चुकी है, और ये जो हाईटेक नर्सरी है उस वो पूरी कंट्रोल कंडीशन में बनी हुई है। उसमें आप केवल किसान भाई अपना बीज ले जाएंगे तो बीज की कीमत तो किसान को देनी है, बट 1 रुपया

0: वो पौधे की और जो उसके अंदर कर्षण क्रियाएं हैं उसके
1: जी
0: लिए वो लेगा।
1: अच्छा
0: तो किसान भाई के लिए ये बहुत अच्छी सरकार के द्वारा एक सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जैसे गोभी है, गोभी की पौध मिलेगी, पालक तो सीधी हमें खेत में लगानी है
1: जी,
0: और धनिया भी हमें सीधी खेत में लगानी है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: तो और जो हाईटेक नर्सरी में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ किसान भाई, आगे भी कोई उन्हें फसल लेनी है नर्सरी वाली, तो
1: जी,
0: कोशिश करें कि वो हाईटेक नर्सरी से जिला उद्यान अधिकारी के संपर्क करके क्षेत्र में जहां पे भी होगी
1: जी
0: वहां से अपनी फसल के लिए अच्छे सी पौध ले आके अपने खेत में लगा सकते हैं।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने नर्सरी के पौध के संबंध में दी, हाईटेक नर्सरी के संबंध में दी। जो हमारे किसान भाई धनिया, पालक और गोभी की अगेती बुआई करते हैं या बुआई करने की सोच रहे हैं इस समय, तो डॉक्टर साहब वो हमारे किसान भाई अपने खेत की तैयारी कैसे करें?
0: बहुत अच्छा किसान भाई, जैसा कि अभी हमारा जून से जुलाई का जो महीना रहा है
1: जी,
0: वो बरसात का भी रहा है महीने, और संभवतः हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ के जो किसान है वो अपने सब ईख का काम ज्यादा, इनके खेतों
1: जी,
0: में ईख ज्यादा रहती है। और थोड़ा यही है, किसान अपनी ईख के साथ साथ अगर सब्जी की तरफ थोड़ा रुझान करे तो गर्मियों की जो हमारी मृदा होती है उसे खुला हमें छोड़ना पड़ता है।
1: जी,
0: जैसे हमने हैरो से उसकी कल्टीवेटर तो नहीं यूज करेंगे, जो मिट्टी पलट वाला हल होता है ना, उससे हम मिट्टी पलट हल से खेत को खोल देते हैं। उसके अंदर बहुत से कीड़े होते हैं, आज किसान भाई समझ ही रहे हैं कि जैसे उसमें कभी कभी व्हाइट ग्रब की बीमारी, स्पेशली जो गन्ना क्षेत्र है
1: जी,
0: उसमें सफेद गिडार की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और एक दो से जुताई अपने कल्टीवेटर से करके, और कोशिश किसान भाई ये करें कि अपने खेत में जो लेजर लेवलर है उसका उपयोग जरूर कर लें साल में एक बार।
1: जी,
0: उससे क्या होगा, किसान भाइयों को जो पानी की जरूरत है पौधों के लिए वो प्रॉपर मात्रा में मिलेगी पौधों को, और कम खर्चा भी होगा। उसके बाद हम दो से तीन जुताई अपने कल्टीवेटर से करने के बाद ही हम अपनी मुख्य फसल की बुवाई करें। जैसे पालक है तो पालक के बीज जो दर है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और जो हमारा धनिया है उससे 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। लेकिन बुवाई के समय धनिया को जो हम थोड़ा कंडे से या तो थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि
1: जी
0: वो दो भाग में उसको बट जाना चाहिए बीज को।
1: जी
0: उसके बाद ही हम उसमें या तो बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला खेत में बुवाई की जा सकती है। ठीक है, और जो अपनी गोभी है, गोभी के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 400 से 500 ग्राम प्रति
1: जी
0: हेक्टेयर के हिसाब से हमें नर्सरी में अपनी पौध का बीज लगाना पड़ता है।
1: जी सर जी बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को खेत की तैयारी और बीज की मात्रा के क्रम में दी, और बड़े अच्छा हमारे किसान भाई जो भी धनिया, पालक और गोभी की फसल लगाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आप इस जानकारी का अपनी खेती किसानी में लाभ भी उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि बात है अगेती बुआई की, तो सर जैसा धनिया, पालक और गोभी की अगेती बुआई है, तो सर इसमें जो है हमारे किसान भाइयों को उन्नत प्रजातियों की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप इसी संबंध में जानकारी दीजिए कि जो धनिया, पालक और गोभी की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखो किसान भाई ऐसा करते हैं, जैसे उनको हमारा जो समय है बुवाई का, एक अगेती होता है, मध्यम होता है, पछेती होता है।
1: जी,
0: आज हम बात कर रहे हैं कि अगेती प्रजातियों के संबंध में। होता क्या है, किसान भाई जो दुकान पे गए उन्होंने जो प्रजाति दे दी वो लेके चले आए,
1: बिल्कुल सर,
0: दुकानदार तो उसे इतनी जानकारी होती नहीं है। एक हम संस्थान का नाम बता रहे हैं, किसान भाई अगर नोट करना चाहें तो पेन और कॉपी लेके नोट कर लें,
1: जी
0: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस।
1: अच्छा सर
0: जी, इसको हम IIVR भी बोलते हैं, तो
1: जी
0: बनारस में है। और इसके लिए वहाँ ऑनलाइन भी आप अपने बीज को, जो भी फसल आप लगा

0: चाहते हो, उसकी जो नवीनतम प्रजाति है वहाँ ऑनलाइन भी आप उसे मंगा सकते हो।
1: अच्छा।
0: ठीक है, अपने क्षेत्र के अगर कोई भी अच्छे प्रगतिशील किसान सुन रहे होंगे तो उन्हें इसके बारे में जानकारी करना चाहिए।
1: जी।
0: सभी मोबाइल किसान भाई चलाते हैं, तीन फसलों की बात कर रहे हैं,
1: जी।
0: और इसके अलावा भी अगर किसान भाई को और भी प्रजाति या और भी फसल लगाना चाहते हैं तो उनकी भी प्रजातियां वहां से उचित दरों पे आपके घर के एड्रेस पे आ जाएंगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: मैं एक बार और बताऊंगा कि
1: जी।
0: मैं अभी कुछ प्रजातियों के नाम भी बताए दे रहा हूँ। जैसे हम पालक की बात करते हैं तो इसमें आल ग्रीन भी प्रजाति है, पूसा हरित है, पूसा भारती है, जोबनेर ग्रीन है, पंजाब ग्रीन है। ये जो प्रजाति है अगेती प्रजातियों के हिसाब से हम बता रहे हैं।
1: जी।
0: और उसी हिसाब से अगर गोभी की बात करें तो पूसा दीपाली है, पूसा केतकी है, पूसा मेघना है, पूसा हाइब्रिड टू है, अर्ली कुंवारी है।
1: जी
0: ये प्रजातियां हैं हमारी फूल गोभी की।
1: जी
0: अब आता है धनिया की बात। देखो, धनिया किसान भाइयों दो तरीके की होती है। एक तो हमें हरी धनिया और बीज वाली दोनों हमें चाहिए है
1: जी
0: तो गोभी प्रजाति हम लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई केवल बाजार में बेचने के लिए, केवल पत्ती उन्हें बाजार में बेचने होती है उसके लिए भी लगा सकते हैं।
1: जी।
0: तो ये पंथ हरितमा एक प्रजाति है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है। ये डुअल पर्पज प्रजाति है,
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: हम बीज भी ले लेंगे और अपनी हरी धनिया भी मार्केट में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: इसी तरीके से पूसा सिलेक्शन है, कोयम्बटूर वन है, गुजरात धनिया दो है, और अन्य प्रजातियां भी पंतनगर से निकली हैं, जो वहां से किसान में इच्छुक हों वो ले सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है,
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उन्नत प्रजातियों के संबंध में दी और
0: बिल्कुल
1: उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, जो भी हमारे किसान भाई धनिया, पालक और गोभी के खेती प्रजाति लगाने की सोच रहे हैं तो वो आपकी जानकारी का लाभ अपनी खेती किसानी में और सब्जी उत्पादन में लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हम धनिया पालक की कर रहे हैं तो सर, धनिया पालक गोभी, इनसे हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें और हमारे किसान भाइयों को तकनीक के संबंध में आप क्या जानकारी देंगे, किस तरह से वो सब्जियों का उत्पादन करें, क्या क्या तकनीक अपनाएं ताकि वो अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से ले सकें।
0: देखो, ये जो फसलें हैं, जैसे हम गोभी की बात करते हैं
1: जी।
0: तो आज के समय में क्या है, हमारा जैसे खेत है, खेत में हम जैसे आलू की फसल लगाते हैं
1: जी।
0: तो हम कोशिश करें किसान भाई कि गोभी की फसल भी जो नाली बनाते हैं उसके नाली के ऊपर लगाना शुरू करें, तो मेड़ों पर। हाँ,
1: जी
0: इससे क्या होगा कि कभी कभी अगर आज के समय मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
1: जी
0: अगेती फसल है, सपोज अगर कहीं पानी बरस गया तो
1: जी
0: भर गया तो, और ये पौध वाली फसल है तो आपके नुकसान हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल
0: तो किसान भाई हमेशा जो भी अपने ट्रांसप्लांटिंग करें वो मेड़ के ऊपर करें।
1: बिल्कुल सर।
0: ऐसे ही पालक है, क्यारी बना के क्यारियों में
1: जी
0: आप अच्छे से उसकी सोइंग
1: जी
0: करवा सकते, बुवाई करा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: और इसी तरीके से धनिया की भी हम क्यारियों में बुवाई करा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पौधे की दूरी से भी बहुत फर्क पड़ता है उसकी बढ़वार में और उसके उत्पादन में। ठीक
1: बिल्कुल सर।
0: है, किसान भाई जो भी अपनी फसल का प्रयोग करना लगाना चाह रहे हैं उसमें ये तकनीक का प्रयोग करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को तकनीक के संबंध में दी, किस तरह से वो धनिया, पालक और गोभी की फसल की रोपाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते और क्या कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों को धनिया, पालक और गोभी के संबंध में आप कोई संदेश के रूप में देना चाहेंगे ताकि हमारे किसान भाई भविष्य में उस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी जो खेती किसानी है उस कर सकें।
0: बहुत अच्छा सवाल है। अंत में मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, जानकारी तो सभी किसान भाइयों को है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: निवेदन ये है कि आपके घर में या गांव में जो भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है,
1: जी।
0: ज्यादा से ज्यादा उस वर्मी का आप यूज करें। और आज आपके क्षेत्र

0: में कहीं FOM स्वास्थ्य लाभ होगा, साथ में साथ जो मार्केट में किसान भाई ले जाएंगे और जो उसका उपयोग करेंगे, जो हमारी जनता है, उस लाभ मिलेगा। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आज के समय में किसान भाई मार्केट में जाके कीड़ों की दवाई ज्यादा ले रहे हैं,
1: जी,
0: तो कीड़ों की दवाई की जगह हम बताएंगे कि बायो कंट्रोल, बायो जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपाउंड आपको बाजार में मिल रहे हैं, चाहे वो ट्राइकोडर्मा कार्ड्स हो, बेवेरिया वैश्याना हो, राइजोबियम कल्चर हो,
1: जी
0: इस टाइप के अपने उत्पाद के उपयोग करके फसल में अधिक से अधिक दें, जिससे आपको ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक गोभी
1: जी
0: या धनिया आपको मार्केट में मिल सके,
1: बिल्कुल
0: आपका स्वास्थ्य भी सही रहे।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान
0: जी
1: भाइयों को धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई के संबंध में दी। और डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी का हमारे किसान भाई और जो भी हमारे किसान भाई सब्जियों का उत्पादन या नौजवान साथी हमारे सब्जियों का उत्पादन करना चाहते हैं वो आपकी जानकारी से लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर हरिओम करियार जी, आपने बहुत अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।
1: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी, धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई, भाई जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरिओम कटियार। भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को धनिया पालक गोभी के संबंध में दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई किस तरह से हम जो है इनकी अगेती बुआई करनी है और कौन सा उचित समय धनिया पालक गोभी की अगेती बुआई का होता है। साथ ही साथ देखो डॉक्टर साहब ने भैया धनिया पालक गोभी की अगेती प्रजातियों के संबंध में बताया हमारे किसान भाइयों को। साथ ही अच्छे संस्थान के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि बनारस में सब्जियों का अच्छा संस्थान है, जहां से हमारे किसान भाई उन्नतशील प्रजातियां मंगाकर और अपनी खेती किसानी में चार चांद लगा सकते हैं। साथ ही साथ देखो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आपको गोभी की जब भी भैया बुआई करनी है तो आप यदि मेड़ों पर करेंगे तो भाई आपको अच्छा लाभ होगा, क्योंकि भाई कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम प्लेन खेत में भैया गोभी लगा देते हैं तो बरसात का मौसम है और जल भराव हो जाता है, तो भाई जल भराव उसकी से बचने के लिए और हमारी फसल को किसी तरह की क्षति से बचने के लिए बचाने के लिए भाई हम जो है गोभी को भैया जो है मेड़ों पर लगाना चाहिए। साथ ही साथ धनिया और पालक के संबंध में बताया कि डॉक्टर साहब ने कि भाई खेत जो है हमारे लेजर लेबलर द्वारा एक सार होने चाहिए और समतल खेत में ही हमें भैया धनिया पालक की बुआई करनी चाहिए और भाई इससे जो है हमारे किसान भाई अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब ने धनिया पालक की हरी पत्ते पत्तियों के रूप में और भैया जो हमारे किसान भाई बीज के रूप में लेते हैं भाई दोनों तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। और भाई डॉक्टर साहब की बताई जानकारी का हमारे किसान भाई अपनी खेती किसानी में लाभ उठाएंगे और जो भी हमारे नौजवान साथी आज डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं या डॉक्टर साहब की बात सुनकर वो खेती किसानी जुड़ना चाहते हैं या सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो वो भैया डॉक्टर साहब की बात सुनकर अच्छा अपनी खेती किसानी में लाभ कमाएं, इन बातों को अपनाएं। और भाई हम तो अब देखो जब बात लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज़ से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो भाई किसान भाइयों को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं कुलदीप सिंह व साथियों से यो प्यारी सी रागनी।

मत पाप कमाओ मेरे प्राण बचाओ। अभी भाइयों ने कुलदीप सिंह बसाथियों से जो प्यारी सी रागनी सुनी, और भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान हमारे किसान भाइयों की उतर गई होगी। भैया देखो, हम जो है गर्भ की जांच नहीं करानी चाहिए, साथ ही साथ भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। भाई हमारे देखने में भी आता है और काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर

अखबारों में भी आता है कि भैया अगर गर्भ में जांच कराने के बाद लड़की है तो जो हमारे भाई हैं भैया वो गर्भ को भैया जो है डिस्ट्रॉय करा देते हैं, गिरा देते हैं। तो भाई ये काम हमें नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ हमें जो है संकल्प लेना चाहिए। और भैया देखो बेटा बेटी एक समान है, दोनों ही बराबर हैं। और भैया आजकल तो हम देखते भी हैं कि हमारी बेटियों ने भैया हमारे देश में बेटों से भी ज़्यादा काम किया है। तो भाई इस तरह से आप संकल्प लें और भाई बेटी को भी बढ़ावा दें। अब भैया घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाई उसे बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाई देखो हम कार्यक्रम का पता बतावा, लेकिन उससे पहले भैया आप जो है मौसम से अलर्ट रहें। और भैया मौसम को अपने मोबाइल पर, क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो भैया मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसान ये काम करें, चाहे गन्ने में खरपतवार नाशियों का स्प्रे करना है या भैया धान की फसल में किसी स्प्रे करना है कोई सा, चाहे खरपतवार का हो या अन्य कोई भैया उर्वरक प्रबंधन करना है। तो भैया मौसम को देखते हुए कृषि कार्य करें। साथ ही साथ भाई देखो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है भैया 2467633। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। और भैया आप हमारे कार्यक्रम में कुछ जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भाई आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही भैया जैसा कि आप सभी के पास स्मार्टफोन हैं, तो भैया आजकल आप स्मार्टफोन से भी हमें SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके लिए हमारा नंबर है 9457072788। भाई नंबर है 9457072788। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी आपका सुझाव हो आप हमें भेज सकते हैं। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं अनिल कुमार गुप्ता से कहानी। कहानी का शीर्षक है आगामी पीढ़ी का स्वागत।
1: आगामी पीढ़ी का स्वागत। छवि लगभग 24-25 वर्ष की शिक्षित युवती थी। वह औसत से अधिक सुंदर और स्मार्ट थी। छवि की सोच आम युवतियों से भिन्न थी। वह कुछ ऐसा जीवन जीना चाहती थी जो आम समाज से अलग हो और उसे अलग पहचान दिला सके। MBA फाइनेंस की परीक्षा पूरी करने के बाद वह ट्रेन से अपने घर वापस जा रही थी। आरक्षित डिब्बे में एक पोलियोग्रस्त नवयुवक भी आया। नवयुवक गौण वर्ष स्वस्थ शरीर वाला आकर्षक व्यक्तित्व का था, पर पोलियोग्रस्त पैर आकर्षक चेहरे पर उत्तम स्वास्थ्य पर स्थायी ग्रहण लगा रहे थे। नवयुवक की सीट छवि की सीट के सामने ही थी। कुली से अपना सामान व्यवस्थित कराकर उसने अपनी व्हील चेयर फोल्ड कर सीट के नीचे रख दी। छवि बार बार उस आकर्षक चेहरे वाले उत्तम स्वास्थ्य वाले उस नवयुवक के पैरों को देखती। उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। नवयुवक ने भी छवि को देखा, छवि की भाव भंगिमा को पढ़ने का प्रयास किया। दोनों के मन की स्थिति सामान्य न थी। छवि ने लगभग 1 घंटे बाद चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है, कितनी लंबी यात्रा है आपकी। नवयुवक ने एक संक्षिप्त सा उत्तर छवि की जिज्ञासा शांत की। आपको पोलियो किस अवस्था में हुआ जी? 2-2.5 वर्ष की अवस्था में, कहकर नवयुवक चुप हो गया। मुझे जानकर दुख हुआ, उदासी में छवि ने कहा। 10-20 मिनट दोनों में वार्ता न हुई। छवि के मन में लगातार हलचल होती रही। लगभग 2 घंटे बाद छवि ने उसका परिचय पूछा तो युवक ने अपना नाम प्रकाश बताया। वह CA की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने घर जा रहा था। प्रकाश ने भी छवि से परिचय पूछा तो छवि ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया कि उसका नाम छवि है, वह MBA की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देकर अपने घर जा रही है। प्रकाश ने कहा कि वह अपने नगर में ही आगे कार्यालय खोलकर कार्य करेगा, क्योंकि फील्ड वर्क तो इस पोलियोग्रस्त पैरों के कारण मेरे लिए असहज होगा। दोनों में अब सहज भाव से वार्तालाप आरंभ हो गया। यात्रा में दोनों ने साथ साथ जलपान किया। दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। छवि ने कहा कि वह अपने जीवन में कुछ सकारात्मक नया करना चाहती है जिससे उसकी अलग पहचान बने। प्रकाश ने भी कहा कि मैं अपने कार्यालय के में ही समाज सेवा का कार्य करूंगा, जिसमें अपने खाली समय में CA के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करूंगा। दोनों ने एक दूसरे की सार्थक सोच की प्रशंसा की। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए। प्रकाश की यात्रा आधा घंटा पूर्व समाप्त होनी थी। छवि ने उसकी सहायता की, व्हील चेयर खोलकर प्रकाश को सहारा देकर बिठाया, फिर डिब्बे के द्वार पर कुली की सहायता से प्रकाश को उतारा। प्रकाश ने मुस्कुराकर छवि को धन्यवाद करते हुए छवि से विदा ली। छवि की यात्रा भी आधे घंटे बाद पूरी हो गई थी। छवि ने घर पहुंचकर प्रकाश की कुशल क्षेम पूछी तथा अपनी कुशल क्षेम बताई। छवि इंटरव्यू की तैयारी में जुट गई। शीघ्र ही उसे कंपनी में ठीक ठाक नौकरी मिल गई। सेवा का स्थान भी निकट था, जहाँ से प्रतिदिन आना जाना सुविधा से हो सकता था। उधर प्रकाश ने भी अपने नगर में अपना कार्यालय खोल लिया था। छवि और प्रकाश की सप्ताहांत वार्ता होती रहती। प्रकाश ने छवि को अपने कार्यालय उद्घाटन पर सपरिवार बुलाया था, जिसे छवि ने स्वीकार कर लिया था और वह सपरिवार वहां पहुंची थी। उद्घाटन के दिन छवि अपने माता पिता के साथ प्रकाश के कार्यालय पर पहुंची। छवि के माता पिता भी प्रकाश की मृदु बोली एवं उसके बुद्धि कौशल से प्रभावित हुए, साथ ही उसके पैरों को देखकर मन से दुखी हुए। छवि व प्रकाश अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा पा रहे थे। छवि के मन में आरंभ से ही कुछ ऐसा नया करने का विचार था जिससे समाज में उसे अलग से पहचान मिल सके। अब उसके जीवन में इस विचार को क्रियान्वित करने का अवसर उसके सामने था। एक दिवस छवि ने स्वयं प्रकाश के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव कर दिया। प्रकाश तो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दे पाया। छवि ने उसे समझाया कि वह अपने जीवन में आरंभ से ही जीवन में कुछ नया करके अलग पहचान बनाने की सोच रखती थी। छवि ने अपने इस प्रस्ताव को माता पिता के सामने रखा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और अपनी पुत्री को समझाते हुए कहा कि तू जैसी सुंदर स्मार्ट अच्छी नौकरी वाली को तो कोई उत्तम सेवारत इंजीनियर डॉक्टर या कोई सरकारी अधिकारी या स्थापित उद्योगपति तक मिल सकता है, तूने ऐसा प्रस्ताव किया ही क्यों। छवि ने प्रकाश की ओर इंगित होते हुए कहा कि इस प्रकार तो मैं प्रकाश का घर कभी नहीं बसेगा, पोलियो पर रोग पर उसका कोई वश नहीं वह रोग उसके किसी दूषित आचरण से आया है। छवि के माता पिता इस प्रस्ताव को मानने के लिए लेशमात्र भी तैयार न हुए। छवि ने बलपूर्वक कहा कि उसे स्वयं को अलग रूप में स्थापित करने का अधिकार है, वह आरंभ से ही कुछ नया करना चाहती है जिससे उसकी अलग पहचान बन सके। उसके माता पिता ने कहा जैसा तुम्हारा निर्णय हो करो, पर हमारी अनुमति तो क्या सहमति भी नहीं है। प्रकाश के माता पिता भी इस प्रस्ताव से सहमत न थे क्योंकि उनका मानना था कि प्रकाश के जीवन में वैसे ही शारीरिक न्यूनता है, इस कारण एक सुंदर स्मार्ट और अच्छी नौकरी वाली कन्या से विवाह के बाद इसमें स्थायीहीन भावना घर कर सकती है। उनका पुत्र अपने बुद्धि कौशल से चाहे सफल व्यक्ति है पर शारीरिक न्यूनता तो है ही जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। प्रकाश भी छवि को पसंद करता था, इस कारण उसने छवि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रकाश के माता पिता ने इस विवाह के लिए अनुमति नहीं दी वरन चुप्पी साध ली। प्रकाश ने उनकी चुप्पी को मौन स्वीकृति मान ली। प्रकाश छवि ने पूरी योजना बनाकर आर्य समाज द्वारा विवाह का निश्चय किया। आर्य समाज के पदाधिकारियों एवं पुरोहित को जब छवि की भावना का पता चला तो सभी ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर आर्य समाज मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। पूरे क्षेत्र में इस विवाह की चर्चा हुई और सभी ने छवि को दुलारा स्नेह दिया। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में छवि की अलग पहचान बनी जिसको कभी उसने सोचा था। छवि अब अपने ससुराल आ गई थी। प्रकाश के माता पिता ने छवि के सद्व्यवहार और सेवा समर्पण भावना से उसको कुशल पुत्र रूप में सहज स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद MBA फाइनेंस की योग्यताधारी छवि ने नौकरी छोड़ दी और अपने CA पास पति के उनके व्यवसाय में भागीदारी आरंभ कर दी। दोनों के परिश्रम और सूझबूझ से उनके व्यवसाय में चहुमुखी प्रगति हुई। विवाह के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी छवि की गोद खाली थी। छवि की सासू माँ कभी संतान की बात करती तो कभी छवि उदास हो जाती। मातृत्व भाव उसके मन में गहराई से बैठा था। एक दो बार छवि इसको लेकर बेचैन भी होती। छवि पढ़ी लिखी थी, बुद्धिमती थी। उसने स्वयं इस कठिनाई से निकलने के लिए अपनी मित्र मंडली व इंटरनेट की सहायता से गहन विचार विमर्श आरंभ कर दिया। तब उसे IVF अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी वाली प्रक्रिया का पता चला। छवि IVF वाली महिला चिकित्सक विशेषज्ञ

0: के पास गई, पर वहां भी समस्या आई कि प्रकाश के शरीर से निकाले गए शुक्राणुओं में गतिशीलता लगभग शून्य थी। वहां से भी निराशा हाथ लगी, परंतु छवि ने और गहराई से विचार विमर्श किया, मंथन किया और उसे स्पर्म बैंक के बारे में पता चला। विशेषज्ञ महिला समिति चिकित्सक आजकल इस बैंक की उपलब्धता के बारे में बताया कि अभी इनकी संख्या तो कम है पर मिल सकते हैं। महिला चिकित्सक ने स्पर्म बैंक से लेकर IVF की पूरी व्यवस्था, पूरा व्यय छवि व प्रकाश को बता दिया। छवि व प्रकाश के लिए व्यय कोई कठिनाई नहीं थी। छवि व प्रकाश ने इसका मन तो बना लिया, परंतु दोनों के चिंतन में स्पर्म बैंक से प्राप्त स्पर्म की आनुवंशिकता का प्रश्न आ गया। दोनों के मन में भय था कि स्पर्म बैंक से प्राप्त स्पर्म में कोई आनुवंशिक रोग न हो, क्योंकि स्पर्म दाता का नाम, पता, पारिवारिक व सामाजिक स्थिति गुप्त रखी जाने का नियम है। अपनी इस सोच को उन्होंने महिला विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ को भी बताया। महिला चिकित्सा विशेषज्ञ ने सोच विचार कर छवि को व प्रकाश को इस सोच का भी उपाय बता दिया। उन्होंने प्रकाश के माता पिता की आयु मालूम की। दोनों की आयु 55 वर्ष की लगभग थी। महिला चिकित्सक ने सारी व्यवस्था छवि और प्रकाश को समझा दी कि प्रकाश के माता पिता आप दोनों की समस्या को अच्छे से हल कर सकते हैं। प्रकाश ने अपने घर आकर अपने माता पिता से, महिला चिकित्सक से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करने का निवेदन किया। प्रकाश के माता पिता महिला चिकित्सक के पास गए। सारी बातें दोनों ने ध्यानपूर्वक महिला चिकित्सक से सुनी। महिला चिकित्सक ने स्पर्म बैंक से प्राप्त स्पर्म की ऊंच नीच व अन्य नकारात्मक प्रभाव विस्तार से प्रकाश के माता पिता को समझाए। दोनों ने ध्यानपूर्वक महिला चिकित्सक के परामर्श को समझा तथा अपने पुत्र व पुत्रवधू के भविष्य के प्रति सकारात्मक भविष्य एवं उनकी प्रसन्नता को गंभीर मानते हुए महिला चिकित्सक की योजना को सहमति दे दी। महिला चिकित्सक के निर्देशानुसार दोनों अपने पुत्र व पुत्रवधू से कहकर IVF हॉस्पिटल पहुंचे। महिला चिकित्सक ने गहन परीक्षण किया तथा सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद छवि को आगामी प्रक्रियाओं के संपादन हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। IVF की प्रक्रिया सफल रही। गहन चिकित्सीय देखरेख में नियत समय पर छवि ने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। छवि व प्रकाश अपनी अगली पीढ़ी के आगमन पर तथा प्रकाश के माता पिता अपनी तीसरी पीढ़ी के आगमन पर फूले न समा रहे थे। सभी के मन में आगामी पीढ़ी के स्वागत करने की हार्दिक प्रसन्नता थी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कहानी आगामी पीढ़ी का स्वागत। कहानीकार थे अनिल कुमार गुप्ता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 मिनट हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओ, शाम की इस सुहानी बेला में जब दिन की हलचल कुछ थम सी जाती है तो दिल चाहता है कुछ ऐसा सुनिए जिससे दिल को सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा जो सीधे दिल को छू जाए। तो आइए आज छाया गीत में सुरों के साथ हम कुछ ऐसे ही खूबसूरत से गीत सुनेंगे जो हमारे दिलों को सुकून दे देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के साथ, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाटेकर की। गीत की रचना की है संतोष आनंद ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना प्यासा सावन में लता मंगेशकर और सुरेश वाटिकर को। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसको हमने लिया है फिल्म हाँ।

दोनों से। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत निर्देशन है जयदेव का, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं फिल्म हम दोनों का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओ, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म गाइड से। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत है शैलेंद्र का और संगीत है एसटी बर्मन का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं अब सुनिए आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की इस प्रकार से रहेगी। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और आज ही रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर हमारे श्रोता लुत्फ ले सकेंगे अजय जोशी की गाई चंद गजलों का। अदबी दुनिया में आज शाम 7:50 पर कलामी शायर होंगे मोहम्मद इलियास। श्रोताओ ये थी आज के शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी और अब कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और कल सवेरे 9:15 पर लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की हलचल। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर और इसी क्रम में सवेरे 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। सवेरे 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में जानकारी का विषय रहेगा जगत का मिथ्या तत्व। कार्यक्रम काव्यधारा में कल सवेरे 6:45 पर सुनिएगा मानक चंद का काव्य पाठ। कल सवेरे 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में काली मिर्च के गुण पर जानकारी दी जाएगी। ज्ञान मनोरंजन और सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ पेश किया जाएगा सवेरे 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर आनंद लीजिएगा नयन तारा शर्मा के गाए रुहेल खंडी सावन के लोकगीतों का और इसी क्रम में कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनिएगा वीरेंद्र सिंह विष्ट के गाए कुछ जौन सारी लोकगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 11:30 का। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर सुनिएगा पंडित मनीराम का गायन। कल शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु ई नाम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जानकारी दी जाएगी। कल शाम 5:15 पर कार्यक्रम युवाणी में हमारे युवा श्रोता सुन सकेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज गपशप अड्डा क्रैश कोर्स पैसा वसूल कहानी के उस पार बूस्टर और फिल्म संगीत। कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे गोबर की ठोस व तरल खाद के महत्व विषय पर सुनील कुमार सिंह युवा किसान बुलंदशहर से सुवेंद्र सिंह की बातचीत। श्रोताओ ये थी जानकारी आज के शेष और कल की दोनों सभा में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप लखनऊ केंद्र से प्रसारित

0: प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: RBI कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा। मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा। लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि इन सुविधाओं के साथ ही अब दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रसोइया और उनके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिधान के लिए मिलने वाली राशि भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है।
1: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91 बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के झंडेवाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
2: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने

0: देने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो गई। ये परीक्षा प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्र पर कराई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 2587 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,602 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसमें से 79.29% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 20,830 अभ्यर्थी यानी 20.71% लोग अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 500 सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 14,696 अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया था। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी 10,674 CCTV कैमरों और लाइव कंट्रोल रूम के माध्यम से की गई। लखनऊ के एक केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, वहीं वीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। जापानी मेहमानों ने भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ धाम की आध्यात्मिक आभा को भी निहारा। प्रतिनिधिमंडल ने काशी में आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास के समन्वय को करीब से देखा और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। कल सावन के आखिरी सोमवार के सिलसिले में प्रदेश भर के प्रमुख शिव मंदिरों और शिवालयों में विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों सहित राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को नियंत्रित करने का बंदोबस्त किया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रजघाट तक करीब 60 किलोमीटर रोड को कल तक जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
3: सावन के आखिरी सोमवार के परिप्रेक्ष्य में आज शुक्रवार को ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक तरफ कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं। आगे कावड़ की संख्या के आधार पर इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से हाईवे को इसमें संचालित करना है। यदि हम कावड़ यात्रा के लिए फोर्स की तैनाती की बात करें तो जिले में जरूरी या आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी जो फोर्स है वो कावड़ की यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तैनात किया जाएगा।
1: काशी में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलादुन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
4: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबीउल अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है, ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में

0: کا خیال رکھیں کہ جو راستے مقرر کیے گئے ہیں انہی راستوں سے جلوس نکالیں, اور جلوس میں کوئی بھی ایسا نعرہ نہ لگائیں جس سے کسی کے بھی ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو روٹ مقرر کیا گیا ہے اسی پر صرف جلوس نکالا جائے.
1: राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले चार दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं. संतकबीरनगर जिले में घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद चौहान ने कहा कि प्रभावितों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
2: गांव में पशु चिकित्सक, उन गांव में अन्य वस्तुओं की चिंता करने का काम किया जा रहा है. उन गांव में जाकर उनसे जानकारी लिया जा रहा है, उनके बारे में कहीं से कोई असुविधा न हो इस पर पूरी तरह से सक्रियता बनाएंगे.
1: राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा. मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए. रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा. मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश. प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा. लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी. जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन. श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा. और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम. कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन. इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ. अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा. नमस्कार.
3: पापा,
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे.
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत. हम आज इसमें आपको सुनवा रहे हैं अजय जोशी की गाई चंद गजलें. तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये पहली गजल अजय जोशी की आवाज़ में.

श्रोताओ, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अजय जोशी की गाई गजलें।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में अजय जोशी की आवाज़ में ये कार्यक्रम की अंतिम गज़ल।

0: अजय जोशी की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अदबी दुनिया। आज इस कार्यक्रम में कलामी शायर हैं मोहम्मद इलियास।
1: गजल का मतला अर्ज है, मेरे दिल में कैसा गुबार था, मुझे जाने कैसा खुमार था। मेरे दिल में कैसा गुबार था, मुझे जाने कैसा खुमार था। ना तो दिल में जज्बे शौक था, ना ख्याल में दरयार था। ना तो दिल में जज्बे शौक था, ना ख्याल में दरयार था। मेरी हसरतें भी बिखर गईं, मेरी जिंदगी भी उलझ गई। मेरी हसरतें भी बिखर गईं, मेरी जिंदगी भी उलझ गई। तू अगर मगर में ही गुम रहा, तेरा कैसा कौलो करार था। तू अगर मगर में ही गुम रहा, तेरा कैसा कौलो करार था। वो जुनून इश्क का दौर था, बड़ी लज्जतें थी शबाब में। वो जुनून इश्क का दौर था, बड़ी लज्जतें थी शबाब में। बड़ी चाशनी थी जबान में, बड़ा गुफ्तगू में निखार था। बड़ी चाशनी थी जबान में, बड़ा गुफ्तगू में निखार था। मैं फरेब उनको न दे सका, हुआ तोहमतों का भी सामना। मैं फरेब उनको न दे सका, हुआ तोहमतों का भी सामना। जिसे प्यार बांटा था उम्र भर, मैं उसी की आंखों में खार था। जिसे प्यार बांटा था उम्र भर, मैं उसी की आंखों में खार था। मैं संभल सका न बदल सका, मेरे जिस्म जहां भी झुलस गए। मैं संभल सका न बदल सका, मेरे जिस्म जहां भी झुलस गए। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, ये तो मेरे अपनों का वार था। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, ये तो मेरे अपनों का वार था। मैं इसी जुनू में बहुत लड़ा, न खबर मिली किसी हार की। मैं इसी जुनू में बहुत लड़ा, न खबर मिली किसी हार की। मैं भुला चुका था हयात को, मुझे मौत से बड़ा प्यार था। मैं भुला चुका था हयात को, मुझे मौत से बड़ा प्यार था। मेरी चाहतों का कसूर क्या, जो हुआ दिलों में ये फासला। मेरी चाहतों का कसूर क्या, जो हुआ दिलों में ये फासला। तू तो चांद था मेरी रूह का, मेरे दिल का रश्के बहार था। तू तो चांद था मेरी रूह का, मेरे दिल का रश्के बहार था। मेरे दिल में कैसा गुबार था, मुझे जाने कैसा खुमार था। दूसरी गजल हाजिर खिदमत है तरन्नुम से। सम

एक मतला, चंद शेर और। ये रोज रोज की उलझन को किस तरह समझूं, ये रोज रोज की उलझन को किस तरह समझूं, मैं अपने कल्ब की धड़कन को किस तरह समझूं, मैं अपने कल्ब की धड़कन को किस तरह समझूं। सभी हैं अपने पराए जो साथ रहते हैं, सभी हैं अपने पराए।

0: जो साथ रहते हैं, मैं अपनी जान के दुश्मन को किस तरह समझूं, मैं अपनी जान के दुश्मन को किस तरह समझूं, बटे मकान तो दीवार दिल तलक पहुंची, बटे मकान तो दीवार दिल तलक पहुंची, मैं बाप दादा के आंगन को किस तरह समझूं, मैं बाप दादा के आंगन को किस तरह समझूं, तेरी खुशी भी मुझे खाक में मिला देगी, तेरी खुशी भी मुझे खाक में मिला देगी, ऐ दिल बता तेरे बचपन को किस तरह समझूं, ऐ दिल बता तेरे बचपन को किस तरह समझूं, जरा सी बात पे आंखें बरसने लगती हैं, जरा सी बात पे आंखें बरसने लगती हैं, मैं उनकी आंखों के सावन को किस तरह समझूं, मैं उनकी आंखों के सावन को किस तरह समझूं। और इस गजल का मकतर्ज है, उलझ रहा हूं मैं दोनों के बीच में इलियास, उलझ रहा हूं, उलझ रहा हूं मैं दोनों के बीच में इलियास, मैं दिल दिमाग के अनबन को किस तरह समझूं, मैं दिल दिमाग की अनबन को किस तरह समझूं, ये रोज रोज की उलझन को किस तरह समझूं, मैं अपने कल्ब की धड़कन को किस तरह समझूं।
1: मोहम्मद इलियास के इन्हीं कलाम के साथ कार्यक्रम अदबी दुनिया अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रही हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम गीत संध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, शाम की नरम नरम हवाओं के साथ अब वक्त है कुछ खूबसूरत नगमों का, कुछ मीठी यादों का और दिल को छू जाने वाले एहसास का। कहते हैं संगीत वो एहसास होता है जो लफ्ज़ों के बिना भी दिल की बात कह जाता है। तो आइए इस सुहानी शाम को सुरों से सजाएं और अपने इन खूबसूरत गीतों में कुछ पल सुकून के बिताएं। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म कटी पतंग से आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीत है आरडी बर्मन का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोता, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोता, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अपने अगले गीत की ओर। जब जिंदगी में कोई अपना मिल जाए तो उसकी मौजूदगी ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है। जी हाँ श्रोताओ, कितनी खूबसूरत ये एक तसव्वुर है कि किसी ख़ास इंसान के बिना शायद हमारी खुशियाँ भी अधूरी रह जाती हैं। तो सुनिए मोहब्बत और अपनापन के लिए ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम भी इसका गीत ही है। हाँ, तो लीजिए सुनिए फिल्म गीत में लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

जी हाँ श्रोता, सच ही तो है। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सादा सा जीवन भी एक खूबसूरत गीत बन जाता है। तो आइए इसी प्यारे से गीत के बाद चलते हैं एक और इसी तरह के खूबसूरत से गीत की ओर। इसमें हमें ऐसा लगता है कि जब किसी की मासूमियत दिल को छू जाए तो फिर उसकी तुलना किसी और से करना मुश्किल हो जाता है। श्रोता, ये गीत उस ख़ास शख्स की तारीफ़ है जो भीड़ में भी सबसे अलग नज़र आता है। तो पेश है मोहब्बत में डूबे हुए इस ये खूबसूरत सी पेशकश, जिसे हमने लिया है फिल्म खुद्दार से। आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत है अनु मलिक का और शब्द रचना है राहत इंदौरी की। तो लीजिए सुनिए फिल्म खुद्दार का ये गीत।

श्रोता, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोता, अब बारी है एक चुलबुले मस्ती भरे और प्यार से सजे गीत की। जब प्रेम में नटखटपन हो, मुस्कुराहट हो और अपने पन की मिठास हो तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। तो क्यों ना इस शाम में थोड़ी सी मस्ती और खोल दी जाए और सुन लिया जाए ये प्यारा सा गीत फिल्म हीरो नंबर वन से। आवाज उदित नारायण और पूर्णिमा की है, गीत है समीर का और संगीत है आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, अब इस प्यार भरी शाम को उस मुकाम पर ले चलते हैं जहां दिल किसी का हो जाता है और फिर उसे अपना कहने में ज़रा भी देर नहीं लगती। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत पल शायद वही होता है जब दिल किसी को अपना मान लेता है। तो आज की इस प्यारी गीत संध्या का समापन करते हैं इसी खूबसूरत नगमे के साथ जो हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, गीत है समीर का और धुन है नदीम श्रवण की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब पेश है एकल फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोता, स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोता, हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी तो खूबसूरत होती है लेकिन उनके गीत उस फिल्म की याद को और भी खास बना देते हैं। आज हम ऐसी ही एक सदाबहार फिल्म के गीत आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म है का नाम है आए दिन बहार के। नाम सुनते ही जैसे मौसम बदलता हुआ महसूस होता है। बहारें आती हैं, फूल खिलते हैं और दिल में प्यार की नई उमंग जागती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म आए दिन बहार के। आवाज़ है आशा भोसले की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में

0: उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
3: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
4: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी

0: कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
1: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि ये बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष

0: दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मिस्टर मोदी अर्ज द स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स टू रिमेन कंसिस्टेंट इन द एफर्ट्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: ड्यूरिंग द इंटरेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस पवन कुमार चंदाना थैंक्ड मिस्टर मोदी फॉर ओपनिंग अप द स्पेस सेक्टर। He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना।

0: night in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वुजरा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई, जहां खेलों के शोबे में इश्तराक, शुमूलियत और बाहमी वक़ार को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका ऐलामिया अपनाया गया। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें, ताकि दुनिया भर के लोग ये महसूस करें कि करियर बनाने के लिए भारत जाना चाहिए। जनाब मोदी ने 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs के और बानी अफराद से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आज खला के कौमी दिन के मौके पर जारी की गई इस बातचीत के मुताबिक जनाब मोदी ने खलाई मुहिमात शुरू करने के मामले में दूसरों के मुकाबले भारत की कम लागत को भी नुमाया किया।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: जनाब मोदी ने बातचीत के दौरान खलाई शोबे के स्टार्टअप से अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखने और दुनिया भर से होनहार अफराद को रागिब करने के काबिल खलाई शोबे का जामे इकोसिस्टम तश्कील देने की अपील की।
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: इस दौरान खलाई शोबे के पहले भारतीय टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पवन कुमार चंदाना ने खलाई शोबे को खोलने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की 18 तारीख को स्काईरूट एरोस्पेस ने प्राइवेट तौर पर तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट कामयाबी से दागा। इस दौरान आज खला से मुताल्लिक कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत 23 अगस्त को चांद के कुतुब जनूबी के नजदीक चंद्रयान स्वयं की तारीखी आसान लैंडिंग की याद में हर साल ये दिन मनाता है। इस तारीखी लैंडिंग के जरिए भारत चांद के कुतुब जनूबी के इलाके में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि खला से मुताल्लिक दरियाफ्त के शोबे में भारत की काबिल जिक्र हुसूलियाबियां मुल्क की साइंसी उमदगी, इख्तरा के जज्बे और मालूमात के महाज को फरोग देने के मुल्क के जज्बे की अक्कासी करती हैं। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि नए आलमी ऑर्डर में भारत अपने खलाई शोबे को लगातार वसत दे रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

0: ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खला के कौमी दिन के मौके पर चंद्रयान स्वयं की तारीखी कामयाबी को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस हुसूलियाबी ने भारत को खला का सफर करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल कर दिया है। जनाब सिंह ने भारतीय साइंसदानों के काबिल जिक्र तआवुन की सताइश भी की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जंगी जहाज, बहरी कश्तियों और दीगर मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर देते हुए इसे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने भारत को मुस्तकबिल में जहाजसाजी का मरकज बनाने के मकसद से इस शोबे में रख रखाव से मुतालिक मियारी खिदमात की जरूरत पर जोर दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL के तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों के भूमि पूजन की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि GRSE मुल्क मुस्तकबिल में जहाजसाजी के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर सकती है। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि GRSE जर्मनी के लिए एक कार्गो जहाज तैयार कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अंदरून मुल्क तैयार की जाने वाली दिफाई मसनूआत पर इन्हिसार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुसल्ला फौज भारत के सरकारी शोबे की दिफाई कंपनियों के जरिए तैयार की गई मसनूआत में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। वजीर दिफा ने आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड के 5 मराकज के भूमि पूजन की तकरीब में शिरकत की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विकसित भारत 2047 के हुसूल में रियासती हुकूमत के तआवुन के लिए मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की कोशिशों की सताइश भी की। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर दिफा ने कहा कि दुनिया को दिफाई मसनूआत की बरामदात के लिए मयारात की यकीन दहानी और बरवक्त फराहमी पर भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अब दिफाई जरूरियात के लिए अंदरूने मुल्क तैयार शुदा मसनूआत पर इन्हिसार कर रही हैं। जनाब सिंह ने बताया कि रियासती हुकूमत दाखिली सिक्योरिटी के सिलसिले में भरपूर तआवुन फराहम कर रही है। वजीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत नए प्रोजेक्टों के साथ साथ तरक्की के नए दौर के आगाज के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रियासती हुकूमत ने इन नए प्रोजेक्टों के लिए 11,000 एकड़ जमीन फराहम की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नवरत्न कंपनी GRSE लिमिटेड ने 100 से ज्यादा बहरी जहाज फराहम किए हैं। भारतीय हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोजेक्ट बहरी अफवाज और दीगर दिफाई और बहरी शराकतदारों की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी करने में मुआविन होंगे। मगरबी बंगाल के केदरपुर, शालीमार और रायचक और ईशापुर में भूमि पूजन तकरीबात का इनेकाद किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने वाजे किया है कि H1N1 की किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस पाया जा रहा है वो शिमाली निसफ कुरे अर्ज के लिए तजवीज करदा वैक्सीन की किस्म से मुमासलत रखता है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक यह वायरस 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। बुखार, खांसी, सरदर्द और जिस्म में दर्द इसकी आम अलामत हैं और ज्यादातर लोग मुनासिब देखभाल और आराम से सेहतयाब हो जाते हैं। तिब्बी इदारे ने कहा है कि नौ उम्र बच्चे, बुजुर्ग अफराद और ऐसे अफराद जो तिब्बी पेचीदगियों का शिकार हैं उन्हें इस वायरस से ज्यादा खतरा लाहिक हो सकता है। अगर अलामत जारी रहती हैं या मजीद अबतर या शदीद हो जाती हैं तो बरवक्त डॉक्टर से रुजू करने की हिदायत दी गई है। ICMR ने बताया कि सूरत हाल पर बाकायदा निगरानी के जरिए करीबी नजर रखी जा रही है और सेहत आमा के तई जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। खेलों के ब्रिक्स वुजरा की मीटिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई, जहां इत्तफाक राय से ब्रिक्स स्पोर्ट्स मुश्तरका ऐलामिया अपनाया गया। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत मुनक्किद हुई। मीटिंग ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों की तरक्की, शमूलियत, खेलों की टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज करते हुए खेलों के शोबे में तआवुन को फरोग दिया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद माल्शे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड a natural flair for music since early childhood. With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा, ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत दोषी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha, and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan.